0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई।
1: खलक़ल इंसान,
0: उसी ने इंसान को पैदा किया।
1: अल्लमहुल बयान,
0: उसी ने उसको बोलना सिखाया।
1: अश्शम्सु वल्कमर बिहुस्बान,
0: सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं।
1: वन्नज्म वश्शजर यस्जुदान,
0: और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मुहर्रम उल हराम की 22 और जुलाई की 8 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तुर्क सरमायाकारों और सरकर्दा कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर कानून ने जदीद कानूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए अदलिया की खुसूसी तरबियत की जरूरत पर जोर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने जिनेवा में अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में मस्नूई ज़हानत के कवायद और ज़वाबित से मुतल्लिका चैलेंजेस पर गुफ्तगू की है। अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशिशों में इजाफा करे। मारूफ समाजी और इंसान दोस्त शख्सियत अब्दुस्सत्तार ईदी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गजा में जंगबंदी की जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फुटबॉल आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में रात अर्जेंटाइन ने मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से, जबकि स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टीज की बुनियाद पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनके हालिया दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने काबीना को अपने हालिया दौरे तुर्किया और ईरान के नतायज के बारे में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की के सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों खुसूसन कानकनी मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शहबाज शरीफ ने काबीना को मजीद बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द के हमरा ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की बहादुरी को भी जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने इस्लामाबाद में एक खातून की जान बचाते हुए जाम शहादत नोश किया। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और खिदमात को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वह दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जदीद कानूनी चैलेंजेस से निमटने की खातिर अदलिया के लिए खुसूसी तरबियत की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में जुडिशल फेलोशिप प्रोग्राम में शरीक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एक वफ़ से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदलिया के लिए टेक्नोलॉजी के कवानीन, तजारती तनाज़ात और तनाज़ात के मुतबादिल हल में महारत तेजी से नागुजीर होती जा रही है। उन्होंने निज़ाम अदल की इस्तेदाद में इजाफे और कानूनी इस्लाहात के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के विफाकी वजीर शजा फातमा खाजा ने अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से जनेवा में ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के दौरान मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल अक़वामी तआवुन और आलमी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंज खुसूसन मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल में लाने के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की क़यादत और कोशिशों को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा शफाफ और मेरिट पर मबनी तरीक़ाकार के जरिए नौजवानों के मियार ज़िंदगी को बुलंद करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान की निजी फजाई कंपनी K2 एयरवेज का एक माल बरदार तैयारा जो शारजा से कराची आ रहा था मुबैना तौर पर कराची के साहिल के करीब लापता हो गया है। ज़राए का कहना है कि तैयारे के रडार से ओझल होने के फौरन बाद तलाश और बचाव की कोशिशें शुरू कर दी गईं। पाक बहरिया ने जारी ऑपरेशन में शमूलियत के लिए अपने जंगी जहाज PNS जुल्फिकार कराची आ रहा था मुबैना तौर पर कराची के साहिल के करीब लापता हो गया है। ज़राए का कहना है कि तैयारे के रडार से ओझल होने के फौरन बाद तलाश और बचाव की कोशिशें शुरू कर दी गईं।

की जारी कोशिशों में मदद के लिए अपने तिजारती जहाज लाहौर को भी तैनात कर दिया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद तवील मुद्दती तनाज़ात और देरीना मसाइल के पुरम हल के लिए कोशिशें तेज करे। अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मुबाहिसे के दौरान खिताब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के लाहे अमल की सबसे बड़ी नाकामी देरीना तनाज़ात और गैर मुल्की कब्जे की सूरत हाल में वाज़े तौर पर नजर आती है, जहाँ बगैर किसी खौफ और सजा के मुजालिम का सिलसिला जारी है। अजीम समाजी और इंसान दोस्त शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को बरतानवी हिंदुस्तान के इलाके गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 1951 में फलाही खिदमात का आगाज किया। ईदी ने दुनिया का सबसे बड़ा रजाकाराना एम्बुलेंस निज़ाम कायम करने समेत मुल्क भर में बेघर अफराद और जानवरों के लिए पनागाहें और यतीम खाने भी कायम किए। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें एशियन नोबेल लिनन अमन इनाम और निशान इम्तियाज समेत बैन अल-क़ौमी और कौमी एजाजात से नवाजा गया। वो 2016 में आज के रोज 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अब्दुल सत्तार ईदी को खिदमत, हमदर्दी और इंसानियत का आला तरीन नमूना करार देते हुए खिराज तहसीन पेश किया है, जिसका वर्षा आइंदा नस्लों के लिए मशर रहा है। सदर ने अजीम फलाही रहनुमा की 10वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि उन्होंने ईदी फाउंडेशन के जरिए समाजी खिदमत का एक वसी निज़ाम कायम किया, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस भी शामिल है, जो मुश्किल वक्त में लोगों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुई। सदर ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी सिर्फ एक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत थे, बल्कि कौमी वकार की एक लाजवाब अलामत भी थे। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज नौजवान कश्मीरी रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत की 10वीं बरसी मना रहे हैं। बुरहान वानी को खिराज अकीदत पेश करने और मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम को बेनकाब करने के लिए रैलियां, सेमिनार्स और मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। बुरहान मुजफ्फर वानी को 2016 में आज के रोज भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके कोकरनाग में जालिम भारतीय फौज ने एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। एलर्जी से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल आलमी इदारे सेहत और आलमी एलर्जी तंजीम के मुश्तरक तआवुन से मनाया जाता है, ताकि हसासियत से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव, उनकी तशखीस और इलाज के बारे में अवामी आगाही को बढ़ाया जा सके। गजा में इसराइल की जानिब से जारी जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नतीजे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। उन्हें ड्रोन हमलों और फायरिंग के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने अक्टूबर 2023 में गजा में जारहियत के आगाज से अब तक 73,000 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 1,73,000 को जख्मी कर दिया है। शाम में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दौरे के दौरान वस्ती दमिश्क में 2 बम धमाकों के नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि इमैनुअल मैक्रों महफूज रहे और बाद में उन्हें सदारती महल में अपने शामी हमनसब अहमद अशरा से मुजाकरात किए। फुटबॉल आलमी कप के 16 टीमों के राउंड में रात एटलांटा में खेले गए एक मैच में अर्जेंटाइन ने मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि बोस्टन में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टीज की बुनियाद पर कोलंबिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। उधर आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज जुमे को बोस्टन में फ्रांस और मराकिश के दरमियान मैच से होगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद और पिशावर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 30, कोयटा 26, गिलगित 23, मरी 18 और मुजफ्फराबाद में
27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ مولہ اور لہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری

0: श्रीनगर अनंतनाग और शोपियां में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह 15, जबकि पुलवामा और बारामूला में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तुर्क सरमायाकारों और सरकर्दा कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-कानून ने जदीद कानूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए अदलिया की खसूसी तरबियत की जरूरत पर जोर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने जिनेवा में अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में मस्नूई जहानत के कवायद और जवाबित से मुतल्लिका चैलेंजर पर गुफ्तगू की है। मारूफ समाजी और इंसान दोस्त शख्सियत अब्दुस्सत्तार ईदी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में रात अर्जेंटाइन ने मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से, जबकि स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टीज की बुनियाद पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: I love FM 101.

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, ये कोई शक है क्या?
2: शुक्रिया।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फेमानो वन चैनल वेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। वेल जनाब, 9:24 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त, और आपका हमारे साथ रहने का भी। वेल, बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में। आपके गिरदो नवा का, आपके इलाकों का, आपके दिल का, आपके मन का मौसम कैसा है, ये आपने मुझे लाजमी बताना है, मुझे जान के अच्छा लगेगा। लाहौर के मौसम के हवाले से अगर आज की बात कर ली जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 32, और मिनिमम की बात कर ली जाए जो आज रिकॉर्ड किया जाने वाला है वो है 27। और इसके साथ साथ शाम के औकात में आज जनाब हल्की फुल्की बूंदाबांदी बल्कि गर्ज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कल मैं मौजूद था ये बेदियां रोड वाली साइड पे, और वहाँ पे क्या बारिश हुई है, धूप लगी हुई थी, तेज़ आंधी चल रही थी, लेकिन इतनी शदीद बारिश थी क्या ही कहने हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं ना ऐसे ही नहा लूँ, शूज़ पहने हुए थे, बैग था, बैग में मोबाइल था और बहुत सारी काम की अशिया मौजूद थी, और दिल किया कि चलो कोई नहीं वेखी जाएगी लेकिन अगर मोबाइल भीग जाता ना और मैं भीग जाता, शूज़ गीले हो जाते, खुद गीला हो जाता, फिर जो होनी थी ना वो देख ही नहीं जानी थी। वेल, मौसम बहुत औसम होने वाला है आज शाम के औकात में, और कुछ स्कैटर्ड बात की जा रही है कि आज बारिश के मौके मौजूद हैं। इसके साथ साथ दोपहर के औकात तक जो है ना अच्छी खासी जो हमें हीट है वो हमें महसूस होने वाली है। इसके अलावा आज जनाब हवा में नमी का जो तनासुब है वो भी तकरीबन 70% के करीब रहेगा, और 11 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली हैं। सो क्या करना है कि आपने ख्याल रखना है अपना, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का, और कोशिश करना है कि आपने पानी ज़्यादा पीते रहना है, अपने आप को ज़्यादा बिला वजह धूप में नहीं लेके जाना, और इतने ज़्यादा कोई मुशक्क़त वाले काम नहीं करनी है कि जिनको करके आप हलकान हो जाएं, थक जाएं, या किसी भी तरह से आपको जो है ना वो सांस चढ़ जाए। वेल जनाब, बाहर के मौसम तो बदलते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन हमेशा आपसे बारहा बात की जाती है कि अपने मन के, अपने अंदर के मौसम का ख्याल रखा कीजिए, इसको औसम रखा कीजिए, क्योंकि वो मैं कहता हूँ ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है।

ओके जनाब, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एक और ट्रैक मौसम की मुनासबत के हवाले से। और जनाब बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। ज़ीशान अली की जब भी बात की जाती है, बेहतरीन गाने बनाते हैं। और क्या ही इस बंदे की वाइब है, जो जैसा भी म्यूज़िक बनाते हैं ना, सुन के पता चलता है कि वाकई में ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है। सो एक ऐसा ही ट्रैक इश्कावे के नाम से, बहुत आपने सुन रखा है लेकिन सुबह के इस पहर में आपने बहुत कम सुना होगा। सो इस ट्रैक को मिलकर शामिल करते हैं, इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें कहते हैं फेम 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनी

0: Okay, Bruni,
1: I love FM 101.

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेल जनाब, बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। 8 जुलाई जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। कुछ दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम जिस हवाले से बात करेंगे जनाब, आज एलर्जी जो होती है ना, इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर ये तमाम लोगों को डेडिकेटेड है जो किसी भी तरह की एलर्जी का शिकार हैं, चाहे वो आपके खाने पीने के हवाले से हो, चाहे वो आपके सांस लेने के हवाले से हो, कहीं पर बैठने रहने सहने के हवाले से हो। सो बहुत सारे मामलाते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। हमेशा एलर्जी को ना ऐसा इशू तसव्वुर किया जाता है जिनको एलर्जी होती है कि ये बहुत ड्रामेटिक है, ड्रामे करदा है, तेनू पता नहीं की है, फलां चीज़ नहीं खांदा, फलां जगह ते नहीं बहंदा, फलां जड़ी है चीज़ है, चाहे वो परफ्यूम हो सकता है, पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है। बहुत लोग ना सेंसिटिव होते हैं इन मामलों को लेकर या कुछ खानों को लेकर। कुछ लोग होते हैं, मैं पर्सनली कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको आटे से, गंदम से ना एलर्जी का सामना होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग करने लगते हैं। सो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। इवन के अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, इनका भी बेसिक जो फैक्टर होता है ना, वो एलर्जेंस होते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये इंतहाई संजीदा और इंतहाई हसास मौजू है, हसास मामला है। इस हवाले से हमने आगही अवेयरनेस जो है इस पर हमेशा बात की जाती है, हमें हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं ना हम इन तमाम तर मामलात को बहुत हल्का लेते हैं। हल्का इस हवाले से लेते हैं कि जिस पर बीत रही होती है ना, हम उसको बहुत क्या कहते हैं कि एक ईजी वे में लेते हैं उसकी, उन तमाम तकालीफ का, उन तमाम सेंसिटिविटीज़ का जो हसास उसके ट्रिगर्स होते हैं उनका ख्याल नहीं करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर लूँ, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे रिलेट कर पाएँ कि मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है ना। मेरी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि आजकल जिस तरह बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो सड़क के ऊपर धूल मिट्टी होती है ना, वो हवा में उसके ज़रात मुअल्लक हो जाते हैं। उसकी वजह से एक तो स्मोक होती है, स्मोक के अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जब वो आपके लंग्स में जाते हैं, आपके गले में जाते हैं, और सबसे बढ़ के आपकी नोज में जाते हैं, नोस्ट्रिल्स में जाते हैं। सो क्या होता है कि आपको एक तो सांस के मसाइल होते हैं, छींके आती हैं, और उसकी वजह से आपके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, और आपको सांस लेने का इतना इशू होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो बायोलॉजी है, इसमें ये होता है कि किसी भी तरह के जो जो एलर्जेंस होते हैं, आप हम आपकी नोज़ है, आपका ट्रैकिया है, सांस लेने का आपका कोई भी ऐसा रास्ता है, चाहे अगर बात कर ली जाए आपके लंग्स की बात कर ली जाए, ट्रैकिया की बात कर ली जाए, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनकी बात कर ली जाए, तो ये इंतहाई हसास और सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। इनमें किसी भी तरह का जो आउटर पार्टिकल है अगर वो चला जाता है खुदा ना खास्ता, तो बहुत बड़े मसाइल का हमें खुदा ना खास्ता सामना करना पड़ सकता है। सो डस्ट जाती है, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं उसकी वजह से हमें सांस के इश्यूज आते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है, खांसी आती है, और आपके जो बोलने की मुस्तकिल एक सलाहियत होती है ना कि जिसमें आप अटकते नहीं हैं, आप थोड़ा सा लड़खड़ाते नहीं हैं, आपको सांस नहीं चढ़ता, आपको और सारे मामला होते हैं। मैं ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहा था कि जब आपको सांस का मसला होगा तो हमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे ब्लड में वो कम हो जाती है, वो कम होती है तो हम वीक हो जाते हैं, वज़न नहीं बढ़ता, और बहुत सारे ऐसे आपकी हाजमे के जो अमराज हैं इनका आगाज़ हो सकता है खुदा ना खास्ता। सो ये तमाम तो चीज़ों का आपको बताने का मकसद, बिल्कुल आपको डराना या आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट करना मकसूद नहीं था, बताने का मकसद ये था कि इन मामलात को, एलर्जी से जुड़े जो ऐसे हसास मामलात होते हैं, जो लोग होते हैं सेंसिटिव लोग होते हैं मेरे जैसे आपके जैसे, इनको भी हमने थोड़ा संजीदा लेना है, इनके हमने मसाइल को समझना है, इनका हमने ख्याल रखना है। मैं अपनी बात कर रहा था कि जैसे अब मैं घर पे जाता हूँ, मेरी अम्मी को बताया कि जब ये घर होता है ना तो हमने झाड़ू नहीं लगानी है, हमने जो डस्ट होती है, जो झाड़ पूंछ होती है घर की, वो हमने नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो की तो इसको छींके शुरू हो जाएंगी, और बहुत बीमारी वाली जो कैफियत होती है, बीमारों वाली जो एक हालत होती है उसमें मैं चला जाता हूँ। सो सिर्फ मेरी बात नहीं है, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो, आपके साथ ऐसा हो कि घर में जब सफाई सुथराई का काम होता है या कोई बहुत तेज़ परफ्यूम लगा लेता है या कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे मुझे याद है कि लास्ट टाइम हमारे घर में ये जो लाल बैग होते हैं ना, कॉकरोच होते हैं, लड़कियों के फेवरेट होते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। सो जब वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा फैल गए थे तो घर में एक स्प्रे किया गया था, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी, मेरी हालत के अलावा हमारे घर में एक पेट कैट है, उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी।
हम दोनों बहुत मज़े में थे और नशे में, छींकों में, और वो क्या कहते हैं कि जो आपकी हालत गैर हुई होती है ना, उस हालत गैर के नशे में हम झूल रहे थे। सो इन अ फन वे बात की जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफरिंग का हमें सामना करना पड़ता है। सो जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, चाहे वो आपके सांस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी ऐसा मामला हो, इनके लिए बहुत हसासियत वाला मामला होता है। सो हम कई बार ये कह के इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, या चल तू बाहर चला जा, या कपड़ा रख ले नकते। सो ये मामला हमने नहीं करने हैं, हमने कम अज़ कम अगले बंदे का कंसेंट ले लेना है। अगर आप राज़ी हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, उसके बाद आप ये तमाम तर मामलात कर सकते हैं, क्योंकि आपको इशू नहीं हो सकता, आपको मसला नहीं हो सकता, लेकिन सामने वाले के लिए जो आपका कोई एक्ट है, आपका जो अमल है, वो वबाले जान हो सकता है। तो पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को पैनिक करते देखा है, वो किसी ऐसे ट्रामा का शिकार हो जाते हैं, सांस का एकदम से ऐसा इशू आता है कि उनसे बोलना या चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। तो ये बिल्कुल कोई सतही बातें नहीं हैं, इलॉजिकल बातें नहीं हैं, ये हकीकी बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं। ये हम में से ही सब लोग होते हैं कि जिनके साथ ये मामलात होते हैं। सो आज इन्हीं लोगों को डेडिकेट करने के लिए ये आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एलर्जी डे, यानी कि एलर्जी के हवाले से आज का जो आलमी दिन है वो मुक्तिस है इन तमाम अफराद के नाम जो कि किसी भी तरह के एलर्जी का शिकार हैं, और उससे नबद आजमा होने के साथ साथ इसका मुकाबला जो है बहुत ही जवान मर्दी के साथ और बहादुरी के साथ कर रहे हैं। वैसे अभी सवाल से हम बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे कि 10 ऐसी निशानियां, हम हमेशा बात करते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, आपकी जहनी जो आपके इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी 10 निशानियां ऐसे लोगों में पाई जाती हैं जो कि जहनी तौर पर कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत मज़बूत होते हैं। सो उन मज़बूत और कामयाब लोगों में 10 ऐसी कौन सी खासियतें होती हैं कि जो कि उनको मुआशरे में, अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी में, या अपने कौम मिल्लत में मुमताज़ बनाती हैं, उनको सुपीरियर बनाती हैं, उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा स्पेशल बनाती हैं। सो अगर हम इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को जांचेंगे, इनके बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ख़ुद पे काम करेंगे और इनके हवाले से कोशा रहेंगे, तो हो सकता है कि वो तमाम खसूसियात, वो तमाम तर मामलात हम अपने साथ भी मुंसलिक कर पाएँ या उनको इख्तियार कर पाएँ। वेल, इस हवाले से हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, और कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं रोनाल्डो के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक गम की कैफियत में मुब्तला हैं, बहुत सैड हैं। सो अभी मैसी बाकी हैं, और मैसी के जो फैंस हैं वो बता सकते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। तो इन दो चार नामों का तो हमें पता है, नेमार का पता था, उनके साथ भी जो हुआ है, और वो बयान का जो गाना है ना, मैं भागा भागा सदियों से जागा, आया हूँ मीलों करके इरादा, सो उसकी रील्स बनाई जा रही हैं, मीम्स बनाई जा रही हैं नेमार की वीडियोस के साथ, पुरानी वीडियोस के साथ। सो बुरी बात है, इस तरह के फन जो है ना वो नहीं करने चाहिए। सो इस हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन इन द मीनवाइल हम प्रोग्राम को जो मौसीकी का, म्यूज़िक का तड़का है वो भी लगाते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इन था ये आसान, यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पर आने के बाद आप बिल्कुल मुझ तक अपने रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। हम रखेंगे आपकी तमाम तर फरमाइशों का तहे दिल के साथ ख्याल, और इनका खैर मकदम किया जाएगा। वेल, अभी हम बढ़ते हैं एक गाने की जानिब। यह गाना मुझे ज़ाती तौर पर इतना पसंद नहीं है, लेकिन इस गाने की वाइब तो है। तो पल पल जीना मुहाल, इस ट्रैक की उस बार आपसे मुलाकात होती है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: One time for Bilal Said, Young Day C. Let's get it.
1: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ कमर्शियल्स थे और इन मीन वाइल रज़ा चौधरी साहब की कॉल आई थी और बता रहे थे कि एलर्जी के वाले से उनके क्या तजुर्बात थे और क्या क्या उन्होंने महसूस किया, फील किया। सो इस हवाले से हम भी बात करेंगे। आज एलर्जी के हवाले से आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। आप अपने तजुर्बात, अपने मामला जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस हवाले से हमने तफसीली बात की और आप भी बता सकते हैं क्या आप ऐसे टोटके हैं, क्या ऐसे मामलात हैं। लेकिन अगर वो आपको रास आए, आपको ठीक लगे हैं, सो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद, लेकिन अभी एक ट्रैक शामिल कर लेते हैं। बिलाल सईद की आवाज़ में बहुत चुलबुला सा गाना है, सो आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत आप झूमेंगे इस ट्रैक। उस पर आपसे मुलाकात होती है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।
0: वन टाइम फॉर बिलाल सईद, यंग दे सी, लेट्स गेट इट।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल, बट नॉट एनीमोर। Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: जी, आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रिइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: आपकी जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फेमन वन चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं शो कॉल्ड सिटी वाइब्स विद मुस्तफ़ा। वापिस से आप तमाम सुनने वालों को सुबह बखैर जिंदगी, गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेल 9:57 हुए चाहते हैं और आपके कुछ पैगाम मौजूद हैं, बल्कि अच्छे खासे हो गए हैं। आज मैं देख रहा था, आज तो रौनक लगी पड़ी है। देखते हैं कौन कौन मौजूद है, कहां से मौजूद हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं। सो जनाब बिल्कुल, अगर तमाम सुनने वाले जिन्होंने आज तक हमसे कोई बात नहीं की है, अपने दिल का राज शेयर नहीं किया है, सो अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं, फीडबैक से आगाह करना चाहते हैं, या अपने किसी प्यारे को या किसी प्यारी को कुछ भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सो उसके लिए तरीका कार आपको बताया जा चुका है। फिर बता देता हूँ, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, पेज के असल होने की निशानी है कि वहाँ पर आपको जो पहली पोस्ट दिखेगी, नज़र आएगी, उसमें जो पहला पोस्टर होगा ना, जो रिसेंटली अपडेटेड होगा, वो मेरे शो से मुतालिक होगा। तो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप हम तक यानी कि मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं। तो कुछ ही देर के बाद, बल्कि अभी न्यूज़ का वक्फा जो है वो आने वाला है, तो देन उसके बाद आपके साथ बात करेंगे और आपकी बात करेंगे कि आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं उसके लिए नंबर आपको बता देता हूं, अभी आप लिख लें। 10 बजे के बाद आपकी ऑफकोर्स जो लाइव कॉल्स हैं वो भी इंटरटेन की जाएंगी, मौजूदात के वाले से हम बात करेंगे 04221100101। और इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ 10 ऐसी निशानियां, 10 ऐसे साइंस हैं, अलामत हैं, जो कि जहनी तौर पर जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनमें पाई जाती हैं। सो उनमें बात करेंगे कि अगर आप में भी मौजूद हैं, सो किस तरह आपने उनको एक्वायर किया, किस तरह से अचीव किया। अगर नहीं है तो आपको जान के उनके बारे में सुन के पढ़ के अच्छा लगेगा। तो हम बारहा बात करते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो मेंटल वीकनेसेस होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, ऐसी कजियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ होती हैं, इनके बारे में बात की जाती है। लेकिन जो आसाबी मजबूती होती है आपकी, जो मेंटल एज के अलावा जो आपकी जो एक मैच्योरिटी होती है, इस पर कम बात की जाती है। सो इस हवाले से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। एलर्जी का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, इस हवाले से मैंने अपने ज़ाती तजुर्बात और कुछ मामलात, कुछ ऐसे मौजूदात आपके साथ शेयर किए, देन इनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक न्यूज़ ब्रेक को शामिल करते हैं, देन आपको ज्वाइन करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तुर्क सरमायाकारों और सरकर्दा कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने जेनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में मस्नूई ज़हानत के कवायद और ज़वाबित से मुतालिका चैलेंजों पर गुफ्तगू की है। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुस सत्तार इधी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम ने कल अदम एक्शन कमेटी के रियासत मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया है। खबरें तफसील से।
1: This is FM Bokon.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: Stay tuned.
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Apply now at ignite.org.pk.
3: 101 FM.
4: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है
5: और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है।
4: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
6: फिनटेक,
4: हेल्थ टेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें। ignite.org.pk पर
3: 101 FM।
7: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
8: This is FM 101.

आ रहा होता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने लास्ट टाइम हमने बात किया था कि मॉनसून का जो महीना होता है ना, ये जो सीज़न होता है, ये सबसे बेहतरीन सीज़न होता है दरख्तों को लगाने का, दरख्तों की पैदावार को बढ़ाने का। तो इसमें कौन कौन से दरख्त लगाने चाहिए, जैसे भी लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि जो मकामी दरख्त होती है ना, आपके आपके इलाके के हिसाब से, आपकी जो ख़त्ता है, पंजाब का ख़त्ता है, आपका बलाई ख़त्ता है, पहाड़ी ख़त्ता है, इलाका है, सो उसके हिसाब से आपने मालूमात हासिल करके उस तरह के दरख्त लगाने हैं जो कि आपके सीज़न के हवाले से, आपके इलाके के हवाले से ज़्यादा मौजू तरीन होते हैं। तो इस हवाले से हमने लास्ट टाइम बात की थी और ये बातें सॉन्ग चलती रहती हैं, आपके पैगाम शामिल करेंगे। इफ्तिखार नकवी साहब का मुझे नोटिफिकेशन आया, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, बिरयानी खिलाते हैं, लास्ट टाइम बात हो रही थी इनसे और क्या ही मज़ेदार इंसान है। सलामत हैं शाह जी। और तमाम सुनने वाले, तमाम चाहने वाले जिनके पैगाम मौसूल हो चुकी हैं, मैं इनको गो थ्रू कर रहा हूँ, इनसे गुजर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, तो कोई अच्छी बात होगी, काम की बात होगी, तो हम उसको शामिल भी करेंगे। ठीक हो गया। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका ही था आसान, एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, तो इस पे पहली पोस्ट आपको जो दिखेगी, नज़र आएगी यहाँ पर आने के बाद, आप अपनी राय का, अपनी बात का, अपने दिल की आवाज़ का इजहार कर सकते हैं, अल्फाज का इजहार कर सकते हैं। वेल, अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, चले थोड़ा सा हम देसी माहौल बना लेते हैं। और टिकटों से मुझे याद है, गाने का नाम है टिकटा, सो टिकटों से मुझे याद आया, आजकल जो मेरा बैग है ना, फकी वाला बैग है जोक सा पार्ट, जो मेरा बैग है जिसमें मैं अपना मोबाइल और ये सब चीज़ें, चार्जर, हैंड फ्री, अपनी कैप, रुमाल, ये सब चीज़ें रखता हूँ ना, सो इसकी एक मेरी पॉकेट है, इसमें इतनी ज़्यादा टिकट्स जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं, बसों की, इसकी, मेट्रो की, स्पीडो की। सो आजकल बड़े सफ़र हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र भी हो रहे हैं, अंग्रेज़ी वाले भी और दूसरे वाले भी। सो गर्मी है, बहुत सफ़र करते हैं और आजकल मैं ना ट्रैवल करके एक जगह पे जा रहा हूँ, आपको कभी बताएंगे। सो कोशिश कर रहे हैं कि अपने करियर के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, मीडिया के पैशन और शौक के हवाले से ना, लाइफ में कुछ हम करें। सो वो कर भी रहे हैं। सो टिकटों से मुझे ये बात याद आई और इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। कभी टिकटें ली हैं, कभी दो टिकटें ली हैं, अगर नहीं है तो किसके लिए ली है आज बता दें अगर नहीं तो ले लिया करें ना, ले जाया करें अपने किसी दोस्त वगैरह को भी, अपनी बंदी शंदी को ले जाया करें तो एक ऐसा ही ट्रैक नदीम अब्बास लोने वाला की आवाज में मिलके सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के उस पार, कहीं जाना नहीं हमारे साथ रहिएगा।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैंने कमर्शियल थे का वो मैंने चलाने थे और साथ में कुछ प्रोमोज थे। एकदम से ज़िया अंजुम से अंजुम, अरे क्या बात है, अंजुमन यहाँ पे लग गई थी। चले, अच्छी वाइब थी। कैसे बनाया, कैसे कर लेते हैं आप ज़िया भाई? वेल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं। हमदुल्ला मलाखिल मौजूद थे, आसिया खान मौजूद थी और कुछ कह रही थी, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही थी। वेल जनाब, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की, उस पर बात करने की, आपसे बात करने की, 0422111001। अभी आपके जो कमेंट्स हैं, जो ऑनलाइन पैगाम हैं, इनको इंटरटेन कर लेते हैं और देखते हैं कौन है कहां से और क्या क्या बातें हो रही हैं। सो अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। सबसे पहले बरकत रमजानी हमारे साथ हमेशा ही की तरह आज भी मौजूद हैं। इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद हैं। अरे शाह जी, बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी हमें सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। साइम अली मौजूद हैं, नुसरत साहिबा हैं, गुलियासी नाज हैं, असगर अहम हैं, कवल नाज हैं और किंग फजल खान काकड़ ने हमारा साथ दिया है। रेहाना खान है बकर से, मलिक अरसल नवीद हैं, शेराज अली हैं, अरे क्या बात है, मेरे पुराने चैनल के बहुत सारे दोस्त बाबा आज इकट्ठे हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, सलामत हो, अपना ख्याल रखो। हमदुल्ला मलाखिल ने हमें यहाँ पर भी ज्वाइन किया है। जनाब अभी हम एक ओके 0422111001 यानी कि 0421111101, ये नंबर है ना, वैसे उर्दू में किस तरह होता है 0422111001 यानी कि 101। तो मैंने बड़े लोगों को ना 101 कहा है ना, तो वो कहते हैं क्यों होता है 101 को कहते हैं 101। शुरू में मुझे भी यही लगता था, ये कोई ना कुछ तरह का है, इसमें ओ डाल देती हैं, सिफर को ओ भी कहा जाता है, तो हम भी कहते हैं, अच्छा लगता है कहना।

0: वेल जनाब, कंवल नाज कह रही हैं शमसी लिसनर रेडियो ग्रुप वालों की तरफ से भी सलाम और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ। रे ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम, हमदुल्ला मला खेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मला खेल। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ मुस्तफ़ा। कह रही हैं कि सलाम और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ। अच्छा अच्छा, आपने भी ये कह दिया। नहीं, आप कह रही हैं कोयटा से वेलकम कर रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला कह रही हैं कि वो तमाम चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, इन्हें कभी नज़रअंदाज ना करें, ख्वाह वो कितनी ही सादा क्यों ना हो। सही हो गया, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अपनी इंटरटेनमेंट के हवाले से, अपनी तफरीक के हवाले से, कुछ भी आपको अच्छा लगता है ना, उसको लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी एक है, ये बार बार नहीं मिलती है, लेकिन ये जो ऐसे एक एक बार आने वाले मौाक़े होते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम, ये जो मोमेंट्स होते हैं, इनको लाजमी आपने अवेल करना होता है। इसके अलावा हमदुल्ला मला खेल कह रहे हैं कि हर चीज़ का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं, कुछ नामुकम्मल चीज़ें भी खूबसूरती रखती हैं। बताओ ना, किस चीज़ की बात कर रहे हो हमदुल्ला, खुल के बताओ। इफ्तिखार नकवी हैं, कह रहे हैं जी ग्रेट शो ऑफ ग्रेट आरजी। अरे क्या बात है सर, आप ग्रेट हैं तो हम आपकी सोबत में आपके साथ है कि ना, हम भी ग्रेट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। ज़रा नवाजी है, मोहम्मद शहबाज हैं, कह रहे हैं नाइस शो ब्रो, नाइस वॉइस, सलाम टू ऑल। और कह रहे हैं सलाम तारिक बाग बस्ते वाले को राजगढ़ लाहौर। ठीक हो गया, वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहिबाएँ कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, फिरोजपुर रोड लाहौर से हूँ आपके साथ, कैसे हैं आप बेटा जी। अरे मैं बहुत ठीक, बहुत अच्छा हूँ आंटी जी, आप बताएं कैसी हैं। इनके अलावा गुल यासीन नाज हैं, कुछ दोस्तों के नाम आपने मेंशन किए हैं, रियाज भट्टी हैं, बड़ा इन्होंने जो है ना रौनक यहाँ पे लगाई हुई है, रश लगाया हुआ है पोस्टर्स का। सो देखते हैं, हम आपके पोस्टर्स भी देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं जी। आपके अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से।
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: क्या हाल है।
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी शाम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। वो जो हमारा रोज नहीं वो खांसी शो हल्की जब शुरू हो जाता है,
0: हाँ, नहीं होता है।
1: दो दो मिनट के बाद वो अक्सर जब हम सब चाय पीते हैं।
0: अच्छा, सब चाय पीते हैं, अरे क्या बात है। सही, तो कावा शावा नहीं पीते आप तो वैसे भी, वो हो ना क्या कहते हैं, कोयटा से हो।
1: वो सर्दियों में जब नजरा जुकाम हो जाता है फिर वो काला मिर्च में हम वो देसी वाला यखनी नहीं है शुरुआत।
0: अच्छा क्या बात है,
1: इस्तेमाल कर लेते हैं।
0: सही सही, चलो अच्छी बात है।
1: सब चाय में हम नींबू भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, गरम पीते हैं।
0: क्या क्या, कहाँ मुर्गी डालते है, क्या क्या डालते है, मुर्गी डालते है।
1: नहीं नहीं, अक्सर एक वो सर्दियों में यखनी नहीं होते, वो
0: हाँ, नहीं होते। यखनी, हाँ जी, हाँ जी।
1: काले पानी में जो यखनी और काले मिर्च डाला अवेलेबल है, तो फिर सब चाय और अदरक और लाची हम ये डालते हैं, नींबू डालते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी पिलाना फिर यार, सही है,
1: इंशाल्लाह जरूर मैं आपको पिलाऊंगा।
0: चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखना। और कुछ कहने, आमीन आमीन। चलो सलामत, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। 04221100101। अभी हम क्या करते हैं, एक ट्रैक शामिल कर लेते हैं, और मुझे फरमाइश आई थी जनाब सरमद कदीर का गाना सुनने की। सो एक ऐसा ही ट्रैक कहते हैं शायर, और बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। सरमद कदीर की आवाज़ बड़ी अच्छी है, और जो म्यूज़िक ये बनाते हैं, कंपोज़ करते हैं, क्या ही कहने हैं। गाना आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपने नहीं सुना, अगर आपने पहले सुन रखा है तो बहुत आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा। वेल, गाने से पहले एक और कूलर को हम शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से।
2: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
0: अरे माशाल्लाह सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे।
2: लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
0: जी हाँ जी हाँ, नवीद साहब क्या हाल चाल है।
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दम दम खुश है और दम खुश।
0: क्या बात है सर, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं जो आप नहीं करते हैं। आमीन आमीन इलाही आमीन। सर सलामत तो हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है आपको।
2: नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा चलिए, क्या बात है सर, क्या बात है, चलें अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और कुछ कहना है।
2: और सर यही कहना है कि आपके सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और आपकी पूरी मैनेजमेंट को दोनों हाथों से मेरा सलाम।
0: अरे सर आपको भी सैल्यूट है, आपको भी सलाम है, और वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, सही है। اوکے سر، اوکے اللہ حافظ. اوکے اویل جناب، 10:23 ہوئے چاہتے ہیں اور ہم اپنے موضوعات کو آگے بڑھائیں گے. آج کے ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ آپ سے زیادہ جتنی بات ہو سکتی ہے وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. سو اس ٹریک کو شامل کرتے ہیں سرمد قدیر کی آواز میں، کہتے ہیں شاعر، اور ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پاس. سو اسٹے ٹیون، اسٹک اراؤنڈ، اینڈ یس، ڈونٹ گو اینی ویئر.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
2: I love FM 101

0: जनाब वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 10:32 हो चुके हैं जनाब, और आपके पैगाम को और आपकी लाइव कॉल्स को साथ साथ एंटरटेन किया जा रहा है। और फिर भी कुछ कॉलर्स मौजूद थे और कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अस्सलाम
0: वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मुझे लगा आप कहने लगी हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बात कर रही हूँ।
1: हाँ सुनाए कैसे आप आज?
0: मैं बहुत प्यारा, आप बताएं कैसी हैं?
1: मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी।
0: अरे क्या बात, चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसी प्यारी रखे। क्या कहना चाहेंगे कमल?
1: बहुत प्यारा शो है आपका, और मैंने काफी अच्छे बाद मैंने आज आपका शो सुना है और अच्छा लगा।
0: अरे क्या बात है, आपका उसने समात है।
1: और मेरी आपसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हो रही है।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, कैसा लगा फिर बात करके? अच्छा लगा।
1: हाँ जी माशाल्लाह बहुत
0: मुझे
1: अच्छा
0: भी
1: लगा,
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छा आपका अंदाजे भी है।
0: अच्छा सही, ठीक हो गया
1: जी जी। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को और शमसी ग्रुप वालों को बहुत बहुत सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ, और आपके लिए भी अल्लाह मियां आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आते रहे और शो करते रहे।
0: आमीन इलाही आमीन।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके 04221000101 गाना गा गया एकदम ख़त्म हो जाता है। इसको हम बैग पे रखते हैं और आपसे बात करते हैं। सुबह का माहौल है थोड़ा सा ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं परी से बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक, कौन बात कर रही है, कहाँ से? ओके अच्छा, ये मैंने कॉल नहीं काटी है, खुद कटी है और बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन भी थी। आप दोबारा ट्राई कर ले, मैं ले लेता हूँ कॉल। सही है, मैनू केड़ा वेला आंदा है। मुझे 10:35 बजे जाते हैं शो कॉल्ड सिटी वाइब्स और मेरा आपके साथ ये साथ तकरीबन आधे घंटे तक के लिए बाकी है। ओके जी, अरे फरी मैम आ गई है, क्या हाल चाल है? मैं बहुत अच्छा, आप बताएं कैसी हैं?
1: शुक्र अल्लाह ताला का, मैंने कहा प्यारे और प्यारियां इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका हाल ही पूछ लूं।
0: अरे क्या बात है, आपसे प्यारी कौन हो सकती है भला? हाँ
1: मैं प्यारी हूँ, गर्मी से काले हो गए सारे, दुआ मांगे।
0: तो काले क्या प्यारे नहीं होते हैं? मुझे मेरा तो पसंदीदा जो कलर है वो है ही काला।
1: नहीं, आप वाइट हैं, मैं आपके लिए ना वो ढूंढ रही हूँ, वो अच्छा। वाली
0: अच्छा ठीक है ठीक
1: है, ढूंढ वाली ढूंढ रही हूँ।
0: हाँ ढूंढे ढूंढे ढूंढे, अरे क्या बात है क्या बात है, निकी और पूछ पूछ
1: रहा हूँ। रहमत की बारिश हो जाए,
0: आमीन आमीन इलाही।
1: बड़ा अच्छा है, कलर बड़े हैं, मैं फालतू बात करूँगी?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, बात नहीं नहीं नहीं, बात करें मुझे आप बताएं, आप माशाल्लाह एक सीनियर सिटीजन है, मुझे बताएं जब बच्चों के एलर्जी होती है या किसी को भी तो क्या देती हैं, कोई टोटका शोटका करती हैं आप?
1: हाँ जी, बच्चों पर एलर्जी को ये कावा बना के देना चाहिए, नजला जुकाम हो तो वो है, क्या नाम है, मिट्टी देनी चाहिए, गला साफ हो जाता है, दालचीनी डाल।
0: ठीक हो गया, तो ये पानी में गर्म करके क्या इसका तरीका क्या?
1: पानी थोड़ी मिट्टी डाले, थोड़ी दालचीनी डाले, थोड़े चाय की पत्ती डाल दे, तो थोड़ा सा गुड़ डाल दे, तो वो ना एलर्जी ठीक हो जाएगी।
0: चले ठीक
1: है, तो पेट्रोल वाले पानी से नहा ले तो वो बेहतर है।
0: सही, अच्छा मैंने ये कावे वाला मैंने अपने लिए पूछा था, वैसे बहुत शुक्रिया बताने के लिए।
1: हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो जब बहुत सारी दुआएं लगे हैं, आने वाले हैं, भी आ रही हैं, नीला जी भी आ रही हैं।
0: आज ओके जी, अल्लाह हाफिज़।

0: जनाब कमल नाज मौजूद हैं और कुछ शेर व शायरी की है। कमल ये टाइम नहीं है शायरी का, अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ काम की बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
1: जी
0: वालेकुम अस्सलाम, हमीद साहब आ गए। नहीं हमीद साहब, की हाल चाल ने? बारिश हो नहीं ना, जेडी किथे किथे पए, बारिश होए के जेडी ना इको वारी पए ते जेडी कि ना काज वाज के पए। आमीन इलाही आमीन, क्योंकि जेडी इको वारी होएगी ना ते मौसम थोड़ा ठंडा होएगा, नॉर्मल होएगा, नहीं तो थोड़ी बारिश जेडी है ना वो घुट पा देंदी है, जेड़ा ना हबस हो जांदी है, गर्मी हो जांदी है।
1: चलो
0: क्या बात, क्या बात,
1: भर के
0: शहजाद साहब पता नहीं, मेरे ख्याल सुते ने लग रहे है, आ जाने कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी सर, जी जी जी जी जी जी,
2: आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, समनाबाद लाहौर से।
0: सलमान भट्ट बात कर रहे हैं समनाबाद लाहौर से, जो काउंसलर हैं यहाँ समनाबाद में जमात इस्लामी के? एक
2: नहीं, वो हाफिज सलमान बात कर रहे
0: थे। अच्छा अच्छा अच्छा,
2: वो तो फुटबॉल फेडरेशन के सदर थे ना।
0: सही सही,
2: वो कौमी असेंबली के मेंबर भी थे। मैं वो नहीं, मैं तो एक आम था।
0: अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ था वैसे। चलिए अब आपसे भी बात करके खुशी हुई है सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: आपको अपना मकसद सुनते हैं, लेकिन फोन एक दफा शायद पहले आपसे बात हुई है और आज बड़ा मजा आता है आपके प्रोग्राम
0: का। अरे क्या बात है सर, मुझे मुझे भी दुगना मजा आ रहा है आपसे बात। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे मजीद, छोटा छोटा सा पैगाम।
2: छोटा सा ये है कि मैं जब आप लोगों को सुनता हूँ ना, मैं इस वजह से देखता हूँ लोग सुस्त सुस्त फिर रहे हैं, आप माशाल्लाह सुबह सुबह बड़ी हिम्मत वाले और चुस्ती आ जाती है। हाँ सुन के
0: सुनना चाहिए ना, मैं इसलिए कहता हूँ रेडियो सुनना चाहिए।
2: अच्छा, दूसरा ये कि आज मुझे लगता है आपने टॉपिक को नहीं ख्याल रखा
0: सर। बेसिकली टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था, एलर्जी के वाले से हम बात कर रहे थे, सो यही हाँ, क्योंकि थोड़ा इंफॉर्मेटिव हम रखते हैं। हाँ
2: मैं तो जब 40 से बना या 50 से बना, खाने पीने की चीजों को कम कर दें। हाँ, जो चीज तंग करे वो ना खाएं, जो चीज तंग करे
0: हाँ,
2: वो ना
0: बिल्कुल, खाओ बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, जो आपकी बॉडी को तंग है। बाकी ये है कि आपका प्रोग्राम अच्छा होता है माशाल्लाह, बहुत
0: सर आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं ना। चलिए ठीक,
2: मैंने तो एक जगह पे पढ़ा था कि जिंदगी को जितना सादा कर लें उतनी आसान हो जाती है, तो बस वो हाँ जितनी सादा कर लें उतनी आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल,
2: साथ ही इतना नहीं चाहिए और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल
2: बहुत शुक्रिया।
0: चलिए सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहें। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ट्रैक चेंज करते हैं और देन उसके बाद हम अपने अगले मौजू के वाले से बात करेंगे, जो कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की हम बात कर रहे थे कि उनके अंदर ऐसी क्या खसूसियात पाई जाती हैं, उनमें से हम 10 की बात करेंगे। ابھی ہم ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: سلیم ٹیلر اچھے بازار
0: سے. سلیم ٹیلر آ گئے ہیں سر, کیا حال چال ہیں
3: جی؟ شکر اللہ کا.
0: ارے ماشاء اللہ سر, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنا چاہیں گے, اچھرے میں کیسا موسم ہے؟
3: اچھرے میں گرمی بھی ہے, لائٹ بھی جا رہی ہے.
0: اچھا
3: چلے, بہت جو کل ہے بس وہ آج نہیں ہے,
0: آج نہیں ہے. صحیح صحیح. ارے کیا بات ہے, اچھرے کی بارشیں میں بڑی یاد کرتا ہوں. بچپن میں بڑا نہ آیا ہوں, میرا بچپن میں بارہ کہتا ہوں اچھرے میں گزرے, بہت نوسٹیلجیا ہے مجھے.
3: اچھرے میں پانی بہت کھڑا ہوتا تھا, گورنمنٹ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں.
0: یہ ٹھیک ہے,
3: آپ کا شو بہت پیارا آتا ہے ماشاء اللہ.
0: سر آپ پیارے ہیں.
3: اور شکنجی بھی پینی چاہیے, لسی پینی چاہیے, کچی لسی.
0: ہاں جی ہاں جی بالکل پینی چاہیے,
3: لسی پینی ہے. وہ جو ہے نا آپ کو الرجی نہیں ہوگی زیادہ.
0: چاٹی کی لسی,
3: ساتھ
0: چاٹی کی لسی بتا رہے ہیں آپ؟
3: چاٹی کی لسی.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا, وہ کافی کڑوی نہیں ہوتی, کھٹی.
3: یہاں پہ ہمارے پاکستانی چونک ہے, ادھر لگائی ہیں دو تین بندے نے.
0: ہاں اچھا,
3: وہ تو بہت ذائقے والی ہے.
0: صحیح صحیح, چلے ٹھیک ہو گیا, پیتے ہیں پھر آ کے. صحیح ہے
3: تو سر, یہ آپ کے پورے مینجمنٹ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, کتنے اچھا.
0: ارے سر آپ کو بھی سلوٹ ہے,
3: اور شمسی کلب کی طرف سے آپ کو سلام.
0: وعلیکم السلام. زندہ باد, زندہ باد.

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
0: ठीक हाल है, आप बताएं क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाएं क्या हाल है सर?
0: अच्छा, तो अपना नाम बताएं ना, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: मैं इकरा लाहौर से।
0: इकरा लाहौर से बात, अपना नाम बता दो।
1: इकरा।
0: इकरा, इकरा, इकरा क्या हाल है, इकरा क्या कहना चाहेंगे आप?
1: कुछ नहीं, बस ये
0: मैं आपका शो रोज सुनती हूँ, लेकिन कॉल आज फर्स्ट टाइम थी। अरे क्या बात है, कल वाला भी आपने मेरा शो नहीं सुना कल तो क्या कमाल था ना।
1: शायद मिस हो गया, शायद मुझे नहीं पता।
0: चले ठीक हो गया, आपने कल भी सुनने, सही है?
1: ओके,
0: हाँ कल सुनने, अगले बुध को भी सुनने। अच्छा जी जी,
1: अच्छा बात, एक सॉन्ग अगर आप डेडिकेट कर दें तो।
0: हाँ मुझे दो बताएं, मैं दोनों नहीं करूँगा। नहीं नहीं, बताएं बताएं, हाँ बताएं।
1: मेरे
0: वे सुन मेरे, अच्छा वो जो है आईमा बेग का, हाँ
1: आई थिंक वो ही है।
0: अच्छा चलें ठीक है, चलाते हैं, ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओके आमीन, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, ट्रैक शामिल कर लेते हैं, फरमाइश है और होपफुली ये ट्रैक ही का होगा। वैसे फरमाइशी गाने मैं चलाता कम ही हूँ, या कोशिश करता हूँ कि नहीं चलाता, वक्त भी कम है और मुकाबला सख्त है। अभी एक ट्रैक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। इन अ मीनवाइल आपकी जो ऑफर कॉल्स हैं वो इंटरटेन की जाएंगी, सो 04 2111 0011, देन उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के हवाले से। So stay tuned, stick around, and yes, don't go anywhere.

0: जनाब, सबसे पहले तो जो मजबूत लोग होते हैं ना, मजबूत आसाब के मालिक लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, तो सबसे अच्छी बात वो आप भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी है तो आप बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, आपने अपने आप को तन्हा नहीं समझना, क्योंकि जो मजबूत लोग होते हैं ना वो तन्हाई को पसंद करने लगते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है ना, एक वाहमा, एक फरेब या तस्वुर पाया जाता है कि हम एक होती है तन्हाई, एक होती है अकेला रह जाना। इसमें हम फ़र्क को जो है ना महसूस नहीं कर पाते हैं, इसको फ़र्क नहीं कर पाते हैं। सो तन्हा होना, तन्हा रहना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अकेले रह जाना ना आपकी मर्ज़ी, आपकी मंशा के ख़िलाफ़ होता है, आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होता है। तो तन्हा अगर आप अपने आप को रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फ़ेस किया होता है, आपने बहुत कुछ सहा होता है, देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है। तो आप अपनी ज़ात के साथ, अपने सेल्फ के साथ ज़्यादा कामिल अपने आप को महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने आप में खुद एक कंटेंट होते हैं, अपने आप से महसूस होते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। सो ये मजबूत लोगों की निशानी होती है कि वो तन्हाई को पसंद करते हैं। वेल, इसके अलावा ये बात होती है कि हमेशा कोशिश ये करना छोड़ देते हैं कि अपने आप को समझाना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, अपने आप को जस्टिफाई करना है, ओवर एक्सप्लेन करना है। हमेशा ऐसा होता है ना कि कई बच्चे होते हैं, या स्पेशली हम अपनी खातीन की बात कर लें, ओवर एक्सप्लेनर हो जाती हैं अपनी बात को कहने के लिए, और इसके पीछे बिल्कुल ही उनका कसूर नहीं है। हमेशा उसी के साथ ये मामला होता है, बच्चों के साथ होता है, जो वल्नरेबल लोग होते हैं उनके साथ ये मसला होता है, ये मामला होता है, क्योंकि उनकी बात को सुना नहीं जाता, उनको समझने की कोशिश की नहीं जाती। हमेशा अगले को समझने के बजाय उसको समझाने के लिए जवाब दिया जाता है ना। सो वहाँ पे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अन इंटेंशनली अगले बंदे को जो है ना अपना डिपेंडेंट बना रहे होते हैं, उसके जज्बात को, उसके एहसास को ना हम एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। तो मजबूत लोगों की ये निशानी भी होती है, एक क्वालिटी ये होती है कि वो अपने आप को ना हर किसी को समझाना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी बात होती है कि जो जहरीले और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जाली लोग होते हैं, एक मखोटा जो अपने मुंह पे चढ़ाया होता है, फेक लोग होते हैं ना, अच्छे अच्छे अल्फाज बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है, उनकी इंटेंशन जोर होती है, उनकी फीलिंग जोर होती है, उनकी वाइब और होती है। तो क्या करते हैं कि जो मजबूत लोग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, वो अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ मज नहीं कर पाते हैं, उनके साथ नहीं वेस्ट करते हैं। कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गैस लाइटनिंग करते हैं, और नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत सारे मामले आते हैं आजकल, पढ़ रहे हैं आप इस हवाले से, देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो है ना किनारा कशी कर लेना है, जो वो आपके मजबूत होने की निशानी है। और हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले हफ्ते जो है ना मज़ीद हम बात करेंगे इसी हवाले से, और कुछ मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो होती है ना मजबूत लोगों की, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, उनकी ये होती है कि वो अपनी तवानाई को, अपनी एनर्जी को, और अपना जो मेंटल पीस होता है, अपना जो जहनी सुकून होता है, जहनी हालत की हिफाजत करते हैं। वो अपने आप को बिला वजह किसी पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि जिसके बाद उनको पता हो कि इसका नतीजा या इसका रिजल्ट क्या होगा। वो अपने सुकून को, अपने आराम को, अपनी जो एक कह लीजिए ख्वाहिशात हैं, उनको ज़्यादा फोकलिया देते हैं। डजेंट मीन कि आप सेल्फिश हैं, और सेल्फिश होना आजकल इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंसान को सेल्फिश कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे, खुद गर्ज नहीं होंगे ना, तो आजकल का ज़माना ऐसा है, ये हकीकतन मैं बात कर रहा हूँ, और ये मामलात फेस होते रहते हैं कि लोग आपको बेच के खा जाते हैं, एक इस्तियारतन बात की जाती है, ऐसा होता है। सो वेल, इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ, ये तमाम तर मामलात का, तमाम बातों का हमने ख्याल रखना है, और तमाम तर आलम इंसानियत का हमने ख्याल रखना है, सबकी केयर करनी है। स्टूडियोज़ में आज ये वजीह हासी मौजूद हैं, राइट आफ्टर मैं शो आपका साथ देंगी, आपसे बात करेंगी। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
1: Next, 101 News Headlines.

0: मेरा मैथ्स बहुत वीक है।
1: इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की, अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकती हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच मजबूत तुम।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजर रहा तो मैं हाजिर हूं विद अ सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो आज इनकी बर्थडे है और उनको मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

आज है 8th July। जब जुलाई का महीना आ जाता है ना, तो सब जो है ना मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है। द फैक्ट अब हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप को ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रखना। आपकी ज़िंदगी हो, हालात हो, मौसम हो, कुछ भी हो, आपको ना अब जब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ा स्मूथली जो है ना वो रन हो सकती हैं। क्योंकि आपको जब कुछ भी लाइफ में, अपनी रूटीन में, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, कुछ भी अगर आपको अनन फौरन करना पड़े ना, तो वो काम कभी भी जो है ना एक अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए गर्मियों को जो है ना ये इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आपके लिए सेफ़ नहीं होती, इसलिए जितना हो सके अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और जो भी नॉर्मल पानी आप पीते हैं ना उसमें थोड़ा सा आपने एक चुटकी नमक, शुगर, जैसे मैंने पहले कहा था, फ्यू स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर आपने ऐड कर लेने हैं, ताकि वो पानी जो है ना उसमें, क्योंकि जो खीरा होता है उसमें 90% वाटर होता है, ठीक है, तो ताकि आपको हर तरह से ना आप हाइड्रेटेड रहें। अपने साथ जब भी जाएं बाहर, तो कोई ना कोई गीला रुमाल या कपड़ा ज़रूर रखें। सनग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करें, ये ना सोचें बिल्कुल उसमें, क्योंकि जो खीरा होता है उसमें 90% वाटर होता है, ठीक है, तो ताकि आपको हर तरह से ना आप हाइड्रेटेड रहें। अपने साथ जब भी जाएं बाहर, तो कोई ना कोई गीला रुमाल या कपड़ा

वेलकम बैक. आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम. अगर आप अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 1111001. यू कैन ऑल्सो मैसेज अस एट 4471. जहाँ पे गर्मी को फेस करने के लिए मैं कह रही थी ना कि आप ऑलरेडी जो है थोड़े से प्रिपेयर रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, उसी लिए अपनी उसी तरीके से ना आपने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है. आजकल हम देखते हैं कि जो छोटे मतलब के जो टीन एज भी लड़के लड़कियां हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं. और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगी क्रीम्स और सीरम्स ही ख़रीदने हैं ऑल द टाइम. आप जो घर में कुछ चीज़ें हैं उनको भी आप यूज़ करके, जैसे एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है. इसके अलावा जो अलसी के बीज होते हैं उनको आप थोड़ा सा उबाल लें, उसकी एक नेचुरल जेल बन जाती है. तो ये किस्म का आपका हाइलुरोनिक सीरम है जो बाजार से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, ठीक है ना. उसमें आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करनी है और आप किसी भी, लेकिन थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने इन सब चीज़ों को आपने ग्लास जार में आपने रखना है. कोशिश करें प्लास्टिक बॉटल में या प्लास्टिक, क्योंकि अक्सर जैम की जो बॉटल्स हैं वो खाली हो जाती हैं या छोटे छोटे भी जो बॉटल्स हैं आपको बाजार से मिल जाती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, उसमें इतना देर तक ठीक नहीं रहता. हफ्ते तक तो सही रहेगा, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म रखना है तो, लेकिन आप हफ्ते के लिए भी बना के रख लें तो बहुत अच्छी बात है. तो उसमें एलोवेरा जेल डालें और ग्लिसरीन डालें, थोड़ा सा जो अलसी का बीज जो है उनको आप उबाल लेंगे, उनको उसका भी एक जेल सा बन जाता है, ठीक है ना. थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालें तो दिस इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइलुरोनिक सीरम, ठीक है ना. गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए जो है ना, सबसे पहले गर्मियों की मैं स्किन केयर जल्दी से बता दूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. और फिर आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है ना कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना पड़ता है और लेज़र कराने पड़ते हैं. और बहुत आजकल जो नॉर्मल से सैलॉन्स हैं वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के लेज़र ट्रीटमेंट्स

हैं ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ करते रहे ना तो उनकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आर न्यू जनरेशन वो शुरू से ही इन सब चीज़ों की यूज़ टू है, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। मैं अभी आपको बता रही हूँ वो चीज़ें जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और आप घर में आराम से कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है वो आराम से मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है, कोई बहुत महंगी नहीं मिलती है। वो आपकी स्किन को टाइटन अप करती है, जो ओपन पोर्स गर्मियों में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ, ठीक है ना। तो मुल्तानी मिट्टी उसके लिए बहुत अच्छी है, तो उसको ज़रूर वंस इन अ वीक आपने इस्तेमाल करना है, स्पेशली गर्मियों में। और जो कोजे केसे होता है ना वो आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। कोजिक एसिड सोया सॉस में होता है, सोया सॉस जो है सबके घर में होती है, और अगर नहीं भी है तो आपको स्टोर से बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। वो आप कॉटन में डिप करके किसी बाउल में डालें, उसे कॉटन में डिप करके अपने फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे, जो आपका जो भी बॉडी पार्ट्स जो हैं आपको लगता है ज़्यादा एक्सपोज हैं टूवर्ड्स सन, अगर आप हाफ लीव्स पहनते हैं, वंस इन अ वीक जो है आप सोया सॉस किसी बॉल में डालें, उसके अंदर कॉटन बॉल्स डिप करें एंड अप्लाई ऑन योर फेस। और साथ ही बात करेंगे आपके किचन में क्या बन रहा है आज। अभी आसिम अज़हर की आवाज़ में एक ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ संतरे FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। आज के प्रोग्राम की पोस्ट हमारे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, और किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल आधे घंटे में ना, लास्ट हाफ एन आवर में आपने ऐसा नहीं करना, ताकि मैं पहले से ही लाइन अप कर लूँ। और आप क्या सुनना चाहते हैं, अगर आपके दिल में दिमाग में कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप चाहते हैं उसके बारे में बात की जाए, या वो जो है ये जो फैक्ट है सामने आना चाहिए, तो यू कैन टेल अस इन मैसेजेस एंड कमेंट्स। हमें मैसेज करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा, आपको मैसेज भेजना पड़ेगा 4471 पे।

जी, और अगस्त में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादातर जो स्कूल्स की और कॉलेजेस की प्रेपरेशन, के आपने बैग्स लेने हैं, किताबें कॉपियां कंप्लीट करनी है, यूनिफॉर्म लेने हैं. तो जुलाई ये जो टाइम है ना, आपने इसे बहुत अक्लमंदी से और समझदारी से इस्तेमाल करना है. और देखिए, यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी डे काउंट. ये मत सोचें हम कल करेंगे, टुमोरो नेवर कम्स. गर्मियों में क्योंकि दिन भी बहुत लंबे होते हैं, सर्दियों में तो तकरीबन 5 बजे मगरिब हो जाती है, तो आपके पास बहुत, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम. जब धूप कम भी हो जाती है 5 बजे के बाद, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप शाम को अपनी कोई एक्टिविटीज़ जो है स्केड्यूल अप करें, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं. आपने अपना पूरा दिन ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारना है, सबको जो है आपने प्लान अप करके रखना है. अगर आपने कहीं जाना है, बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाना है, या उनके साथ आपने घर में कोई एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमेशा ये मत सोचें कि आप कहीं जाएंगे तो ही कुछ करेंगे. ठीक है, बहुत से आपको, अगर आप अपने आज के बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, उन्हें आप कैनवस पर पेंटिंग सिखाएँ, ड्राॅइंग सिखाएँ, या उनके साथ मिलके बेकिंग करें, कुछ कुकिंग करें, मिलके आप ब्राउनीज़ बना लें, कलर्स पेंट सब कुछ बाजार से इजीली अवेलेबल मिल जाता है. और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं. तो बिसाइड स्टडिंग, ठीक है ना, देखिए हर इंसान, हर बच्चा जो है ना, वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द गोल्डन टाइम कि आप जो है उनकी जो उनके जो टैलेंट है, अगर सिंगिंग का है, अगर उनमें कुछ लिखने का है, अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ड्राइंग पेंटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, बेकिंग कुकिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम. उनको स्विमिंग सीखनी है, उनको टेबल टेनिस सीखना है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत से जो है ना, उन्होंने बच्चों के लिए जो है स्पोर्ट्स क्लब्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिनके लिए आपको कुछ ज़्यादा पे करना नहीं पड़ता, कुछ क्या बिल्कुल भी पे करना नहीं पड़ता. बच्चों को वो ज्वाइन कराएं और उनको बिज़ी रखें, ताकि बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम पहले से कम हो. ठीक है, जो बच्चे हर टाइम बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं या कुछ भी जो है स्क्रीन के बस कुछ ना कुछ उन्होंने देखना है, तो उसे हमें कम करना है. जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो जो ख़वातीन हैं वो ही बच्चों को उनके साथ इन्वॉल्व होके उनकी रूटीन सेटअप कर सकती हैं. एट टाइम्स ऐसे होता है ना कि आप ख़ुद से ही इतना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हैं कि आपको टाइम ही नहीं है कि आप बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने बच्चों की रूटीन ख़ुद सेट करनी है, उन्हें टाइम देना है, उनसे बात करनी है. फिर जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं ना, आप कहते हैं तो मुझसे बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रहती है. और कुछ ऐसा बनाएं कि बस जल्दी से बन जाए, सारा टाइम जो है किचन में ना गुजारें, ताकि आपको भी गुस्सा ना चढ़े. ठीक है ना, आपने मुझे आज ये ज़रूर बताना है कि आपकी सबसे स्पेशल डिश क्या है, जो आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कहते हैं ये मैं बना लूँगी, तो सब शौक से खा लेंगे. सो यू हैव टू शेयर योर स्पेशल डिश खाने में या बनाने में. ठीक है, एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आप सबके लिए. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस. जे जग चूत

Welcome back. This is your dose, your host RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. Abhi studio mein time hua hai 11:28 a.m. अच्छा आज हमें जो फेसबुक पे ज्वाइन किया है नईम ने मैसेज किया है, हाय मैम कैसी हैं आप, आई एम लिसनिंग यू, यू डूइंग एज वेल, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और उन्होंने हमें लाहौर से मैसेज किया है, थैंक यू वेरी मच. और इब्राहिम ने हमें मैसेज किया है डेरा गाजी खान से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अली फरमान ने मैसेज किया है, कहते हैं वेलकम जी. सईद हाय सईद ने मैसेज किया है और कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम. और कहते हैं इस सुबह को अपनी रहमत बरकत और सुकून से भर दे, परवरदिगार इस सुबह को अपनी रहमत बरकत और सुकून से भर दे. और कहा है कि अपना ख़ास करम फरमाए. और उन्होंने बहुत सी दुआएं भेजी हैं और कहते हैं कि बेटी हैं तो अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए रखे. बिल्कुल आमीन आमीन, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और कहते हैं कि अगर वो शरीके हयात हैं तो उनके घर को मोहब्बत सुकून और वफादारी से भर दे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी दुआएँ हमें भेजी. और कहते हैं कि इस सुबह को हर बहन बेटी और हर माँ और हर घर के लिए रहमत बनाए. बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कॉलर हैं. कहते हैं जब आप अंदर से खुश और मुतमईन होते हैं तो वो खुशी और ख़ूबसूरती आपके चेहरे पर भी नज़र आती है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं भी बोलते ना, उनकी शक्ल से आपको पता चल जाता है इतना गला सड़ा इंसान है, ठीक है ना. तो आप उनसे कोई बात नहीं भी करेंगे ना, आपको उनसे बात करने की नौबत ही नहीं आएगी. आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो इंसान है ना, इससे बात ना ही करो, इससे दूर रहो, ठीक है ना. और जो लोग अंदर से खुश होते हैं ना, सिर्फ खुश होने की बात नहीं है, मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं. उन्हें देखे अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं और प्रॉब्लम्स सबके लिए होती हैं. आप उन्हें कैसे फेस करते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है. अगर ज़िंदगी में आंसू ना होते तो हमें उनकी कदर ना होती, ठीक है ना. जो खुशियाँ हमें ज़िंदगी में मिली हैं ना, एक्चुअली हमें उनकी कदर ना होती. ज़िंदगी में काम इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी खुशियों को वैल्यू कर सकें, ठीक है ना. अगर हमेशा खुशी रहेंगे ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि गम क्या है, मुसीबत क्या है. जैसे हमने बहुत सी शहजादियों की जो कहानियाँ सुनी हुई हैं कि वो हर टाइम महल में रहती हैं और उनको डिफरेंट सा कुछ लग रहा होता है कि उन्होंने बाहर जाके गली मोहल्ले में फिरना है या बाग़ों में झूले झूलने हैं या एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है. तो इसलिए जब आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं तो ही आप खुशी को वैल्यू कर पाते हैं. लेकिन अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में होते हैं. और जो इंसान अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है, ठीक है, हर इंसान उतने में ही खुश रहता है ना. और फिर आप जब अपना तवक्कल जो है अपने रब से जितना मज़बूत रखते हैं ना, उतना ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला खेल कहते हैं आई एम फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी वेरी मच. रियाज भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं फ्रॉम शादरा लाहौर अस्सलाम वालेकुम. और लिखा है प्यारे पाकिस्तान सुबह बखैर पाकिस्तान सुपर हिट, थैंक यू वेरी वेरी मच. और रियाज भट्टी ने कहा है कि आज होने वाला, और उन्होंने भेजा है 100%. बहुत प्यारे प्यारे से इमोजीज भेजे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ पे एलर्जी की अवेयरनेस के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नीम के पत्ते हैं ना, नीम के पत्ते जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं. गर्मियों में आपको चाहिए, आप हफ्ते में एक दिन जो है उनको पानी में उबाल के उसे अपने नहाने वाले पालनी में शामिल करके ज़रूर उसे नहाएँ. उसे स्मेल भी दूर होती है. और घर में भी नीम का पौधा ज़रूर लगाएँ, वो ठंडक जो है ना देने का बाइस बनता है. ज़िंदगी में ना खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना जो आपकी हमेशा लेग पुलिंग करते रहते हैं, या कभी भी आपकी कामयाबी में या आपकी खुशी में खुश नहीं होते. वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी अपनी लाइफ में जो है ना कुछ जो है इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और वो आगे पास ऑन करना चाहते हैं. तो इसलिए ना ऐसे लोगों के जाल से आपने बच के रहना है, ठीक है ना.
اگر وہ انسان آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ نے سوچنا ہے واقعی میں ایسا نہیں ہے, ضرور اس کی لائف میں کچھ انسیکیورٹی ہے جو وہ آگے پاس آن کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کچھ سانسیں ہوتی ہیں کہ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں ہماری سانس ایسی کرتی ہیں یا ویسے کرتی ہیں, تو ضرور ان کی لائف میں جب وہ شادی ہو کے آئی تھیں ان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا ہوگا, تو اب وہ یہ نہیں برداشت کر پا رہی کہ آپ کے لیے کیوں ویسا انوائرمنٹ نہیں ہے. اس لیے جتنی لڑکیاں یا خواتین مجھے سن رہی ہیں, اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہے تو اس ٹریپ سے بچیں, ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے انسان کی باتیں سن کے نا اپنے اوپر حاوی کر لیں, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ نے خوش رہنا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی کسی اور کو مت دیں. کیونکہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے نا آپ کا موڈ خراب کیا جا سکتا ہے, یا جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ آپ نہ کر پائیں, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ اچھی طرح سے ایکسیل نہ کر پائیں, کیونکہ وہ خود وہ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, اسی لیے وہ کسی کو بھی آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ میں نے بہت بہت دیر بعد سیکھی ہیں, لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بچے جو ہیں ہمارے وہ آلریڈی بہت کچھ وہاں سے گراسپ کر رہے ہیں, لیکن ایوری انفارمیشن یو گیٹ دیئر فار از ناٹ کریکٹ. اسی لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا چاہیے, اور نو ڈاؤٹ بڑوں کا بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رائٹ چھوڑ دیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اگر کوئی چیز بری لگی ہے اور آپ اس پہ کچھ ریئیکشن دے دیتے ہیں, تو بجائے اس چیز کو فوکس کرنے کے کہ وہ کیوں ایسے ہوا, وہ اس بات پہ صرف فوکس کرتے ہیں جس پہ آپ ریئیکشن دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ آپ پرابلم بن جاتے ہیں کہ جی آپ نے ایسے کیوں کہا کیوں کیا, لیکن وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتے کہ ایسی سچویشن ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, اس کے جواب میں آپ کو یہ کرنا پڑا. تو یو نو وین یو گیو ریئیکشن, وہ نہیں چاہتے کہ وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو, وہ سچویشن سارٹ آؤٹ ہو, وہ صرف یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ریئیکشن ایسا کیوں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس پہ آج کل کی لڑکیوں کو, خواتین کو, جب وہ نئی گھر میں جاتی ہیں شادی کے بعد یا جانے والی ہیں, ان کو یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کو رہنا آنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور آپ کو آپ کی شادی کے بعد کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا, ایڈجسٹنگ پرابلمس ہوئیں یا نہیں ہوئیں, آپ ضرور ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. Here's a beautiful track coming your way, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے FM 101.

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asif. जी तो ज़िंदगी में हमेशा मैं इस बात पे ज़ोर इसलिए देती हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स पे, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स आप अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में, अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इस बात में मैं इतना एम्फेसिस इसलिए करती हूँ क्योंकि जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वो इंसान को ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी से डील करना सिखाती है। वो आपको सिखाती है कि हार जीत जो है वो चलती रहती है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप सीखते हैं कि हारना और जीतना एक पार्ट है उसका, ठीक है। आपने अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड करना है, आपने मोटिवेटेड रहना है, आपने अपने आप को फिट रखना है। आपने सिर्फ एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ देनी। और जो भी हो जाए, आपने लास्ट मिनट तक अपना बेस्ट देना है। अब कोई भी मैच खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, आपको लग भी रहा है ना कि नहीं, ये तो अब हम नहीं जीत पाएंगे, या पता नहीं हम बहुत कम टाइम रह गया है या बहुत कम ओवर्स रह गए हैं, फिर भी यू हैव टू गिव योर बेस्ट टिल द लास्ट सेकेंड। यही सब कुछ आपने अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। That you have to give your best till the last second. देखिए, बहुत सी बीमारियाँ और तकलीफ़ें भी इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन वही लोग उनसे सही तरह जो है ना, उस तकलीफ़ से, उस बीमारी से बाहर आ पाते हैं जो बहादुरी से उसका सामना करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हमें क्या पता, इसीलिए अल्लाह ताला ने अगर हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी दी है तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप खाना नहीं बना सकते, उसके लिए आप कोई कुक रख सकते हैं। अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप ड्राइवर रख सकते हैं। अगर अपने काम पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते तो आपको असिस्टेंट या मैनेजर रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी को झेलने के लिए कभी किसी को नहीं रख सकते। तो इसलिए अपना ख्याल सबसे पहले रखें। और जो ख़वातीन हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना, सिर्फ अपने घर के कामों में ही रहती हैं, तो ज़रूर ज़रूर घर के काम करें, लेकिन उतना ही करें जितना आप इजीली कर पाती हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल जो ड्रामा ऑन एयर किया जा रहा है डॉक्टर बहू, उसमें भी ऐसी चीज़ें ही दिखाई गई हैं। उसमें टॉक्सिक लोग आपको बहुत प्यार करते हुए भी आपके साथ किस तरह का रवैया होता है उनका, नार्सिसिस्ट लोग किस तरह के होते हैं, टॉक्सिक लोग किस तरह के होते हैं कि उनका जो अब्यूज़ है इतना माइल्ड होता है कि वो आपको ना पता भी नहीं लगने देते कि वो जो है आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। उस ड्रामे में यही सब कुछ दिखाया गया है कि हर जो है ना, डिफरेंट एज की जो औरत है उसके साथ एक तरह का ही 19-20 फर्क, आप समझ लें, उनका साथ उस तरह का रवैया रखा जा रहा है। और उसमें देखिए, हमें इस डॉक्टर बहू जो है उस ड्रामे में हमें ये देखने को मिला, चाहे एक जो औरत है वो डॉक्टर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी है, फिर भी उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और उसने किस तरह से ज़िम्मेदारियां सारी अपने ऊपर ली हुई हैं। तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, आप भी घर के काम करें, आप बल्कि आप सबके काम करें, लेकिन उतना ही करें जितना आपकी अपनी सेहत जो है ना डिस्टर्ब नहीं हो रही। सेहत के अलावा जिससे आपकी खुशी जो है ना डिस्टर्ब नहीं हो रही, आप इतना जिससे आप ख़ुद सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आपको, आप ख़ुद अपने आप से मुतमईन हैं, उतना ही करें। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना, तो आप ये बात है, अगर आप हर टाइम वही ना अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो आप लोगों को भी यही पास ऑन करेंगे, ठीक है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप वही लोगों को देंगे, और हमेशा लोगों के लिए आसानियां पैदा करें जितना हो सके लोगों के लिए। कहते हैं ना, ऐसा जाने से पहले दुनिया से कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपको हमेशा याद रखें।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. जुलाई में पैदा होने वाले कुछ सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, पोएट्स हो, उनके हवाले से बात करना चाहूँगी. 1 जुलाई को पैदा हुए पॉप सिंगर हसन जहांगीर, और पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर पॉप सिंगर हैं. और 1 जुलाई 1962 को कराची में पैदा हुए, और उनका जो हिट गाना है वो है हवा हवा, जिसकी बहुत दफ़ा जो है डिफरेंट तरह से रीमिक्स भी हो चुके हैं, और बाहर पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से जो हैं मुल्कों में इसे उन्होंने अपनी अपनी मूवीज़ में भी इसे यूज़ किया है इस गाने को. उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था 1982 में अपने पहले गाने शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, इससे उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था. और लेकिन 1987 में रिलीज़ होने वाली उनकी एल्बम हवा हवा ने बरसगीर में और हर जगह उन्होंने ना उसकी धूमें मचा दी थी, और ये गाना आज दिन तक जो है ना रीमिक्स हो रहा है और डिफरेंट फिल्मों में, डिफरेंट मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है. और उनका एक बहुत ही मुनफरिद सा अंदाज था, और उनका बहुत से गाने थे जिसमें गोरी से लेती भी उनका एक बहुत हिट गाना था. अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ हवा हवा. इन्जॉय द ट्रैक.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने चीन में मिट्टी के तौदे गिरने और शदीद बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने इंसदाद मुनशियात के हवाले से राबता मजबूत बनाने और पुलिस तरबियत के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोयर चित्राल में रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी रेलों के दौरान 200 से ज्यादा मुसाफिरों को बचा लिया है। और पाकिस्तान के मोहम्मद आरिफ बलगाम वाला मुकाओ में टिकटों की खसूसी आलमी नुमाइश में तलाई तमगा जीतने वाले दुनिया के पहले टिकट जमा कुनिंदा माहिर बन गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Best music. Q101. Electric.

0: वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और आपका मेरा साथ रहता है एक बजे तक। जो मैंने आज बातें आपके साथ शेयर की हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में जब अभी नई नई शादी हुई होती है ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अपने आप को जो है ना, एक नई जगह पे नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत से कभी कभार ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। कि अगर एक तो वो चाहते हैं कि जी उनकी बेटे की शादी अच्छी तरीके से चले भी है, लेकिन वो कुछ उनको टाइम इकट्ठे स्पेंड भी नहीं करने दे देते, जिसकी वजह से अभी बहुत से हम देख रहे हैं बहुत सी ज़्यादा लेट शादियां होना शुरू हो गई हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि कम एज में ही लड़की की शादी कर दी जाए, ताकि उसको ज़्यादा सोचने समझने का मौका ना मिले, टाइम ना मिले, वो अपने स्टैंडर्ड्स ना बना ले। जब शादी के बाद आपको अपने बहू बेटे को टाइम देना चाहिए, वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझें। क्योंकि बेशक आपकी पहले से अगर फोन पे बात हो भी रही है ना, क्योंकि ये भी एक बहुत अब नॉर्मल ट्रेंड हो गया है कि शादी से कुछ अर्सा पहले ही निकाह कर दिया जाता है, ताकि लड़का और लड़की जो हैं एक दूसरे को समझ सकें, बात कर सकें। लेकिन फिर भी साथ रहने में और सिर्फ बात करने में बहुत बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप कभी कभार किसी से बात करते हैं तो मिलते हैं, तो आप अच्छे तरीके से ही मिलते हैं। उस इंसान में क्या नेगेटिव है, क्या उसमें जो है ना, उसमें उसकी पर्सनालिटी में क्या बातें हैं जो आपको, जो एक नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि हर इंसान में होता है, वो आपको पता नहीं चल पाती। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वालेकुम, मैं फरीजी बुजी लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम फरीजी।
1: आपको भी वेलकम। आपकी मेहरबानियाँ 200 किया करें, हम उदास हो जाते हैं।
0: ठीक हो गया जी। हाँ जी, हम रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और आप भी रिक्वेस्ट कमेंट्स में भी लिख दें। हाँ,
1: जल्दी हो जाएगी, 200 किया करें, प्लीज जल्दी आया करें। मीठी प्यारी बातें मिलती हैं आपसे हमें।
0: शुक्रिया तो शुक्रिया।
1: आज हम जल्दी जल्दी ना कस्टर्ड बनाएंगे, ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड।
0: नहीं, आप सीधा आज डिजर्ट पे आ गई हैं। हाँ, पहले कुछ खाने को तो बना ले हैं। पहले ही आपने मीठा सर्व कर दी है।
1: चलो, खाने में आज क्या बनाएं?
0: आपने क्या बनाया आज घर में?
1: हमने आज ना कढ़ाई बनाई है, वो चिकन की कढ़ाई बनाई है।
0: क्या बात है। गर्मियों में वैसे आप क्या रिकमेंड करती हैं, ज्यादा क्या बनाना चाहिए?
1: वो आजकल ना ये सूखा सूखा सालन खाने को दिल करता है, शोरबा सब्जी की तरफ कोई नहीं जा रहे बच्चे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कुछ अगर कढ़ाई बनाई है, वो थोड़ी सी दही डाल के, टमाटर डाल के ना, तो ये फ्राई हो जाती है एक किस्म की।
0: अच्छा,
1: सादा रोटी है तो साथ में कस्टर्ड बनाने लगी अभी ना, थोड़ी देर
0: का। जी जी, शेयर करें जरूर।
1: तो 2 किलो दूध ले ले, इसको अच्छी तरह उबाल ले,
0: ठीक है।
1: स्पैगेटी 1 कप, मैक्रोनी 1 कप, इनको हाफ बॉईल करके एक साइड पे रख दे, पानी निचोड़ के एक साइड पे रख दे,
0: ठीक हो गया।
1: दूध उबाल, दूध को उबाला आने से पहले ना 1 कप दूध निकाले, इसमें ना कस्टर्ड पाउडर मिक्स है, इसको अच्छी तरह उबाल ले,
0: ठीक है।
1: स्पैगेटी 1 कप, मैक्रोनी 1 कप, इनको हाफ बॉईल करके एक साइड पे रख दे, पानी निचोड़ के एक साइड पे रख दे,
0: ठीक हो गया।

0: मक्खन किसमें डाल लें?
1: के अंदर डाल देना, क्योंकि ये दूध के अंदर से क्रीम निकाली होती है ना, तो ये नीचे लग जाता है जब प्रोसेस होते हैं ना।
0: जी जी जी जी
1: बचाने के लिए ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल ले या मक्खन डाल ले, कोई भी चीज़ डाल ले चिकनाई वाली।
0: ठीक है ठीक है ठीक है।
1: तो चम्मच हिलाते जाएंगे, जो मिक्सी वाला ना कस्टर्ड के अंदर डालते ना, तो चम्मच हिलाएंगे पक जाएगा ना, जब चीनी डाल दें।
0: ठीक हो गया ठीक।
1: चीनी
0: कितनी डालनी है?
1: डालेंगे जब ये पतला हो जाएगा तो इसको ना थोड़ा गाढ़ा करके ना, तो यानी कि मकरोनी जो हाफ बॉयल है इसके अंदर डाल के मिक्स कर दें, तो इसको बोल में निकाल के ना, तो ठंडा करें, टेबल पे रख दें, तो साइडों पे ना ये केला बनाना जो है ना गोर इसी सेंटर में डाल दें, सेंटर में बनाना डाल के थोड़ा सा ना क्रेक करके डाल दें, यानी कि नरम करके। तो आम आए हुए हैं, आम के क्यूब्स डाल सकते हैं, तो वो लीची आई हुई है लीची के ऊपर से ना डाल दें, तो ठंडा होने से पहले ही ये फ्रिज में रख दें तो ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर तो घर में नजर ही नहीं आएगा ये है कहाँ पे है। तो हमला कर देते हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन केला नरम कर करके क्यों डालती है?
1: वो सेंटर में थोड़ा सा गूदा सा बना के डाल दे ना, जरा अच्छा लगता है, फूल बना के डाल ले, कोई भी चीज डाल ले ऐसे करके ना, जरा प्यारा लगने के लिए खूबसूरत डिश होगी तो बच्चे जल्दी से खा लेंगे। तो बाकी पीछे कॉलर बड़े हैं सब सुनने वाले, और वसीम भाई आ गए, उनके लिए स्पेशल सलाम है फरी की तरफ से, सब सुनने वाले करी शमसी ग्रुप वाले की तरफ से आप सबको सलाम। आप प्लीज दो शो किया करें, मेहरबानी आप।
0: जी जी जरूर जरूर जरूर, आपने कमेंट्स में भी मैसेज आपने कर देना, ठीक है ना।
1: अल्लाह हाफिज।
0: हाँ जी वसीम अहमद, आपको सलाम पहुंच गया होगा आई होप, नहीं तो आपके बिहाफ पे मैं वसीम अहमद के बिहाफ पे आप सबको वालेकुम अस्सलाम कहती हूँ। और हमारे बहुत ज़बरदस्त आरजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया खान लाहौर से।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप?
2: आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगी आसिया?
2: मैं कहना चाहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना एक शो ऐसा भी रखें जिसे आप सबकी पसंद के गाने सुन सकें।
0: ठीक है जी। हाँ जी बताएं, आप बता सकते हैं, आप अभी भी बता सकते हैं आपने क्या गाना, कौन सा गाना सुनना है?
2: वो हंस के मैं रांझा बनूं जो तू मेरी हीर बने।
0: मैं रांझा बनूं,
2: हंस के मैं रांझा बनूं जो तू मेरी हीर बने, गाने का नाम है हीर।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सिंगर कौन से? कोशिश करूंगी कि प्ले कर सकूं, ठीक है ना। नहीं तो आप ना इन द बिगिनिंग ऑफ द शो आप कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें, ताकि हम जो है ना फिर गाने लाइन अप कर लें।
2: मैं चार चार सात एक पर इतने मैसेज करती हूँ, इतने इतने, लेकिन वो नहीं जाते आगे।
0: नहीं किस पे करती हैं आप?
2: 4471।
0: अच्छा अच्छा, नहीं हम सब मैसेजेस शामिल करते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। आप फेसबुक पेज पे भी कर सकती हैं मैसेज, आपके पास है फेसबुक पेज का एक्सेस?
2: नहीं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, आप फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकती हैं और वहाँ पे भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, कुछ और कहना चाहेंगी आप?
2: और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौला खैर को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, इतनी अच्छी बातें करता है वो। मैंने कई बार सब शो में वो आते हैं और इतनी अच्छी बात।
0: आपका नाम है आसिया?
2: आसिया खान।
0: आसिया खान कहाँ पे, कहाँ से हैं आप?
2: मैं शाद बाग लाहौर से।
0: चले जी, बहुत अच्छा लगा, आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में कॉल की?
2: दूसरी बार है।
0: अच्छा अच्छा, चले जी, थैंक यू आसिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला खैर को भी आपका सलाम पहुँच गया, ठीक है ना।
2: अल्लाह हाफिज़।
0: हाँ जी, ये थी आसिया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो है रेडियो की वजह से, हमारे शो की वजह से सब लोग जो है ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कमलनाथ बात कर रही हूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम कमलनाथ, कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कमल क्या कहना चाहोगी, कहाँ से बात कर रही हैं?
3: मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोलो क्या कहना चाहोगी।
3: मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है।

0: वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम
1: मोहसिन सारिफ, बराए मेहरबान। डियर कस्टमर,
0: अच्छा ये जो है ना इनकी कॉल जो है शायद होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिल बात कर रहा हूँ क्वेटा से।
0: जी जी, वेलकम टू द शो। आज आपके बारे में शो में पहले भी बहुत बात हो चुकी है।
2: हाँ बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। अभी शो भी माशाल्लाह जबरदस्त है और आपने जो ब्लैक बोर्ड पे वो चीजें समझा रहा था वो भी बहुत अच्छा लगा।
0: क्या कह रहे हैं आप, क्या समझा रहे थे?
2: आपने जो एपे मनावन के पेज और पे,
0: जी जी जी जी जी,
2: वो भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने अभी सुना था वो मालूम।
0: अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।
2: आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ चीजों पे आपने बात ही किए थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो आपने वो रिले टॉपिक आज क्या रखा हुआ था?
0: आज हम बात कर रहे थे जैसे कि शादी के बाद लड़कियों को जो अपने ससुराल में एडजस्ट होना पड़ता है, तो उसमें जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से उसे एडजस्ट करना चाहिए, और उसमें जो है जो बाकी ससुराल वाले सास या जो है उनका क्या वो किस तरह का रवैया रखते हैं।
2: बिल्कुल, आप ये बात क्या पीछे, जब लड़की अपने घर में होता है तो माँ बाप के घर में, तो जब उधर शादी हो जाए तो उसमें जो ससुराल वगैरह उसके यही अकबर से उसके ज्यादा डांट नहीं जाए, उसको अपना नॉर्मल जिंदगी में उसको दे देना चाहिए। ऐसा नहीं जब आपके घर में आ जाए लड़की आप उसके ऊपर एकदम पाबंदी लगाए, इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको इसी तरह प्रोटोकॉल ले देना चाहिए अपने घर में था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और देखिए हर हर इंसान जब इतना पॉजिटिव छोड़ता है ना, जब आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है तो आप हमेशा वहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाते हैं।
2: बिल्कुल, जब एक लड़की जब दूसरे घर में शादी हो जाता है तो पहले उसके जहन में वो मुश्किलात होता है, अपना घर छोड़ कर दूसरे घर में जा रहे हैं, ऊपर वो ससुराल वाला अगर उस पर प्रेशर दबाव डाले, बिल्कुल गलत बात है। अगर फिर भी प्रेशर उस पर डाले कुछ अरसे एक दो साल गुजर जाए फिर आप कर सकते हो, क्योंकि पहले से उसका मूड खराब होता है, अपना घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। ये थे अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मियों में ना ज़रूर जैसे है जो पाकिस्तान में इतने खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे ज़रूर जाने का प्लान करना चाहिए, ताकि आप जो है ना जो जो मर्द हजरात हैं वो सारा दिन काम में बिज़ी रहते हैं, बीवियाँ घर में बिज़ी रहती हैं, आपको दो तीन दिन या चार दिन जितने दिनों के लिए भी आप जा सके ज़रूर जाएँ, आपको मिल के एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साजदा, कैसी हो? वेलकम टू द शो।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहोगी?
3: हाँ जी, मैं तभी के बारे में कहना चाहूँगी, जो हम जब लड़की को लड़की जब अपना घर छोड़ती ससुराल में जाती है,
0: जी,
3: एक तो उसका वो लगा ले जैसे उसका ना जन्मदिन होता है, दूसरे घर जाना अपनी जगह वो अपनी हर चीज छोड़ के जाती है, तो उसे इतना प्यार से यानी करना चाहिए हैंडल, उसे कमी ना हो, मैं अपना घर छोड़ के आई
0: क्या आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: हाँ जी, और एक तो उसे जाते प्यार मिले ना तो वो सही है, लेकिन अगर लड़की को चाहिए ना, लड़की को लड़की की जगह रखे, बीवी को माँ को सबको, लेकिन उसके हबू पूरे करे, नौकर टोकी ना हो, तो अगर लड़की उससे माँ कान भर दे तो हमारी बीवी ये कर रही है वो कर रही है, या बीवी भरे तो फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े
0: शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये चीज नहीं होनी चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, बरकत होनी चाहिए, और एक दूसरे को देख के चलना चाहिए, सब्र से काम
0: लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
3: करो एक ने बात कर दी दूसरा चुप हो जाए तो बात बढ़ती है, अगर हम बात को बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ती जाती है और लड़ाई झगड़े ऐसे ना बढ़ते ही जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और साजिदा कुछ और कहना चाहोगी?
3: जी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अब सॉन्ग का टाइम तो है नहीं, मैंने सॉन्ग लगवाना था
0: बता दो, आई विल ट्राई।
3: तुम मिले जब से ये लगवाना था, अगर है टाइम तो आप लगा।
0: चलिए मैं ट्राई करूंगी। ठीक है ना,
3: चलिए आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। और रिमशा अगर सुन रही, रिमशा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। جی آپ سب کے لیے پلے کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سا ٹریک. اور یہ بھی ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ بھی ایٹ ٹائم جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیوی اور ماں کو دونوں کو کیسے لے کے چلیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہری بات ہے بیوی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ماں جو ہے اپنے حساب سے لے کے چلنا چاہ رہی ہوتی ہے, کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے جو ساس کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں نا, جو سہولتیں ان کو نہیں ملی ہوتی, جیسے ایک نارمل سی بات ہے جیسے آج کل جو مسالے جو ہیں وہ گرائنڈر میں کر لیتے تھے, گرائنڈر میں ہم پیس لیتے ہیں تو پہلے وہ کہتے ہیں ہم تو ہاتھ سے پیستے تھے کرتے تھے, تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کو اتنی آسانیاں کیسے مل گئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں اور طریقے سے وہ نکال دی جاتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا سمجھداری سے آگے آپ کو بڑھنا چاہیے. اور جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ گرمیاں ہیں تو پاکستان میں اتنی خوبصورت مقامات ہیں, نلتر ویلی جو ہے وہاں پہ ایک اسکی ریزورٹ بھی ہے, وہ بہت خوبصورت جگہ ہے, آپ کو ضرور جا کے دیکھنی چاہیے. اسکردو شوگران, تو آپ کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو ضرور اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. اور ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے نا جو موسم جو جن علاقوں میں ہیں وہاں پہ ضرور جائیں. اور آپ نے ابھی اگر کہیں ویکیشن پلان کی ہے نہیں کی اس کے بارے میں بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. بیوٹیفل ٹریک کمنگ یور وے, کہیں مت جائیے گا.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो बहरे अरब में लापता होने वाले माल बरदार तैयारी की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेज करें। पाकिस्तान और चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया है। वजीर आला पंजाब ने गैर महफूज मकानात के बायस होने वाले हादसात से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। और आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलदम इलेक्शन कमेटी के रियासत मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया है।
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khair, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.

0: Assalamualaikum and Assalamualaikum listeners. आप सुन रहे हैं FM 101.8 पाकिस्तान लाहौर की आवाज़ है आरजे अली रज़ा की. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शाम किनारे. एक लंबे बिछड़न के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और एक बहुत ही खास मुलाकात हो रही है. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनों के साथ. बहुत ही खूबसूरत से जो लम्हात हैं, खूबसूरत जो ज़िंदगी है हमारी, उसको बड़े अच्छे तरीके से जी रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और FM 101 को सुन रहे होंगे. जैसे कि मैंने बताया कि लंबे विचरण के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही. मेरा तो एक लंबा विचरण है लेकिन किसी और के साथ बहुत ही लंबा विचरण है. जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद हैं. वेलकम करेंगे आपको भी, आ जाएं.
1: अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और होंगे जिंदाबाद. जी अली आप ठीक हैं, खैरियत से? और आज कैसा लग रहा है आपको मेरा प्रोग्राम हाईजैक करके?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. प्रोग्राम देख लें, हाईजैक तो हो गया, क्या पता लिसनर्स को आपका नाम भूल गया हो, नाम भी बता दें.

0: ये लिसनर्स के लिए आज ना एक क्वेश्चन है, देखते हैं कि उनकी याददाश्त कितनी अच्छी है और मैं इतने अरसे मन को याद भी हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए आज एक क्वेश्चन छोड़ा है। आज मेरी आवाज़ सुन के नाम बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात।
0: अब आप ना बीच में बोल दीजिएगा।
1: नहीं, मैंने तो बता देना, अभी मैंने बता देना बस।
0: आप पेट में बात टिके तो फिर आना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिसनर्स, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं शाम किनारे और आपका हमारे साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक, और साथ में एक सवाल भी है और उस सवाल पे भी हम आपसे जवाब लेंगे, बातें करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी मस्ती वाले सवाल भी हैं, है ना? ऐसे ही है ना?
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
1: वेल, आपने हम तक कैसे पहुंचना है, प्रोग्राम में कैसे शामिल होना है, तरीका बहुत ही आसान है। 04221100101 हमसे रबते का नंबर है और आप मैसेज कर सकते हैं हमें 4471 पर। करना आपने यह है कि अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101L लिखना, स्पेस देनी, अपना नाम पैगाम लिखना है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और हमें भेज देना है 4471 पर। यार आवाज़ वो खनकती हुई नहीं आ रही।
0: और इसके अलावा आप में ज्वाइन कर सकते हैं जनाब फेसबुक पर FM 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे, हमने पोस्ट लगा दी है जी आज के प्रोग्राम की, आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स कर सकते हैं।
1: सो क्यों ना आज का पहला ट्रैक चलाया जाए और लिसनर को गाना सुनाया जाए अली जफर की और अली हैदर की आवाज में, और ये खूबसूरत गीत सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जालिम नजरों से एक लड़का मुझे अभी देख रहा है।

0: Now you're tuned into
1: FM 101.
2: Smile and dial 111-111-FM. वेलकम वेलकम वेलकम बे खुश आमदीद जी हैं सत बिस्मिल्लाह बखैर रागले जन्नाम प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस और सुन रहे हैं आप हमें यानी रेहाल ताफ और आज अली रजा को और फाइनली उन्हें अपना नाम बता ही दिया है
3: फाइनली आपने रिवील कर दिया
2: हाँ बिल्कुल
3: चले मुबारक हो आपको भी और लिसनर्स को भी अच्छा आज का प्रोग्राम बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि उसमें हमने लिसनर्स से कुछ ऐसे सवालात भी पूछने हैं हमने कुछ उनको ऐसे टास्क भी देने हैं जो बड़े मज़े के होने वाले हैं सो जितने भी कॉलर्स हैं हमारे वो बिल्कुल तैयार हो जाएं सीट बेल्ट अपनी बांध लें और हमारे साथ साथ ही सफ़र में रहें ठीक 7 बजे तक अगर आप ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं या अपना कोई भी काम करते हुए हमें सुन रहे हैं तो ध्यान से अपना काम करें ध्यान से ड्राइव करें और 101 को सुनते रहें शाम का वक्त है और अभी अभी पता चला है कि मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है अक्सर हम मौसम के साथ कहते हैं कि यार ठीक है मौसम तो खूबसूरत हुआ है लेकिन दिल का मौसम खूबसूरत होना चाहिए रेहा ऐसे ही है ना
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन आजकल जो बाहर का मौसम है ना वो दिल के मौसम पे हावी है दिल का मौसम जितना भी अच्छा हो ना बाहर का जो मौसम है वो बता ही देता है कि तुहानू दसा पता है
3: बिल्कुल ऐसी है और बाहर जो अभी मौसम हुआ है ना हवा चल रही है और सुना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही
2: है हाँ अभी अभी पता चला है कि मौसम मैं ये सोच रही थी कि अच्छा कि कहीं हमारे प्रोग्राम का करिश्मा तो नहीं है
3: पता चले प्रोग्राम करके बाहर जाएं और ठीक ठाक हवस हो और फुल गर्मी फिर से वापस आ
2: तो फिर जिसने हमें बताया उसकी खैर नहीं है
3: सुन रहे हैं ना भाई साहब आप सुन रहे हैं ना आपको ही कह रहा हूँ आपको ही कह छुपे ना आप अच्छा रेहा आज टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी आज का जो हमारा टॉपिक जो हम रखने जा रहे हैं
2: आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और इस तरह से भी ज़बरदस्त है कि इस पे बात करने की भी ज़रूरत है और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से इसके जो नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये आजकल के ज़माने में थोड़ा सा दुखी टॉपिक भी है
3: लेकिन आपने बिल्कुल दुखी उस दुख के दायरे में नहीं जाना
2: नहीं मेरा तो सीन ये है ना कि मैं कहती हूँ वो एक आजकल हम पढ़ते हैं ना ढोला उसी
3: जिस मौजू पे हम बात करेंगे और इससे हटके बहुत सारे मौजूद पे हम बात करते रहेंगे लेकिन जो मेन हमारा एक टॉपिक है वो आज का दोस्ती के हवाले से है और वो ये है कि वैसे दोस्त वो होता है जो खुशियों में भी आपके साथ हो आपके मुश्किल वक्त में भी आपके साथ हो और आपके ऊपर ज़िंदगी में कोई भी फेज़ चल रहा हो कोई भी लम्हा हो कोई भी ऐसी बात हो कोई भी ऐसी चीज़ हो वो दोस्त आपके साथ खड़ा होता है जब भी आप पुकारें कि मुझे तेरी ज़रूरत है तो वो दोस्त आपके पास खड़ा होता है तो आज हमारा टॉपिक हमारा सवाल ये रहेगा कि क्या आज के दौर में सच्ची दोस्ती बाकी है
2: बड़ा ही दुखद किस्म का का ये सवाल है और इस पे जरूर मैं भी अपने कुछ शेयर करूंगी लेकिन एंड पे करूंगी अभी नहीं अभी तो लिसनर से पूछना है ना वो बताएंगे कि उनका क्या ख्याल आते हैं इसके बारे में बट ये है कि एंड पे जाते जाते हम दोनों भी इस पे जरा थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे
3: बिल्कुल बिल्कुल लेकिन साथ साथ हम इससे रिलेटेड जितने भी टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिन जिन पहलुओं पे बात हो सकती है उस पे हम बात करते रहेंगे अच्छा कुछ लोग ना मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं जैसे ही देखते हैं कि यार इसको मेरी ज़रूरत है क्योंकि आ गया पैसे मंगन या वो कहते हैं

0: इन्हें फिर कितना लड़ाई की होनी है, ठीक है, या कोई भी दोस्त के बारे में, अच्छा उसको जेन्युइन जरूरत होगी तो आप उसके बारे में एक नेगेटिव एक नैरेटिव सेट कर रहे होंगे कि नहीं यार ये भाई ये हैबिचुअल हो चुका है, वो दोस्ती तो ना हुई।
1: अच्छा मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बात करी थी, मैं ज़रा मज़ाक बात कर रही थी, लेकिन ये हकीकत भी है हमारी सोसाइटी की कि इस टाइम पे हम इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा मतलबी मेरे ख्याल से हम हो गए हैं कि हमारी जो दोस्तियाँ हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, वो हम बनाते ही इसलिए हैं कि फलां बंदे से हमें फलां काम पड़ सकता है, तो हम उसके साथ जो है ना अपना एक मेल जोल बढ़ाते हैं,
0: दोस्ती नहीं होती, वो एक ताल्लुक बना लेते हैं,
1: लेकिन हम उस ताल्लुक को दोस्ती का ही नाम देते हैं कि भाई आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा वो दोस्ती कहाँ, उसका उसकी उम्र कितनी होती है कि जैसे ही कोई काम पड़ा अगले बंदे ने आपका काम किया और साथ ही आपने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और चले जी साइड पे एक और दोस्त की तलाश में, तो अब ना मतलब की दोस्तियां रह गई हैं। मेरे ख्याल से जो पहले दोस्तियां होती थी ना कि बचपन से दोस्त हैं जी, इनके अब्बा और मेरे अब्बा दोस्त थे, फिर आगे उनके हम इस यूं था ना कि मतलब नस्ल दर नस्ल एक दोस्ती का वजह चलता था, उस दोस्ती में ये कहते थे कि जी दुख सुख के साथ ही हैं,
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: खुशियों में भी साथ होते थे, दुखों में भी साथ होते थे, लेकिन अब वाली दोस्तियां बड़ी, उनकी उम्र ना बड़ी छोटी है,
0: अब वो खलूस नहीं रहा, अब वो प्यार नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर की हम बात कर रहे हैं ना, आज के दौर की दोस्तियां, तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक ट्विटर, अच्छा यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, फेसबुक फ्रेंड है जी, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, लेकिन वो हमारे नाम के फ्रेंड होते हैं, वो एक हमारे एक कनेक्शंस होते हैं,
1: बिल्कुल
0: कि यार ठीक है हमने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली तो ठीक है कोई कमेंट आ जाएगा, हमारे कमेंट्स बढ़ जाएंगे, हमारे लाइक्स बढ़ जाएंगे, वो जस्ट ये दोस्तियाँ होती हैं, या कोई काम पड़ गया तो मैसेज कर दिया कि यार मुझे ये काम है, वो दोस्तियाँ नहीं होती। पहले वक्त में दोस्ती वो होती थी कि एक दूसरे को टाइम देते थे, एक दूसरे के साथ पूरा वक्त गुजारते थे। मैं आपको एक मज़े की बात मेरे जहन में आ रही है कि मेरा 9th क्लास में एक दोस्त था, और 9th 10th फर्स्ट ईयर हम इकट्ठे ही थे। अच्छा उसने ना हमारी एक ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती थी कि सारा दिन स्कूल में हम इकट्ठे होते थे, सारी बातें शेयर करनी, सारा कुछ करना। अच्छा उसके बाद जब हमने वहाँ से फ्री होके अपने अपने घरों को जाना ना, तो हमने जाते हुए जब हमने जुदा हो जाना अपने घर की तरफ, उसने अपने घर की तरफ, मैंने अपने घर की तरफ, अच्छा उस वक्त जुदा होते वक्त हम क्या बात कहते थे कि ठीक है यार एकेडमी जाते हुए मिलते हैं, होती है मुलाकात,
1: बिल्कुल ऐसी।
0: अच्छा एकेडमी जाना तो मैंने अपने घर से बाहर आना, अपनी कॉलोनी से बाहर आना, उसने उधर से आना और हमने इकट्ठे एकेडमी जाना। अच्छा वहाँ से फ्री होना, एकेडमी से फ्री होना, फिर राहें जुदा होने लगनी तो कहना यार ठीक है फिर घर जाके मैसेज करते हैं, या हमने एक डायलॉग रखा हुआ था यार घर जाके चिट्ठी डाल देना, ठीक है। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त दौर था कि सारा दिन भी साथ हैं और शाम को जब जुदा हो रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं कि अब यार ठीक है एकेडमी भी ख़त्म हो गई, तो उस वक्त भी हम कहते थे कि यार ठीक है मैसेज पर बात करते हैं। तो ये दोस्तियाँ होती थी, और जब भी ज़रूरत पड़नी, एक को ज़रूरत पड़नी, दूसरे ने हाजिर होना। तो
1: अच्छा नहीं, ये सोशल मीडिया की हम जो बात कर रहे हैं ना, मैं अगर इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है एक आर्टिफिशियल सी दुनिया है, एक आर्टिफिशियल सा एक माहौल है जो हमने अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया होता है,
0: बिल्कुल।
1: और इसमें हम बड़े एक होते हैं ना वसूख के साथ, यकीन के साथ, ये नहीं कह सकते आपके फेसबुक की आपने बात की, इंस्टाग्राम की बात की, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर, उसके ऊपर अगर आपके हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स या फ्रेंड्स हैं ना, तो आप यकीन के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि आप उसमें से कोई एक दो भी नहीं कह सकते। मज़े की बात ये है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना, उनको हम जानते नहीं होते, हमने देखा भी नहीं होता है,
0: बिल्कुल ऐसे।
1: और जब बात आती है हकीकत की, रियलिटी की, कि अच्छा कौन है दोस्त, तो आपका जो है ना आपके हाथ खाली होते हैं
0: ऐसे ही है।
1: और ये जो बचपन की आपने बात की है, मैं तो बचपन के अपने दोस्तों की अपनी जब शुरू करती हूँ ना, तो मेरी कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होती, और एक्चुअली दोस्त वही होते थे,
0: बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज पर पहुंच के ना, आपकी दोस्ती करने की जो आखिरी एक होता है ना लेवल होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल होता है,
0: बिल्कुल ऐसी है
1: कि आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं, तब आपकी जो दोस्तियां हो जाती है ना आखिरी वही होती
0: है। तो
1: प्रोफेशनल लाइफ है, आपके कलीग्स हैं और सारा आपकी वही लाइफ है, लेकिन आपके जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, उन्होंने बेसिकली आपका वो दौर देखा होता है जब आप नहीं होते,
0: है
1: ना,
0: क्या बात
1: कि आप अम्मा अब्बा से पैसे लेके खाने वाले, एंजॉय करने वाले होते हैं, और यूनिवर्सिटी के बाद क्या होता है कि आप जॉब करते हैं और आप अपना नाम कमाते हैं या खुद कमाते हैं, खुद पहचान बनाते हैं, तो जो वो वाले बचपन के दोस्त होते हैं, उन्होंने आपका अच्छा बुरा हर टाइम देखा होता है, और उसी तरह से वो आपको पहचानते हैं, जानते हैं कि अच्छा अबे तू वो वाला है, नखरे नहीं करने मेरे साथ,
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और दोस्ती वैसे करनी चाहिए, दोस्त रखना चाहिए, चाहे एक ही हो, दोस्त होना चाहिए।
1: एक होवे ते चजदा होवे ना ते ना ही होवे। देखें पता है क्या, मैं कभी अगर हम इंसान की इंसान का वर्ड लेते हैं ना, अलिफ नून सीन, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा एक पेश लगा देना तो क्या बन जाता है, उन्स, ठीक है। और यही मोहब्बत, यही जो दोस्ती है, यह खलूस है, इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है। तो ये जो रिश्ते हैं, देखें ना, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा तो रिश्ते बना के भेजे। अगर ज़िंदगी में दोस्ती का, रिश्ते का, इन चीज़ों की गुंजाइश ना होती तो अल्लाह ताला भी शायद ये चीज़ें ना बनाते। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, इन सब की ज़रूरत रहती ही रहती है। तो इसलिए एक वो कहते हैं ना, माशरती हम लोग यू नो कनेक्शन के मोहताज होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। चलें अभी हमने बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना चलाते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा नदीम अब्बास लोने वाला की आवाज़ में। सो अभी कमर्शियल ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
2: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
3: Smile and dial 111 111 FM.

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: And now you are tuned into
2: 101 FM 101
3: FM 101
4: FM 101
0: FM 101 FM 101 101 101
4: I love FM 101
5: Smile and dial 111 111 FM

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज है आरजे अली रजा की, और मेरे साथ साथ मौजूद हैं
1: जी मैं हूँ रेहा अल्ताफ, और अली को पता नहीं, अली मेरे साथ मौजूद हैं जी, आगे उतार दिया करो ना।
0: खुद बोलो
1: मतलब ऐसे इशारा करते कि जी आप बोलें से अली का बिल आ रहा होता है।
0: कई लिसनर ये ना समझें कि ये जो साथ को होस्ट बैठी हैं ये कम बोलती हैं।
1: अच्छा, ये हो नहीं सकता, उनको भी पता है मेरा।
0: मैं इसलिए आपको ज्यादा मौका दे रहा हूं।
1: अच्छा जी, ठीक हो गया जी।
0: लिसनर्स, आप सुन रहे थे यारियां, बड़ा जबरदस्त सा गाना था नदीम अब्बास की आवाज में। आई होप इस गाने को आपने एंजॉय किया होगा। वेल, मैंने तो इस गाने को बड़ा एंजॉय किया, और मुझे मेरी आवाज बड़ी प्यारी आ रही है।
1: ओए होए होए होए होए,
0: ये मैं रजा को बताना चाह रहा हूँ। बातें हम कर रहे हैं दोस्ती पे, और आजकल के दौर की दोस्ती, क्या वो सच्ची दोस्ती आज भी बाकी है, इस हवाले से हम आपसे बातें कर रहे हैं। रेहा, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: अच्छा, ये इतने सवाल मेरी तरफ आज क्यों फेंके जा रहे हैं?
0: आप छुट्टियां बहुत ज्यादा करती हैं। अच्छा? लिसनर्स का गिला।
1: अच्छा, उसकी सजा है।
0: हाँ, एहसन खान ने हमें ऑफर कॉल भी की थी और सबको सलाम भेजे, कहते बड़ी रौनक लगाई है, बड़ा मजेदार प्रोग्राम कर रहे हैं। एहसन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और सुनते रहें आप 7 बजे तक हमारे साथ साथ रहें आप, और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे मैसेज आया है कि आपकी आवाज़ लो लेवल पे है। अच्छा जी, अब आवाज़ मेरी ठीक हुई है, मुझे ये बताइएगा यार। रजा, क्या कर रहे हो यार, कुछ तो बताओ मुझे। रजा इधर आओ, जरा अंदर आओ ना जरा। वेल जी, हमें सुन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त से हमारे आरजे, हमारे भाई कहते हैं जी आपकी आवाज़ लो लेवल पे है। मसूद भाई, थैंक यू सो मच, आप सुन रहे हैं जनाब, आवाज़ छड़ो, मैनू ऐ दसो कि आवाज़ तुहाडे दिल तक पहुँच रही है कि नहीं। और मेरी आवाज़ मसूद भाई लो भी हो तो आई एम श्योर आपके दिल तक पहुँच रही होगी। मसूद भाई जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े काबिल आरजे हैं, बड़े ज़बरदस्त से, और बड़े सीनियर आरजे हैं, दी मोस्ट सीनियर आरजे हैं। और मसूद भाई से जब भी मिलते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती वाली वाइब्स आती हैं।
1: ये दी मोस्ट वाली बात मसूद भाई ने माइंड कर जानी
0: है। नहीं नहीं, वो माइंड नहीं करते हैं, ऐसी बातें वो एज ए ऑनर लेते हैं। अच्छा जी, हमें मोहम्मद अहमद सुन रहे हैं। अहमद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप मैसेज कर सकते हैं 4471 पर, और फेसबुक पे हमारी पोस्ट अपलोड हो चुकी है, फेसबुक पे भी मैसेज भेज सकते हैं। और फेसबुक पे मैसेज भेजने का तरीका है जी, facebook.com/FM101Lahore का हमारा पेज ज्वाइन करें। मसूद भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो बताइएगा आप, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई मैसेज है आपके पास रिया?
1: जी बिल्कुल, मेरे पास मैसेजेस हैं, हमें हमें फाइका सुन रही हैं जी, ओमान से। बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून इन किया और आप हमें सुन रही हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी जनाब, बिल्कुल। हाँ, मुझे भी पता है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तहरीम हमें सुन रही हैं जी, बहुत शुक्रिया तहरीम, आप कराची से सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जनाब हमें फरत सुन रही हैं, थैंक यू सो मच फरत। और आपने टॉपिक के हवाले से कोई बात नहीं की है, आपने सवाल सुना है हमारा आज का? ये मेरा आप लोगों से सवाल है।
0: अच्छा, कुछ लिसनर्स बाद में ज्वाइन करते हैं, कहते हैं जी बड़ा अच्छा शो चला, कुछ सुन भी नहीं रहे होते, मैं कमेंट भेज देते हैं।
1: बड़ी मजे की बात है कि मैंने भी एक दिन ऑब्जर्व किया था कि कोई और प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा, कोई पोस्ट शेयर हुई थी और नीचे लिखा था बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी भाई। मैं हैरान परेशान कि ये क्या करते हैं लिसनर्स, इसका मतलब है कि वो सुनते नहीं है, जस्ट एक उन्होंने मैसेज टाइप करके कहीं रखा होता है, या पता नहीं एज पर हैबिट वो आते हैं वही सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं।
0: कुछ एक चंद एक आध लिसनर होते हैं, लेकिन हमें 99% हमारे लिसनर सुन रहे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
1: नहीं, ये वाली चीज तो मैंने काफी टाइम पहले ऑब्जर्व की थी, अपने प्रोग्राम में नहीं, वैसे कोई पोस्ट शेयर हुई थी उस पे।
0: अच्छा। नजीर खोसो सुन रहे हैं सोहबतपुर बलोचिस्तान से, इनका ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नजीर खोसो, आप हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ मौजूद हैं। और हमें बरकत रमदानी जमाली बलोच भी सुन रहे हैं, कहते जी मैं भी आपको जाफराबाद बलोचिस्तान से सुन रहा हूँ, आपको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, जी आया नू कहेंगे। आज के टॉपिक हमारा दोस्ती पे है, और हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आज के दौर में भी सच्ची दोस्ती बाकी है, सच्चे दोस्त मिल जाते हैं, बाजार से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सानू भी दसो।
1: कहते हैं सख्त, कहते हैं
0: सख्त, कहते हैं।
1: अच्छा वैसे अली, एक बात है, आप ये बताएं कि आजकल की जो दोस्तियां हैं उनके क्या फायदे हो सकते हैं?
0: अच्छा, आजकल की दोस्ती जो सच्ची दोस्ती है ना, उसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब आपको किसी भी दोस्त की ज़रूरत पड़े, चाहे वो इमोशनली आपको कोई ज़रूरत है, चाहे वो आपको वैसे किसी भी काम में ज़रूरत है, तो वो दोस्त आपके साथ खड़ा हो और वो कहे यार टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं देख लेता हूँ, परेशान ना हो, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है आजकल की जो सच्ची दोस्ती है।
1: अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो मैं फ़ील करती हूँ कि आजकल ना जिस तरह का दौर है, टेक्नोलॉजी का है या सोशल मीडिया का है, या बहुत ही अफरा तफरी का दौर है ना, तो इसमें ज़हनी जो सुकून होता है ना, बेसिकली उसकी हमें कमी है।
0: कमी है।
1: तो आपके पास जो अच्छा दोस्त होता है ना, वो आपको सुनता है।
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है कि आपकी कोई बात सुन सके या आपसे अपने दिल की बात कह सके। तो बेसिकली आप जो आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो यही होता है कि आप दुख सुख की बात कर सकते हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप नहीं भी कहते हो ना, और अगर आपका वो अच्छा दोस्त है तो आपको देख के आपकी किसी बात से पहचान जाता है
0: कि कोई मसला है,
1: कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहुत लकी होते हैं आप कि जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको देख कर समझ जाता है, आपकी कोई एक बात सुन के समझ जाता है कि अच्छा इसको कोई प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें ज़हनी सुकून के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है।
0: बहुत ज़रूरत। अच्छा, वो दोस्त ऐसा होता है कि आप आपके जहन में, आपके दिल में जितनी भी बातें हैं ना, दिल का जो बोझ है, उस बोझ को हल्का करने के लिए आप उस दोस्त से बातें कर लेते हैं और आपका वो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और वो ऐसा दोस्त होता है कि आप उससे हर बात कह देते हैं, आप उससे बात करते हुए सोच नहीं रहे होते कि यार ये बात करूंगा तो कोई गुस्सा ना कर जाए, ये बात करूंगा तो इसका मतलब ये ना ले ले, आप बस दोस्त से बात कह देते हैं, ये होती है असल दोस्त।
1: वो ऐसे लगता है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब आप सोचते हैं ना, जब आप सोचें कि अच्छा मुझे इससे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहाँ आप ये समझ जाएं कि ये दोस्ती 100% दोस्ती नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: जहाँ बिल्कुल जो सोचते हैं कह देते हैं और आपको पता होता है कि सामने वाला जज नहीं करेगा।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक चीज और बहुत मैटर करती है, लोग दोस्त होने का दावा जरूर करते हैं, कहते भी कि हम आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक चीज है कि आपने कोई सिचुएशन आपको दरपेश है, ठीक है, और आपने किसी से मशवरा मांगा है। अब के जो दोस्त है ना, वो वही वाली बात के मटेरियलिस्टिक हैं, कभी भी आपको अच्छा मशवरा, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, बट फिर भी अच्छा मशवरा नहीं देते। उनको लगता है एक साइकिक, मतलब लोगों की साइकी जो है कि अगर हम इसको ये वाली चीज़ बता देंगे कहीं हमारी वैल्यू कम ना हो जाए।
0: बिल्कुल ऐसी है।
1: तो अब ना दोस्त पहचानना बड़ी मुश्किल टास्क है इस फी जमाना ना, कि अच्छा ये जो बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये मेरे पीठ पीछे मेरी बात को उसी तरह लेगा जिस तरह से मैंने किया है, मैंने से बात की है, या मेरी बात को या मुझे जज करेगा या मेरी बातों को किसी दूसरे या तीसरे बंदे तक पहुंचा देगा। ये चीज़ें बहुत हम इस ज़माने में बड़ा लैक करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो एक गाना ना सुन ले हम, नाजिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुन ले, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस किस्म की गुफ्तगू होना शुरू हो गई है।
0: दोस्ती पे ही गाना है और दोस्ती की बातें चल रही हैं। क्या आज के दौर में भी सच्ची दोस्ती मिल जाती है? इस गाने की क्या ही बात है यार, क्या ही बात है।
1: नाजिया हसन और ज़हेब की भी क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत।
0: चलें जी, एंजॉय करें खूबसूरत ट्रैक। मिलते हैं इस ट्रैक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ साथ रहना है। प्रोग्राम शाम किनारे, आरजे अली रजा और आरजे रेहा अल्ताफ आपके साथ।
1: थैंक यू सो मच अली।
0: 7 बजे तक हम साथ साथ हैं और 6 बजे आपकी कॉल्स को भी हम शुरू कर देंगे, ऑन एयर कॉल्स लेंगे हम आपकी, और ऑफ एयर कॉल अगर कोई करना चाहता है तो कर ले।

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
3: Smile and dial 111 111 FM.

0: वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदी जी एन सत बिस्मिल्लाह बखैर। अगले जनाब प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 लाहौर की लाइव स्टूडियो से। मैं हूँ आपके साथ रेहा अल्ताफ और मेरे साथ हैं जी अली रजा, और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप शाम के नारे।
1: आप सबको एक दफा फिर से प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और शाम किनारे में एक हम एक किनारे पे बैठे हैं स्टूडियो को लेकर, और आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मौसम भी बहुत खूबसूरत है, मौसम भी बहुत हसीन है, हाथ में चाय का कप है और बातें हो रही हैं, दिलों की बातें हो रही हैं, दोस्ती की।
0: अली इतना झूठ नहीं बोलते। इमेजिनेशन अच्छी है आपकी।
1: और यार उनमें की कहूँ,
0: आप कुछ ना कहें। आप मुझे ये बताएं कि फुटबॉल का मैचेस और ये कॉम्पिटिशन चल रहे थे, आप मुझे बताएं जनाब कि आपने ये देखे हैं या नहीं देखे हैं, और कौन सी टीम आपकी फेवरेट रही है?
1: अरे हाँ, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और क्या कहें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। रात को जो मैच हुआ है ना, अर्जेंटीना और इजिप्ट का, कमाल मैच था। आप इमेजिन करें 80 मिनट तक गोल नहीं हुआ अर्जेंटीना से, और इजिप्ट लीड ले रहा था 2-0 से, और 13 मिनट में अर्जेंटीना ने 3-2 कर दिए, 3 गोल कर दिए यार, और 3-2 से।
0: अच्छा मैं अली को देख रही हूँ, अली इतने एक्सप्रेशन, और मैं ऑफ एक्सप्रेशन बात कर रहा है, बात मुझे बता रहा है, और मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं।
1: और मैं सपोर्ट कर रहा था इजिप्ट को, इजिप्ट हार गया। हाँ। फिर मैं बहुत उदास हो गया, फिर मैं उदासी के मारे मुझे नींद ना आए, फिर मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सोऊं, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, और इतना मैं सैड हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अर्जेंटीना पहुंच गया है जी क्वार्टर फाइनल में, और जो पहला क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है ना, वो होने जा रहा है जी फ्रांस वर्सेस मोरक्को, और ये जुमे की रात 1 बजे मैच होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा मैच होने जा रहा है। और दूसरा मैच जो क्वार्टर फाइनल का है वो स्पेन वर्सेस बेल्जियम है, और तीसरा मैच नॉर्वे इंग्लैंड का है। नॉर्वे की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, और मुझे जो लगता है ना, फ्रांस और मोरक्को वाले मैच में से फ्रांस जीतेगा, स्पेन और बेल्जियम वाले मैच में से बेल्जियम जीतेगी, और नॉर्वे और इंग्लैंड का जो मैच है ना, ये बड़ा टक्कर का मैच होने जा रहा है।
0: हमारे पाकिस्तानियों के प्रेडिक्शन चेक कर लें।
1: और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्वे को, और नॉर्वे ये मैच जीतेगी, और अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का जो मैच है ऑब्वियसली अर्जेंटीना जीतेगी, यार मेसी है उसमें। तब मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करूंगा इस मैच में।
0: अच्छा मजे की बात ये है कि ये जो आपने अभी कहा ना कि मैच हार गए और मैं बड़ा सैड हो गया, मैं मैचेस नहीं देखती, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जब मैच देख रही होती हूँ ना, तो मेरे बड़े ना टीम के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। अच्छा क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट हर बॉल के साथ ना बीपी अप हो रहा होता है, लो हो रहा होता है, और मैं ना मुझे लगता है कि मैं कभी कभी ऐसा ना हो कि देखते देखते ना गुजर जाऊँ, तो इतना सस्ता शहीद होने का ना मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे नहीं होना है, कि कोई क्या कहेगा कि रेहा मैच देखते हुए गई। तो मैं जो होते ना एहतियाती तदाबीर वो अपनाती हूँ, और मैं कोई मैच नहीं देखती।
1: अच्छा मैं सारे मैच देखता हूँ, फुटबॉल हो, हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे स्क्वाश हो, मैं हर मैच देखता हूँ, हर स्पोर्ट को मैं फॉलो करता हूँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है।
0: बड़े बहादुर हो।
1: अच्छा हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक लाइनअप है, चलें उसको भी चला देते हैं, और उसके बाद लौट कर वापस आएंगे, बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। Here we go with the break.
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: Smile and dial 111-000-101 FM. Smile and dial 111 111 FM.

0: वेलकम बैक जनाब, खुश आमदीद प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस एक छोटी सी डोज के बाद। और मैसेजेस मैं सोच रही थी कि शामिल कर लेते हैं जनाब, बड़ी देर से फेसबुक के जो मैसेजेस हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारी तरफ भी नजर करम हो जाए जरा,
1: शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं।
0: जी जनाब, हमें सुन रहे हैं अमरजा चौधरी, बहुत शुक्रिया अमरजा चौधरी, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हमदुल्ला मलखेल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलखेल। अच्छा जी, मैं हूँ रिहाल दाव।
1: अच्छा जी,
0: क्वेटा से। हाँ बिल्कुल, और बड़ा मजे का सिग्नेचर स्टाइल है। अच्छा जी, क्वेटा से हमें सुनते हैं। अच्छा, हमदुल्ला ना सफर में रहते हैं, कभी ये क्वेटा होते हैं कभी लाहौर होते हैं। हाँ, तो थैंक यू जनाब, क्वेटा से आप सुन रहे हैं।
1: इनकी जिंदगी में सफर लिख दिया गया।
0: बिल्कुल ऐसा ही। और रजा चौधरी के ज्यादा सारे मैसेजेस हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। और काई कबीला जी, जनाब बिल्कुल हाजिर हो जाएं जी,
1: वेलकम करते हैं जी आपको, खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पास भी एक मैसेज है, और वो मैसेज है जी आरजे मसूद अहमद का, कहते हैं दोस्त इज हु बियर योर बर्डन।
0: वाह जी वाह, क्या बात।
1: दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बने, ना कि सिर्फ खुशियों में साथ हो। मेरा ख्याल यही ये कहना चाह रहे हैं,
0: यही दोस्ती है।
1: तो थैंक यू सो मच मसूद भाई, बिल्कुल यही दोस्ती है, और अच्छी दोस्ती है। अगर ऐसी दोस्ती हो तो बहुत अच्छी दोस्ती है। थैंक यू सो मच मसूद भाई, ये भी दोस्ती है ना कि आप हमें सुन रहे हैं अपने कीमती वक्त में से, वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज भेजा है जी फातिमा ने, थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमें सुन रहे हैं, ये कौन है जो रो रहा है? सर, ऑन ड्यूटी होने की वजह से मैं शो से माजरत। रमजान गुजर साहब रो भी रहे हैं और ये मैसेज भी भेज रहे हैं। चले, मजबूरियां हैं जी, ये मजबूरियां और ये दूरियां। थैंक यू सो मच रमजान गुजर, आपने फिर भी मैसेज भेजा, आपका शुक्रिया। हमें ताहिर अजीज़ सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। बरकत रमदानी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोसो हैं, आपका शुक्रिया। हमें शाजिया सुन रही हैं गुजरांवाला से, थैंक यू सो मच। और हमें सुन रहे हैं जी अली भट्ट हमें लाहौर से सुन रहे हैं। मैं भाई आपको सुन रहा हूँ, शॉप पे हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें मैसेज भेजा है जी, हमें रजा सुन रहे हैं, रजा कहते हैं जी मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और कोई है मैसेज आपके पास?
0: जी जनाब, मेरे पास मैसेज है, फाइका हमें सुन रही हैं, पहले उनका मैसेज आया था, और अभी जब मैंने बात की थी ना कि टॉपिक के हवाले से आप कुछ कहिए, तो जनाब टॉपिक के हवाले से फाइका कहती हैं कि दोस्त वो है जिसके सामने हम रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं और अपनी हर कमज़ोरी खोल के रख सकते हैं, और हमें डर नहीं होता कि हमें वो जज करेगा। ऐसा दोस्त बहुत प्रेशियस होता है, और फॉर्चुनेटली आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में भी ऐसे दोस्त हैं जो किसी रीज़न से, किसी ज़रूरत से आपके दोस्त नहीं होते हैं, बल्कि आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। And I am one of those lucky people who have such a beautiful friend, a pure soul. वाह जी वाह, क्या बात है। और आप बहुत optimistic हैं मुझे लगता है।
1: ये beautiful friend आपको तो नहीं कहा उसने?
0: अब ये मुझे नहीं पता, इतनी खुश फहम नहीं हूँ मैं। इतनी खुश फहम नहीं हूँ मैं, ये तो फिर बाद में देखते हैं ना कि
1: ये तो बाद में राज खुलेगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: ठीक है जी, और मुझे मैसेज आया है एक, इजाज़ साहब हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ काफ़ी देर बाद, आज आप आए हैं और आ गए हैं और छा गए हैं, थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके अलावा जनाब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं।
0: गर्मियों की बात नहीं करनी अली।
1: अच्छा, गर्मी की बात नहीं करनी स्टूडियो में थोड़ी गर्मी नहीं होगी इसको हम? हाँ। बाहर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और स्टूडियो का मौसम भी बहुत अच्छा है, और अभी हम मेरे सामने कुछ दरख्त हैं जो कि लहलहा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और खुशी के मारे झूम रहे हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसे मौसम को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम तो इंजॉय कर रहे हैं स्टूडियो में, और आप भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, बच्चों को बच्चे भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां जब होती हैं ना,
0: अच्छा
1: तो
0: ये गर्मी के बाद की जो बातें हैं ना मुझे समझ ही नहीं आती, मेरी सोच समझ में गर्मी पे आके रुक जाती है।
1: छुट्टियों का तो मजा होता है ना वैसे गर्मी में, जो कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में छुट्टियां
0: जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब बड़ा मजा आता था कि जी जान छुट्टी पढ़ाई से, जान छुट्टी स्कूल कॉलेज से, और इंजॉय करते थे छुट्टियों को। लेकिन एक बड़ी मजे की बात थी हमारे टाइम पे, अच्छा हमारे टाइम पे मैं ऐसे कह रही हूँ, हमको 50 साल के हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, बचपन के। अच्छा वो ये होता था कि हमें स्कूल का तो होमवर्क मिलता ही मिलता था. अच्छा, स्कूल के होमवर्क के अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे लिए होमवर्क सेट करके रखते थे.
1: बिल्कुल ऐसी.
0: मतलब ऐसा नहीं था कि हम 2-3 महीने जो छुट्टियां होती थी वो कम्प्लीटली इंजॉय करें कि अच्छा जी अपना स्कूल का काम किया और उसके बाद घर. नहीं जी, हमारे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ हमारे लिए वो किया होता था कि समर कैंप्स हैं वहाँ जाना है, बुक्स लेके रखी होती थी कि जो स्टडी करने की या मुताले की आदत हो वो जी किताब, ये इतनी किताबें हैं ये आपने महीने के अंदर ख़त्म करनी है, वो है. इसके अलावा ना डिफरेंट और टास्क होते थे हमारी फैमिली में ना. मैं अगर अपनी फैमिली की बात करती हूँ तो बहन में या भाई में को फ़र्क नहीं किया गया और किया भी नहीं जाता. तो हमारी अम्मी क्या करती होती थी कि हमें छोटे छोटे से ना कामों में इन्वॉल्व करती होती थी कि अच्छा जी खाना बना रही है तो चलो जी सब्जी छील दो, और वो नहीं कि अब रेहा छील के देगी, साथ भाई बैठा तो चलो जी तुम भी लगो इसके
1: मटर निकाल दो
0: और संग छोटे-छोटे काम. हाँ. तो गर्मियों में होता ये था कि हम बहन भाई मिलके घर के काम भी कर रहे होते थे, कुछ ना कुछ बना भी रहे होते, और वो इंटेंशनली होता था कि हमारी अम्मी कहती थी कि ये काम करो कि पढ़ने के साथ साथ आपको जिंदगी के जो बाकी काम है ना वो भी आपको करने आने चाहिए. और एक चीज़ और हम बड़ी मुझे लगती है कि अहम है आजकल के पेरेंट्स के लिए भी और आज के बाद के भी सारे पेरेंट्स के लिए, कि ये एक आपके पास ना पूरे साल में ये 2 महीने होते हैं कम्प्लीटली जो आप अपने बच्चों को क्या आप उनको सिखा सकते हैं जो चीज़ें आप सिखाना चाहते हैं. पहले तो उनको स्कूल सिखा रहा है ना, स्कूल सिखा रहा है, जो आप किरदार साजी अपने बच्चे की करना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं कोई टास्क है कुछ पढ़ाई से हट के कुछ चीज़ें जो बच्चा करना चाहता है वो आप उसको सिखा सकते हैं. तो ये जो ये इन्वेस्ट करने वाला टाइम है ये 2 महीने के
1: अपने नहीं, बड़ा जबरदस्त टाइम.
0: लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है या बच्चे हैं, इवन पेरेंट्स भी है ना माजरत के साथ, कि बच्चे फ़ोन के हवाले हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, बच्चे गेम्स के हवाले किए होते हैं, और होता है कि अच्छा जी चलो जान छूटे.
1: हाँ, हमारी जान ना कहें, हमें तंग ना करें, मोबाइल इस्तेमाल कर लें, जाओ बाहर जाके. अच्छा, बच्चे तंग कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि जाओ बाहर जाके खेल आओ 2-3 घंटे.
0: जबकि इस तरह का मौसम हाँ. है, वेदर, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए प्लान करें और बच्चे उसको मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ मेंटल या इंटेलेक्चुअल जो हम कहते हैं ना एक्टिविटीज़ हैं वो भी होनी, बच्चों के साथ गेम्स खेलें.
1: बिल्कुल.
0: मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ देख रही थी कि वो बच्चा था कोई 2.5-3 साल का बच्चा होगा और उसका फादर से बैठ के चेस खेल रहा था, जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगा कि हाँ अब इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी चीज़ें इन्हांस हो रही हैं बच्चे की, तो ये कितना अच्छा एक एग्जाम्पल.
1: अच्छा, मैं ना रेहा, मैं ड्राइंग में बड़ा कमज़ोर था, तो मेरी अम्मी मुझे ड्राइंग बनाना सिखाया करती थी जब छुट्टियाँ होती थी ना, तो वो ड्राइंग बहुत ज़्यादा, वो मुझे ना कि अब ये बनाओ अब ये बनाओ, वो मुझे बना के भी देती थी, वो बताती भी थी ये किस तरह से बनेगा, तो वो चीज़ एक बड़ी मैं याद करता हूँ और बड़ी वो ज़बरदस्त.
0: अली, आपका बनता नहीं कि इतने इजी सब्जेक्ट ड्राइंग में आप जो है वो वीक थे.
1: मैं बहुत
0: हम
1: वीक
0: से, हम से पूछें आदि मुजरिम.
1: अच्छा, मैं ड्राइंग और मैथमेटिक्स में मैं बहुत वीक था, बहुत वीक. अच्छा? था. हाँ, मैं बहुत वीक
0: था. मैं मुझे लगता था कि सबसे नालायक मैथ्स में मैं हो सकती हूँ.
1: अच्छा,
0: और मुझे
1: फिर भी आपके 99 मार्क्स आ गए.
0: नहीं नहीं, ये वो वाली बात ही नहीं है कि फिर भी 99 भाई 33 पासिंग मार्क्स होते थे, मैं वहाँ मुश्किल को 34-35 लेके पास होती थी.
1: अच्छा.
0: हाँ, 2 और 2 मेरे लिए 5 हुआ करते हैं आज भी.
1: अच्छा, हम फिर वो लड़के होते थे जब हमारे 33 नंबर आते थे ना, हम कहते ओ यार ठीक है, और किसी और दोस्त के या किसी लड़की के 99 मार्क्स आने या 98 मार्क्स आने ना, तो उसको फिर हमने कहना ओ इतने में तो 3 लड़के.
0: अच्छा, मुझे आज तक वो लोग, वो खास तौर पे मतलब लड़कियों के बारे में भी बात कही जाती है कि 99 भी मार्क्स आ जाए तो रो रही होती हैं. अच्छा, मैं भी ये सोचती हूँ कि भाई क्यों रो रही हो, क्या
1: मैं कहता हूँ उन लोगों को, तुसी
0: कितों आंधे ने,
1: कितों आंधे ने. अच्छा, गाना है एक हमारे पास, हमारे जो वो हमारे लिसनर जो पश्तो को बहुत पसंद करते हैं या पख्तून हैं या केपी से बिलोंग करते हैं या आप पंजाब में हैं, वो ये गाना मैं उनके नाम करना चाह रहा हूँ. बड़ा जबरदस्त सा गाना मुझे लग रहा है ये. चले जी, चलाते हैं इस गाने को. एक पश्तो गाना,
0: सदा आशना.
1: सदा आशना, इंजॉय कीजिएगा ये खूबसूरत ट्रैक. अब मिलेंगे आपको न्यूज ब्रेक के उस पार, दरिया के उस पार. हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और जैसे ही लौट कर वापस आएंगे आपकी कॉल्स को हम ऑन एयर करेंगे. दिस इज FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
6: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
7: I love FM 101.
8: And now you are tuned into
9: FM 101.
7: I love FM 101.
10: Smile and dial 111-111-FM.

0: वेलकम वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदीद जी अनसत बिस्मिल्लाह बखैर अगले जो नौ प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस, और इस्लामाबाद की सैर सपाटे को हम गए हुए थे और वहाँ से आ गए हैं वापस। और आपको पता है जनाब कि इस्लामाबाद की सैर करके जब हम वापस आते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जनाब लाहौर और उसके मज़ाफात में लाइव कॉल्स का वक्त हुआ चाहता है।
1: बिल्कुल, कॉल्स को हमने ऑन कर दिया 04221100011। हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और कॉलर्स को कुछ हम टास्क भी देंगे जो कि लाइव कॉल पे जब आप आएंगे तो फिर आपको पता
0: लगेगा पता।
1: ले फिर आज की पहली कॉल,
0: देखते हैं जी कौन है खुश नसीब। वालेकुम सलाम अब्दुल हमीद, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
2: शुक्रिया शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम,
0: बहुत शुक्रिया जी।
2: अलीराजा भाई आप भी बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ जनाब, क्या हाल है फरूक साहब?
2: हाँ ठीक है,
1: फरुखाबाद से। मुझे ये बताएं, मैं पता क्यों नहीं बोल रहा था, आपने बर्फी मुझे नहीं ना भेजी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था।
2: अच्छा अच्छा, बर्फी पहुँचाएंगे यार, बुलाया तो है आपको, सानू बुलाओ तो सही, यही बर्फी ला के आइए।
1: अच्छा
0: अच्छा, शर्त रख दिए साथ।
1: मोहब्बत में फिर शरायत भी कभी कभार आ जाती है।
2: अच्छा मुझे अपना अली लगा भाई, अच्छे दोस्त थी, शनाख्त अही तो बचपन च कर ली थी, हूं कैसे करनी चाहिए?
1: ओ भी तुहानू दस रहा, तुसी पहले सानू कोई गाना सुनाओ।
2: केड़ा गाना?
1: दोस्ती पे कोई भी गाना सुना दे।
2: तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई,
1: ये आपने खुद से ही गाना बनाया,
0: बना दिया ना।
1: चलें चलें, सही है सही है, ठीक हो गया।
0: एटलीस्ट जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया है,
1: एक्सेप्ट किया है इन्होंने। हमीद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और कुछ कहना है आपने?
2: रजा भाई शमशी रेडियो क्लब वालों बहुत सारिया धन्यवाद है, दवा अभी बचपन च ध्यान लगी बाहर तालियां च कहना यार गन्ना लिया भन के, जेड़ा मोढ़ा वाले पास गन्ना सानू देता है ना भन के, कहीं ना ये अच्छा दोस्त है। जेड़ा उतले पास देना ना पिछे पास ना, कोई नहीं यारी जोरी करनी
0: ये बिल्कुल आखिरी नवाले वाली बात होगी ना, खाना खाते हुए जो आखिरी बाइट होता है वो कहते हैं नहीं देते हैं कि वो ज्यादा मजे का होता है,
1: वो ज्यादा
0: जो दे दे वो आपका बड़ा जबरदस्त दोस्त है।
2: अरे आप ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, तो काफी देर बाद तुम कहने ना आवाज चलो
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया जनाब,
1: क्या बात, थैंक यू सो मच जी हमीद साहब। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़,
0: बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है जी हमीद साहब की, क्या कहने, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदी जी आया नू,
1: थैंक यू सो मच,
3: सलाम मरहबा बली करी आया नू, ते बखैर अगले आ
1: नहीं असी फिर उठ जाने आ तुसी आ जाओ
0: हमारा बेग। कैसी हैं आप, खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में।
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं और थैंक यू सो मच आपको भी, वेलकम बैक,
1: थैंक यू, किस लिए
0: थैंक यू,
3: क्या कहा अली भाई,
1: थैंक यू किस लिए बोला आपने?
3: आपने कहा ना, आप भी ने कहा है ना, शुक्रिया मेहरबानी।
1: अच्छा, वेलकम कहा है आपको, ठीक है ठीक है। प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
3: सुन रही हूँ,
0: सही इतना सुन रही हूँ,
1: ये इनको प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा?
3: अच्छा लग रहा है, ये कब मैंने कहा?
1: अच्छा फिर आपके कहने का अंदाज ऐसा था कि सुन रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ।
3: वो मैं ऑफर कॉल
1: पिक नहीं कर रहे थे। अच्छा
0: इस बात का गुस्सा निकल रहा है, चलें जी हमारा को क्या टास्क देना
1: है? हमारा से भी हम गाना,
0: हमारा आर यू रेडी,
1: हमारा गाना बहुत अच्छा सुनाती है, हमारा गाना सुनाना है आपने हमें।
3: कौन सा?
1: कोई भी सुना दो, चाहे दोस्ती पे हो चाहे कोई भी गाना हो, लेकिन पाकिस्तानी सॉन्ग होना चाहिए।
3: रहे ना रहे ये जीवन कभी

0: अरे वाह जी वाह, क्या बात है हमारा।
1: जबरदस्त जबरदस्त जी, हमारा तो छा गई, हमारा का नाम ही मैंने आईमा रखा हुआ है। गाने बड़े अच्छे गाती है ये।
2: अच्छा दोस्ती, मैं ये कहूंगी जैसे पानी फिल्टर होता है ना, इस तरह साफ और शफाफ दोस्ती होनी चाहिए। और मेरी जो दोस्त है ना वो वैसी है बस।
1: अच्छा आपकी दोस्त कौन है, नाम तो बताएं अपनी दोस्त का।
2: सैयदा मारिया शाह।
1: सैयदा मारिया शाह
2: कजन भी है, बचपन की दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना कि जैसे अच्छा दोस्त होना चाहिए वैसी ऐसे।
1: चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त।
2: मेरे तो ऐसे कोई राज नहीं है लेकिन जो उसके है ना वो हमेशा
3: अच्छा मतलब राज है उसके।
1: ये भी बड़ी बात होती है, ये एक बड़ा ना हथियार होता है हमारे पास कि यार तेरे राज सारे मेरे खोल ले,
3: तू मेरी गल ना मान फिर वेखी।
2: नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं फिर खाना शाना खा लेती हूँ उससे।
3: ये भी ठीक है,
2: पिज्जा भी खाती हूँ। और जो दिल करता है ना फिर ऑर्डर लगाना होता है फोन पे, बस मैंने ये खाना और ये लेना है, पहुँच जाती हूँ वहाँ तक।
1: ऐसे दोस्त हमारे क्यों नहीं है यार।
2: अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके राज है ना मेरे दिल में ऐसे दफन है जैसे कब्र में मुड़ता है ना फिर ऑर्डर लगाना होता है फोन पे, बस मैंने ये खाना और ये लेना है,
1: वाह
2: वाह वाह वाह वाह।
1: ऐसे दोस्त हमारे क्यों नहीं है यार।
2: अल्हम्दुलिल्लाह

0: वो पीछे से जब चूरा घूमते हैं।
1: इंटरेस्टिंग।
2: अली एंजॉय कर रहा है। अली अली गौर से
0: भाई सीरियस हो गए हैं।
2: वही तो।
1: नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ।
0: अच्छा अली भाई आपका कोई ऐसा दोस्त है?
1: कैसा?
0: जैसा
1: जैसी मेरी दोस्त। हाँ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बहुत नेक दोस्त है। खाना नहीं खिलाता। बस वो वैसे नेक है, शरीफ है।
0: रेहा भी आपके लिए एक शेर सुनाना चाहूंगी।
2: जी जरूर जरूर।
0: दूसरे कॉलर्स भी लाइन में लगे हैं के असी नाजुक दिल दे लोका साडा दिल ना यार सुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर,
1: मुझे
2: थैंक यू सो मच। हमारा बड़े ही शिकवे कर दिए हैं।
0: और जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज जा रही है सबको
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्ती की बात हो रही है, गाना ना चले। हम सब की एक मेमोरी है इस गाने के साथ, एक याद है, एक बड़ी जबरदस्त सी याद है। सो एंजॉय कीजिएगा ये खूबसूरत ट्रैक, हम भी एंजॉय करेंगे और कॉल्स का सिलसिला यूं ही जाएगा। 04221111

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: Smile and dial 111-000-101 FM.
2: Smile. FM, आप डायल कर रही हैं, हमसे बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
3: वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। शबीर हुसैन कर रहा हूँ, ये जोड़े पुल लाहौर से।
2: जी शबीर हुसैन, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
3: बस दुआएं सर, आप ठीक हैं? और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और मीठा मीठा है बहुत। ये जवाद का जो आपने गाना सुनाया, ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे।
2: अच्छा, प्रोग्राम अच्छा है और मीठा मीठा है। अब मुझे ये बताओ, अच्छा क्यों है और मीठा क्यों है? असी घोड़ साट रहे हैं?
3: नहीं नहीं, आप बातें इस तरह कर रहे हैं ना, लोगों का दिल बहला रहे हैं। और आपका प्रोग्राम सब सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान सुन रहे हैं, दूसरे मुल्क भी सुन रहे हैं।
2: अच्छा
3: जी जी,
2: ठीक।
3: तो मैं भी आपको थोड़ा सा ना सुनाना चाहता हूँ।
2: क्या?
3: ये थोड़ा सा गीत है, थोड़ा
4: जी जी बिल्कुल।
2: हाँ, पाकिस्तानी गाना सुनाइएगा।
3: पाकिस्तानी होगा
2: जी, सुनाए।
3: दिल लगाया था दिल लगी के लिए,
2: कितने के हाजिर लाओ।
3: दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए।
2: वाह क्या बात।
3: दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
2: क्या बात है, क्या बात है जी।
3: जो लक्कर था वो फिकर ढाला, जो लक्कर था वो फिकर ढाला, हमने जालिम तेरी खुशी के लिए।
2: क्या कहने जी, क्या कहने। जबरदस्त जबरदस्त
3: आपका प्रोग्राम, आस्ता रहे और इसी तरह हम सुनते रहे।
2: थैंक यू सो मच।
3: पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और रेहा कॉल नहीं, कौन है हमारे साथ?
4: उनको पसंद नहीं आई अली आपकी ये बात।
2: नहीं, ये बड़े जबरदस्त कॉलर हैं हमारे, अक्सर आते रहते
4: हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम,
4: खुश आमदीद जनाब।
5: शुक्रिया शुक्रिया।
2: अपना नाम बताइएगा।
5: नाम मेरा एहसन खान है।
2: अच्छा,
5: बकर से है।
2: ताल्लुक बकर से है
4: जी। एहसन खान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप लोगों की तरह।
4: माशाल्लाह जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
5: प्रोग्राम आपका सुन रहे थे। लेकिन साथ साथ जो मौसम बन चुका है ना, वो बहुत ही
4: गवाहियाँ मिल गई है जी। मौसम अच्छा,
2: वाकई मौसम
4: ठीक हो गया,
5: क्योंकि यहाँ पे ना हवा चल रही है और इसके साथ साथ काली घटाएं भी पहुँच चुकी हैं।
2: अच्छा, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है।
5: लाइव रिपोर्टिंग जो है वो झूम रहे हैं,
2: झूम रहे हैं।
4: ये आप भी कहीं कहीं किसी कमरे में, एहसन कहीं किसी कमरे में बैठ के अली की तरह इमेजिनेशन में तो नहीं है?
5: बस मैं बैठा था तो मैं बरामदा है, पीछे दो कमरे हैं, साथ में एक किचन है, अकेला बैठा हूँ।
4: हाँ।
5: तो साथ में दरख्त झूम रहे हैं, बाहर कोई
4: दरख्त नजर आ रहे हैं या बस ज़हनी तौर पे सोच रहे हैं आप दरख्तों को?
5: नहीं नहीं, बिल्कुल दरख्त मेरे सामने मौजूद।
4: अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, हमें आपकी बात पे यकीन आ गया।
2: एहसन, एहसन
5: ये मकान हमने अभी अधूरे है ना, अभी कम्प्लीट नहीं हुए, बाहर चार दीवारी बनाई है, थोड़ी सी आगे रोड है, और
4: यानी दरख्त नजर आ रहे हैं
5: बिल्कुल।
2: ऐसा ना, आप अकेले बैठे हो, अगर आप हवा में उड़ गए तो क्या बनेगा आपका?
1: नहीं अभी कोई उम्मीद नहीं होने की क्योंकि हवा इतनी तेज नहीं है, अगर फिर भी मैं कोई उड़ भी पड़ा तो सामने दरख्त है किसी न किसी के ऊपर चमट जाऊंगा
4: किसी न किसी में बज जाऊंगा कहना
1: कहीं ना कहीं अड़ जाऊंगा जब कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगी। बाकी अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोयल बोल रही थी लेकिन अब हवा तेज हो गई है तो वो भी
2: सही सही
1: किनारा कर गई। मेरी कोशिश यही थी कि पीछे कोयल जब बोलेगी ना तो वो क्या कहते हैं कि एक कुदरती माहौल वाला
4: क्या कहने आपकी सोच के।
2: अच्छा ऐसा दोस्ती के हवाले से क्या कहोगे आप, गाना सुनाओगे या सवाल का जवाब दोगे?
1: सवाल का जवाब दूंगा, गाना सुन के लोग भाग जाएंगे।
2: यही हम चाह रहे थे
1: जी फरमाइए
2: क्या
1: सवाल तैयार हो रहा है अभी?
2: नहीं नहीं सवाल आपको पता नहीं, शो नहीं सुन रहे आप?
1: नहीं सवाल आप रिपीट करें ना, मैंने कहा हर बंदे चले तो सवाल हो रहा है।
4: बस पता लग गया कि आप शो नहीं सुन रहे थे।
2: क्या आज के
1: पूछ रहे थे ना, एक तो जब हम कॉल मिलाना शुरू करते हैं ना तो फिर हम कॉलर की आवाज नहीं सुनते।
4: कसम ले लो कॉल मिलाने से पहले और कॉल मिलाने के बाद सवाल एक ही है, बदला नहीं है।
2: क्या आज के दौर में वाकई सच्ची दोस्ती मिल जाती है?
1: मिल जाती है।
2: अच्छा कैसे कहां
4: कितों
2: लाभ दिया सानू भी दसो
1: कितों कोई के पैसे नाल ते मिलदी नहीं।
2: अच्छा फ्री मिल जाते
1: हैं दोस्त जो है ना बचपन के हैं तो अभी तक हमारी दोस्ती तो ठीक ठाक चल रही है, एक दूसरे में तो काम भी आते हैं। और
2: आज के दौर की बात करें, आज के दौर पे क्या कहेंगे आप, आज के दौर में कोई आपका दोस्त बना आजकल?
1: आजकल जो थोड़ा अच्छा पहले तो ये रजा चौधरी हैं, ये हमारे दोस्त बने हैं, मिजाज अली हैं, इनके साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती चल रही है। और जो भी मुझे मुश्किल परेशानी होती थी लाहौर में तो ये लोग मुझे हर हाल में पूछते थे कि सजाद भाई भी थे, कोई
2: अच्छा।
1: मसला है मसाइल है तो आके बकायदा सारा कुछ। इनकी दोस्ती मेरी रेडियो से हुई है, कोई मेरा इनके साथ पहले नहीं जान पहचान थी, मैं जब आया तो ये पहले से मौजूद थे, हमारे सीनियर हैं।
2: सही सही,
1: तो सलीम भाई भी हैं, इसी तरह ये सब लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरी मुश्किल वक्त में भी काम है, ये नहीं है कि कोई बात ये सलाम दुआ वाली दोस्ती नहीं है।
2: तो क्या यही मुश्किल वक्त में काम आए या आप भी कभी मुश्किल वक्त में काम आए हैं?
1: मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनके काम आ जाऊँ लेकिन ये ज्यादा मुझसे यानी कि इन्होंने ज्यादा ये अच्छे हैं मेरी निस्बत, मैं मुझे ये अच्छे हैं। बाकी मैं गांव की दोस्त मेरे हैं जो वो माशाल्लाह उन्होंने गांव की हद तक मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, किसी वक्त मुझे अगर फोन की भी जरूरत पड़ी है ना तो उन्होंने हाजिर कर दिया है।
2: वाह वाह,
1: तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बकायदा एक दफा मुझे मुश्किल टाइम आया था, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार था तो तीन चार दिन में खून लगनी थी तो वो सारे मेरे जो भाई थे ना इनके दोस्त दोस्त सबसे पहले आए, हालांकि भाइयों के ब्लड ग्रुप नहीं मैंने जो रहे थे तो वो दोस्त जो थे ना वो सबसे पहले वो दो दोस्त आए थे।
2: सही,
1: उन्होंने फोन दिया था, उसके बाद फिर हमारा सिलसिला आगे चला था।
2: बिल्कुल ठीक,
1: तो ये दोस्ती जो होती है ना ये नहीं होती कि किसी ने पैसा दे दिया है या किसी ने।
2: बिल्कुल ठीक है ऐसा, चले कॉल कॉल लंबी हो रही है, थैंक यू सो मच ऐसा। ऐसा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कुछ हमारे कॉल है ना वो फिर कॉल करके पता क्या कहते हैं, साढ़े बार ये डी छेती पे आ गई जी 042-111-0101 हमसे रब्ते का नंबर है। क्या आज भी आज के दौर में भी सच्ची दोस्ती मिल जाती है? क्या आपका कोई सच्चा दोस्त बना है आजकल, या सोशल मीडिया के दौर में आप भी कहीं ना कहीं खोए बैठे हैं और कोई आपको सच्चा दोस्त नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नीव ड्राइवर बोलो, की बोल रहे हो?
6: सर क्या ठीक हो कह रही है?
2: बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ?
6: मैं ठीक ठाक, मैं सर लाहौरों बोलन दिया।
2: अच्छा मैं समझा तुम पेशावर तो बोल रहे हो
6: मैं सारे से तुम्हारे लागे लागे बात कर रहा
2: था। अच्छा ध्यान ना फिर ना बिल्ली चौक लै जाती है अच्छा मुझे ये बताएं कि मौसम कैसा है?
6: सर मौसम है तो डिफेंस में मैं डिफेंस फिरन दिया, बहुत अच्छा मौसम है,
2: बहुत अच्छा मौसम है, चले जबरदस्त हो गया
6: मैं गल नाल ला नी लिया, हाय से आपा गल पा नी लिया, ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਛੱਡ ਹੁਣ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਨੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਏ, ਨੀ ਉੱਡ ਤੁੱਡ ਜਾਣੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਨੀ ਲਿਆ, ਹਾਏ ਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾ ਨੀ ਲਿਆ।
2: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਛਾ ਗਏ ਆਪ
6: ਸਰ। ਬਸ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਆ।
2: ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ
6: ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇ ਲੋਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਏਡੀ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਰੈਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸਹੀ,
6: ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
2: ਬਿਲਕੁਲ,
6: ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2: ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
6: ਜੀ, ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲੰਗੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
6: ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਦਾ ਲਾਦਾ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਲੋਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲੋਸ।
2: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ।
6: ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਬੇਲੋਸ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ,
6: ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਬੇਲੋਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
6: ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਨੀਫ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
6: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
2: ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ,
6: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ,
2: ਓਕੇ।

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, जहां स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: Smile and dial 111 111 FM।

0: अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं, गाना भी एक चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: सलाम, खुश आमदीद।
1: आप कैसी हैं मैम?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: आज आपको अली भाई बताएंगे मैं कौन हूँ।
2: अच्छा, हाँ जी।
0: कहीं कहीं साजिदा तो नहीं बात कर रही
1: जी? देखा ना, क्या आपने पहचान लिया ना मुझे।
0: देख ले, मैंने पहचान लिया आपको। क्या हाल है आपका?
1: आपको तो जुम्मे को ढूंढ रही थी आप। आज
2: आवाज क्यों आए?
0: अब हम बुध को आया करेंगे,
2: भेज देते हैं वापस।
1: जुमे को नहीं आया करेंगे, ये आया करेंगे।
0: अब हम सिर्फ बुध को आया करेंगे।
1: चले ठीक है, ओके
0: ठीक है।
1: और अच्छा लगा आपका जबरदस्त शो।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताओ कि क्या आज के दौर में भी सच्ची दोस्ती मिल जाती है?
1: नो, आजकल के दौर में सच्ची दोस्ती तो बिल्कुल नहीं मिलती।
0: ठीक है,
1: मिलावट वाली मिल जाएगी।
0: मिलावट वाली मिल जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कुछ कहना
1: है? वो जो कहते हैं ना मिक्सिंग, वो आपको मिल जाएगी बहुत ज्यादा। जितनी भी कहो वो ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन सच्ची बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
1: सच्ची मोहब्बतें, सच्ची दोस्ती, आप कहाँ है? अब तो कोई भी नहीं है। अब तो बस ऐसे ही है, टाइम पास या वैसे कोई जरा सी बात हुई तो नाराजगी हो जाती है।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साजिदा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: बारिश भी
0: हो रही, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा देंगे? पहले ऐसे गंदे अच्छी लगा रहे हैं,
1: बहुत अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन जरा बारिश के।
0: ओके ओके ओके, लगाते हैं लगाते हैं।
1: बहुत ज्यादा दुआएं और मैम आपके लिए भी बहुत ज्यादा
2: दुआएं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू,
0: ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।
1: और आपका इतना मजा आ रहा है ना शो का।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
2: अच्छा, सॉन्ग्स जो है ना वो दो तीन उनका वो टंका।
0: हाँ, एक गाना आरजू भी था जो
2: आरजू था। हाँ बिल्कुल,
0: वो
2: है,
0: भी निकाला हुआ।
2: हाँ, आरजू है और एक लाला ताउला का बोला है।
0: हाँ,
2: वो एक
0: सब माया है,
2: सब माया है। और एक और भी था वो कुछ परदेसी वाला।
0: चले हम जाते हुए एक गाना चला देंगे
2: जी। कौन सा गाना आज हम प्ले
0: जाते हुए एक गाना चला देंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आवाज बहुत दूर से आ रही है और मुझे मेरी आवाज वापस भी आ रही है।
3: सर गुजारा करें, बड़ी मुश्किल से कॉल मिलाई है।
0: अच्छा चलें कर लेते हैं गुजारा फिर। बोले
3: चौधरी कहते हैं बड़ी मुश्किल से ड्यूटी पे वो कॉल मिलाई है, तो आप दोनों को वेलकम।
2: बहुत शुक्रिया रजा चौधरी।
3: तो अच्छा शो जा रहा है आपका, पानी किधर जा रहा है? जा रहा है।
0: अच्छा, गहरी
2: बड़े लोग बड़ी बातें।
3: तो माशाल्लाह मौजू अच्छा है। जिंदगी में जिसके या जिधर भी मुझे ना बचपन से लेकर अब तक मुखलिस दोस्त मिले भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी मेरे को ना एक मजाक बना दिया। मजाक जो अच्छा किया उसका जो बदला है ना वो वैसा नहीं मिला, लेकिन अलहमदुल्ला पहचान हो जाती है बहुत जल्दी की। अब मैं बहुत जल्द जज कर लेता हूँ ऐसे दोस्तों को, लेकिन जो मेरे बचपन के जो मेरे क्लास फेलो है ना अभी जो मुझे मिलते हैं तो बड़े ग्रेट बंदे हैं, बड़े अच्छे हैं जिन्होंने मेरे ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम पे मेरा साथ चला साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रेडियो पे कदम रखा है तो रेडियो में भी बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे सीनियर मिले हैं, बुजुर्ग मिले हैं, बड़ी अच्छी मोहब्बत दी उन्होंने, चाहत दी और रेडियो का वो मकसद समझते हैं।
0: सही,
3: तो मेरे लिए यही कामयाबी है बचपन से लेके आप तक मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: तो शो का टाइम मुक्की सटिया है
0: जी, टाइम खत्म हो गया।
3: रजा चौधरी को दे इजाजत।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। वेल जी, ये था आज का प्रोग्राम, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, बड़ा मज़ा आया आज आपसे बात करके, आपसे मिलके एक लंबे बिछड़न के बाद और रिहा वाकई।
2: हाँ बहुत लंबे, कई महीनों के बाद, कई हफ्तों या दिनों के बाद नहीं, बड़े महीनों के बाद आज प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। और सोचते हम भी हैं, याद हम भी करते हैं, माइक की याद, स्टूडियो की याद, लिसनर्स की याद बहुत आती है और वापस आके बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्ती के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? आप
2: नहीं, मैं तो पहले कह चुकी हूँ, फी जमाना भाई दोस्ती। ये आजकल जो है ना सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक दौर है और आप लकी हो के आपको कोई मिल जाए। अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी इनफ, मेरे पास हैं दोस्त बहुत अच्छा। अच्छे दोस्त, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि फिर एक होता है ना कि एक कितने दोस्त होने चाहिए जी। मैं कहती हूँ कोई एक भी हो तो चज का हो, दो हो तो चज के हो, वरना नहीं होने चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक।
2: तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो आपके होते हैं ना मटेरियलिस्टिक नहीं है, आपके साथ वो आपके लिए हैं।
0: बिल्कुल सही।
2: اور آپ بتائیں اب آپ ہمیں گانا سنائیں گے کہ سوال کا جواب دیں گے.
0: بس پروگرام کو میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں, تین منٹ رہ گئے ہیں, ایک گانا بھی, گانے کی بھی ہلکی سی ڈوز دے دیں گے اور یہاں پہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ان تمام خوبصورت سماعتوں کا جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں, اور پروگرام بڑا زبردست رہا, بڑا مزہ آیا. آج ہم نے بات کی کہ آج کے دور میں بھی سچی دوستی مل جاتی ہے کیا, تو سچی دوستی مل جاتی ہے, آپ کو اچھے ہونا پڑتا ہے, آپ کو خلوص کے ساتھ, نیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس دوستی کو نبھانا پڑتا ہے, اور ہر دوستی میں محبت کا ہونا ضروری ہے, لیکن اس سے ضروری ہے عزت کا ہونا. سو اسی بات کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کا بھی خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. آر جے علی رضا
2: اور ریحہ الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.
0: اللہ نگہبان.

शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई का फरोग नेशनल एनर्जी पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा तारुकात मुस्ताहकम करने के आज़म का अयादा किया है। फौज के शोबे तारुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का हर जगह ताकुब करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के हवाले से पुख्ता अज़्म और वाजे सोच रखती हैं। कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फरवानी की शहादत की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए माहौल दोस्त सस्ती और पायदार तवानाई का फरोग नेशनल एनर्जी पॉलिसी का अहम हिस्सा है। उन्होंने ये बात गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। शहबाज शरीफ ने कहा कि 100 मेगावाट का शमसी तवानाई मंसूबा विफाकी हुकूमत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफा है। उन्होंने तवानाई डिवीजन को हिदायत की कि वो इस मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने कहा कि सोलर मंसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि तमाम अदायगियां तीसरे फरीक की तस्दीक के बाद ही की जाएं। इजलास को गिलगित बल्तिस्तान शमसी तवानाई मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि इस मंसूबे के तहत रवां साल दिसंबर तक 499 सरकारी इमारतों की छतों पर बैटरी स्टोरेज समेत 18 मेगावाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। इजलास को बताया गया कि 82 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल सोलर मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिया गया है। इस मंसूबे से तकरीबन 13 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। सऊदी अरब के सफीर नफाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। उन्होंने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और बातचीत और सिफारतकारी को फरोग देने के लिए मुश्तरक कोशिशें आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सऊदी सफीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा, जिनमें R4 और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के जरिए पॉलिसी का अहम किरदार शामिल है।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं आसिफा महफूज
1: और अयाज असलम।
0: पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई का फरोग नेशनल एनर्जी पॉलिसी का अहम हिस्सा है।
0: पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इस आज़म का अयादा किया है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी रियासती ताकत से कुचल दिया जाएगा।
0: फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का हर जगह ताकुब करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने का पुख्ता आज़म और वाज़े सोच रखती हैं।
1: पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुद्र में एक कार्रवाई के दौरान लापता होने वाले माल बर्दार तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है।
0: वजीर दाखला और उनके रूसी हमनसब ने न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान खित्ते में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया है।
1: वजीर रेलवे ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे की आमदन बढ़कर 115 अरब रुपए हो गई है।
0: पंजाब की वजीर आला ने गैर महफूज घरों से होने वाले सानेहात से बचने में मदद देने के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी है।
1: चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 27 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है।
0: कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत की 10वीं बरसी आज मनाई गई।
1: चीन के सूबों हुबे और गैंगजू में शदीद बारिशों और मिट्टी के तौदे गिरने के वाकयात में 21 अफराद हलाक हो गए हैं।
0: आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स का मरहला जुमे से शुरू होगा।
2: मामा पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है।
3: इधर देखो।
4: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: मामा पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है।
3: इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की, अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकते हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच मजबूत तुम।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सत्त सत्त दो सत्त एक छे सिफर। मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@lhr.gmail.com। पता ते फोन नंबर एक बारी फिर नोट कर लो, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 04237272160 यानी 0423772160। मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@lhr.gmail.com।
1: जी सोने भैन भ्राओ, उम्मीद है कि तुसी बड़ी एहतियात नाल पता नोट फरमा लिया होगा। सदा खुश रहो, सेहतमंद रहो ते अपनी जिंदगी नू बड़े अच्छे तरीके नाल गुजारो। इस दे नाल ही अपनी भैन साहिबा नू दवो इजाजत, अगले प्रोग्राम विच फिर मिलांगे। उस वेले तिकर अल्लाह हाफिज़।
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा।

रात के 10 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई का फरोग कौमी तवानाई पॉलिसी का अहम हिस्सा है। क्रोएशिया के उमूर खारजा और यूरोपी उमूर के वजीर कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इस अजम का अदा किया है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। और अब खबरों की तफसील।

0: अलर्ट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:41 और आज है जी 8 जुलाई 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। कभी कभी मैं 10 बजे आता हूँ, वैसे अक्सर ही मैं लेट आता हूँ। एनीवेज वी आर लाइव जी, आप सर्च कर सकते हैं जिन्होंने पहली मरतबा सुना। अभी यहाँ पे ऑफ एयर मुझे कॉल आई, मैं सबा थी, वो कहती हैं पहली मरतबा उन्होंने मेरे शो में कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। और उन्होंने मैसेज दिया कि हमें आजकल अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शी वॉज राइट, और ऐसे ही है, हर किसी के रिएक्शन का तरीका मुख्तलिफ है। कोई किसी तरह रिएक्ट करता है, कोई किसी तरह से करता है। और आप सर्च कर सकते हैं जी RJ DOX लिखेंगे, फेसबुक पे तो मेरी वीडियो स्ट्रीम आ जाएगी। एंड उसके अलावा आप फेसबुक पे अगर सर्च करें स्टैटिक, अगर आपने पोस्ट देखनी है FM 101 लाहौर और FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह आपको मेरी पोस्ट मिल जाएगी। बल्कि एक ही जगह मिलेगी, दूसरी जगह तो पोस्ट नहीं हुई अभी तक, इस्लामाबाद वाली। शाह साहब ज़रा चेक करें, या मेरा ख्याल है शायद हो गई है। हाँ हो गई है, हो गई है, बिल्कुल हुई है जी 8 मिनट पहले। एंड इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111 0012 1110 1001 1001 इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, आप 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और इसको भेज देंगे आप 4471 पर। और आज के दिन हम बात करेंगे, बात तो खैर जो भी मैं करूँ, मौजू तो कुछ भी हो लेकिन बात आपकी है, यहाँ पे आना, मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और है या किसी और जगह पे, जहाँ पर भी दुनिया भर में जहाँ पर भी रेडियो पर बात की जाती है, तो यकीन जाने मेरा या किसी और का आना यहाँ पे सिर्फ आपके लिए होता है। और हम सबकी यही कोशिश होती है, यहाँ पे आए हैं आपके लिए आते हैं, कोई ना कोई मौजू गुफ्तगू बात चलती रहती है सिर्फ आपके साथ। गुफ्तगू का एक सिलसिला है जो चला जाता है और इसको कोशिश करते हैं हम चलाए रखें, और कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें वो सुने। और मेरा भी कैनवस इसी तरह बहुत बड़ा है, जो दिल में आता है बात कर सकते हैं, मुझे कॉल करें। लेकिन एक सवाल जो आज मेरे जहन में था और उस पर मैं भी सोचता रहा, मैं अक्सर सोचता हूँ इन चीज़ों पे, आज भी मैं सोचता ये रहा कि ये कंपटीशन और जेलसी जो है इसमें फ़र्क क्या है, इन दो चीज़ों में इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, कंपटीशन और जेलसी में असल फ़र्क क्या है। किसी को कभी किसी को कामयाब देखकर दिल ने कहा हो हाँ यार मुझे भी ऐसा करना है, और कभी शायद यही दिल ये भी कह बैठता हो कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। दोनों एहसास बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं लेकिन हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड जेलसी। और यही एक सवाल है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। जब आपका कोई क्लास फेलो, कोई दोस्त, कोई क्लीग, कोई मिलने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई इर्द गिर्द वाला कुछ भी हासिल करे, तो आपके अंदर पहला ख्याल क्या आता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, यहां पर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, क्या ऐसा है? और जो भी ख्याल आता है उसका रीजन क्या होता है? कंपीट करना और जेलस होना, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। सो आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स 0422111001, और इस पे जाहिर है मैं अपना भी ऐड करता रहूंगा, और इसमें थोड़ा सा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख सका वो भी देखूंगा, और मैं चाहूंगा आप लोगों से ज्यादा सीखूं। और जहां तक मेरी आवाज आती है, डू लेट मी नो यू गाइस आर लिसनिंग। और मुझे पहला मैसेज यह है, जेलसी जो है ना दो लोगों में तीसरा है वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस की जा सकती है। यू आर राइट, हाँ दो लोग जरूरी नहीं, कि मतलब दोनों का आपस में रिलेशनशिप ही हो, बंदा बंदी हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या मियाँ बीवी। दोस्तों में भी अक्सर ये देखा जाता है, लड़ाई हो जाती है, काम कारोबार के मामलात में भी ये होता है, जेलिसी होती है, अक्सर ये मामलात होते हैं। और कहते हैं दो में तीसरा हमेशा रकीब हुआ करता है, मामलात बिगड़ जाते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? आई वॉन्ट यू टू गाइड मी एंड टेल मी। और अच्छा जी, ये चेक करें मेरी आवाज़ आना क्यों बंद हो गई है, ज़रा शाह जी ज़रा चेक करना मुल्तान वाले रिसीवर से या इधर उधर कहीं जा रही है कि नहीं। 04221100101 इस पर आप मुझे कॉल करेंगे और आज का ये सवाल है, इस पर गुफ्तगू आपकी मेरी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: अंसारी साहब, आपकी पहले कॉल कैसे मिल जाती है?
1: आपसे कॉल करते हैं आपको शाहिद अंसारी।
0: आपकी कैसे कॉल मिल जाती है मुझे समझाएं। नहीं ये मिलती कैसे है मुझे समझाएं, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं अंसारी साहब की कैसे कॉल मिलती है। मैं यकीन करके मैंने कुछ नहीं बताया, उनकी मिल जाती है।
1: सर मेरे मौला का करम है, बस तरीके
0: मेरे, मैंने कहा मेरे वास से होवे तो मैं कहता ना मिले।
1: हाँ जी हाँ जी, अपने बंदों का पार्ट तो आप लेंगे ना, वो यानी पिछले वाली भी अभी अभी तक दिल में है आपके पास?
0: नहीं नहीं दिल में नहीं है, दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा ये कहता है हाँ यार पहली कॉल एटलीस्ट नहीं मिले ना यार, पहली कॉल वाई?
1: नहीं सर वो
0: चक्कर रहा ना, क्या लोग ये सोचते हैं इन्होंने सेटिंग की हुई है कोई?
1: नहीं मेरे पास दो मोबाइल हैं, दोनों टच वाले हैं, ये वो हैं बटन वाले।
0: आप एक से सुनते हैं एक से मिलाते हैं, मैंने बड़ी दफा लोगों को ये बताया है।
1: और एक से टक टक टक टक टक यानी उसको रीडायल रीडायल करता रहता
0: हूं। यही बात है, मैंने यही कहा वो यही करते हैं, वो दूसरे मोबाइल से जो है ना जुड़े रहते हैं।
1: हाँ जुड़े रहते हैं भाई, जिस तरह अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला का करम है कि यानी आपके हमारी जुड़े रहे तो बहुत अच्छा है।
0: जनाब बताइए।
1: और सर और वो कहते हैं कि अपना मेहनत कर हसद ना कर,
0: बिल्कुल ठीक है जी। फर्क
1: मेरे मौला के करम, मेरे मौला के करम से अल्लाह का शुक्र है, अपन ने कभी ये नहीं किया। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि मेरे ATM में मेरे पास फ्रिज तक नहीं था, और फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद और फिर जैसे भी कमेटियां डाली मौला के करम से, वैसा अभी मेरे बेटे के पास मोबाइल भी है, मेरी बच्चियां माशाल्लाह एक PhD डॉक्टर है, एक बायोमेडिकल इंजीनियर है और एक ने भी डिप्लोमा किया है स्किन की फील्ड में माशाल्लाह मौला के।
0: और फिर भी आपकी शादी की ख्वाहिश नहीं जा रही?
1: नहीं नहीं नहीं मेरे मौला का करम है, अब नहीं है,
0: अब नहीं है।
1: नहीं, अब नहीं है।
0: अच्छा तो फिर जेलेसी में और इसमें क्या फर्क है? कंपटीशन में
1: सर, वो है
0: मुकाबले में और हसद में क्या फर्क है?
1: सर उसके वाली बात है कि ओए यार उसको मिल गया, तो भाई उसने मेहनत की उसको मिल गया। यार आप उसकी गाड़ी देख रहे हो, कार देख रहे हो, आप मौला का करम शुक्र अदा करो कि आपका मोटरसाइकिल है। आप यकीन कीजिएगा मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, मैं बस में या सुजुकी में जाया करता था और बाद दफा बस जो हड़तालें होती थी तो पैदल भी जाया करता था।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया अंसारी साहब। और कुछ फरमाना चाहेंगे?
1: वो फरमाएंगे नहीं, वो कुछ अगर मौका देंगे तो कुछ।
0: आपका गाना रिलीज होना था, हो गया?
1: इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा के आ जाऊँ जुम्मे को।
0: बस अब जब रिलीज हो तो मैं चाहूंगा आप बताइएगा, सुनेंगे।
1: हाँ, तो
0: वो तो फिर
1: ऐसे ही
0: आपको
1: जो भी उसके ऊपर काम हो रहा है अब वो जुम्मे तक हो जाए या और भी थोड़ा लेट हो जाए।
0: थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ओके अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरे सामने लाइव पे भी मैसेजेस चल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल जिन्होंने ज्वाइन किया। जमीयत की शहजादी ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन अली ने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम। आज डॉक्स वाइफ ने सलाम किया, टॉपिक पूछा मैंने, बताया हसद में और मुकाबले में क्या फ़र्क है, जेलसी एंड कंपटीशन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स एंड टू फीलिंग्स, कंपटीशन एंड जेलसी। और एम रजा चौधरी साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। अधूरी ही सही पर हमने तुम्हें अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है। लिखने वाले भी लिखने वाले ने लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है। वाह वाह अच्छा है टूटे हुए दिल की बातें। सर क्या मेरी कॉल मिल जाएगी? लेट्स सी ट्राई करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, क्या हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद आमिर भट्टी बात कर रहा हूँ लाहौर से जनाब अली।
0: कैसे हैं आमिर साहब? आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे?
2: बहुत बहुत दुआएं आपकी, शुक्र। आरजे साहब, आरजे डॉग साहब, आपके आपसे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम,
0: मुझे याद है
2: जब आप लेडीज के शो में आप आगे आए थे।
0: लेडीज के शो में आप आए थे?
2: जी जी जी जी जी।
0: अच्छा आपने याद रखा
2: है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके जरिए आपसे बात हुई। वैसे तो पहले मैं बात करता रहता था लेकिन बीच में मेरी कुछ काम ऐसे आ गया कि मेरी बात नहीं हुई आपसे ज्यादा।
0: बिल्कुल ठीक है जी।
2: क्या नाम है अपना? रहमान अनवर साहब। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने आरजे साहब, माशाल्लाह
0: बेस्ट ऑफ द बेस्ट आरजे, टॉप ऑफ द टॉप आरजे, ज़ियान
2: टॉप ऑफ द, यस यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तीनों के शो तो मैं बहुत रेगुलरली सुनता रहा हूँ।
0: सर आपकी मेहरबानी।
2: हाँ जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त।
0: सर मुझे कोई गाइड करेंगे हसद में और मुकाबले में क्या फर्क है?
2: हसद और मुकाबला
0: जी,
2: ये हसद और जो है ना, ये क्या नाम है, हसद और मुकाबला
0: जी।
2: हसद वो होता है जो किसी को देखकर आप चले यार इसके पास ये क्यों है मेरे पास नहीं है। मुकाबला वो होता है जो एक दूसरे से बढ़ने, एक दूसरे एक से बढ़ने के आगे चाहत हो आप बढ़े।
0: बिल्कुल
2: ठीक है। हाँ यार मैं भी आगे जाऊं।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: वो एक होता ना, एक खिलाड़ी है क्रिकेट का, उसने अगर 100 किया तो दूसरा कहता है यार इसने 100 किया मैं 150 स्कोर करूं तो बात बनती है।
0: बिल्कुल ठीक
2: है। ये होता है मुकाबला। और जेलसी वो होती है जो आप किसी को देख के जेलस होते हैं, उसकी कामयाबी को आपके आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते, ये जेलसी है।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: और ये हसद है। हसद हसद को तो अल्लाह ताला ने भी नापसंद कहा है और कहा है कि ये ऐसा है जैसे सूखी हुई लकड़ी को जो आग लग खा जाए,

हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:14, 8 जुलाई 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें मैंने सवाल आपके सामने रखा कि कंपटीशन और जेलसी में क्या फ़र्क है। अपेरेंटली बड़ा आम सतही सा सवाल है, लेकिन देखिए मौजू या सवाल, मेरी तो कोशिश होती है आपके सामने वो रखा जाए जिसको मैं महसूस करता हूँ, जिसका ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी से है, जिसमें आए दिन हम कहीं ना कहीं इससे दो चार रहते हैं और हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों का दारोमदार इन्हीं पे कहीं ना कहीं होता है। कुछ एहसास हमारी ज़िंदगी में ऐसे पाए जाते हैं जिनसे हम चाहकर भी दूरी इख्तियार नहीं कर पाते और जो हर लम्हा हमें घेरे रखते हैं और जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के रास्तों का तायुन होता है। हमारी चाहतें, हमारी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, हमारे मंजिलों के रास्ते बदलते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है फियर का, खौफ का। और खौफ के लिए अमल दखल, उसमें कंपटीशन भी है, उसमें जेलसी भी है, हसद और मुकाबला दोनों पाए जाते हैं। और इन्हीं दोनों एहसास पे आपका, मेरा, हम सब का फ्यूचर, चाहे आप किसी के साथ ताल्लुक की बात करें, किसी के साथ रिश्ते की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, या कोई काम कारोबार या नौकरी की बात करें, या कोई और सिलसिला उठा लें, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपके और मिलने वाले ताल्लुकात होते हैं, आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास आजकल चल रही है यहाँ पे इंटर्नशिप वहाँ पर। हाँ, जेलसी और हसद एक ही चीज़ है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे पास यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, यंग जनरेशन है, जेन ज़ी है, उन्हें मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, कुछ लोगों में फियर पाया जाता, कुछ लोगों में सेंस ऑफ कंपटीशन है, फियर को आगे से सब कैटेगराइज करें, और किसी में जेलसी भी नज़र आ रही होती है। ये चीज़ें बहुत सारा आपकी ज़िंदगी पे असर डालती हैं, बहुत ज़्यादा। एक लाइन मैं यहाँ पे कहूँगा और उसके बाद फिर आप लोगों से मैं कॉल्स लूँगा और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, मैसेजेस भी आप लोगों के शामिल करूँगा। एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि जेलसी और हसद जो है उसका ताल्लुक बाहर दूसरों पर निगाह रखने से है, और मुकाबला कंपटीशन का ताल्लुक अपनी जात के ऊपर नजर रखने से है। एनीवेज, आप मुझे जरूर गाइड करें, आप भी बताइए, और इसके लिए अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर, और मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101, 0422111001। एंड लाइव स्ट्रीम है मेरी, जिन लोगों ने आज पहली मरतबा सुनना शुरू किया या पहले कभी मौका नहीं मिला, तो RJ:DOX डॉक्स लिखें, सर्च करें और वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे भी कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरी पोस्ट FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पर भी आप आके कमेंट कर सकते हैं। आई एम गोना रीड सम मैसेजेस फ्रॉम 4471। अभी वहाँ से मैसेजेस मेरी परमिशन में पढ़ देता हूँ, जिन लोगों ने किए हैं उनकी मेहरबानी। मेहर फातिमा ने सलाम किया, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आसिफा, बीमार करबला के सदके सही, अल्लाह आपको सेहत और तंदरुस्ती दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहरबानी। मेहर कहती हैं, सर आपकी आवाज़ आना बंद हो गई, यकीनन अब आ रही होगी। अरबाई ने, पाकिस्तान तो फ़कत ख्वाब नहीं, ख्वाब की ताबीर भी है, तो फ़कत नाम नहीं, नाम की तकदीर भी है। अच्छा, सलाम मोहब्बत चांद, वालेकुम सलाम, क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। तबीयत और सेहत ठीक? यस, ऑल वेल। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपका, हुस्न समात है, बहुत हसीन चेहरा आपको लगता है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरी यही दुआ आपके लिए, हमेशा सलामत रहें, बहुत अच्छे हैं आप, आपको लगता है मेरी

0: हर दुआ में शामिल रहते हैं आपकी मेहरबानी। रिमशा है, क्या हाल है डॉक्स भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आप खैरियत से हो। बिस्मा आजम फ्रॉम लाहौर, वेलकम एंड थैंक यू, आप आते हैं हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप सुनती हैं। मैं भी जेलस हो रही आज कल बहुत के मुझे क्यों नहीं मिल रही परमिशन। चलो कोई नहीं, फिर सही अगला कोर्स सही। सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम ज़ारा फ्रॉम अटक, थैंक यू ज़ारा फॉर योर मैसेज, वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं जेलसी में ये होता है कि भाई फला बंदे के पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। कंपटीशन में ये कि भाई अगर उसके पास ये चीज़ है तो मैं भी मेहनत और दुआ के साथ हासिल कर सकता हूँ और उससे बेहतर हासिल कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन है। ये आती कहाँ से है जेलसी, होती क्या है और मुकाबला क्यों होता है, थोड़ा सा इस पर गौर करना है, क्योंकि ये तो है उसकी डेफिनेशन। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको या मुझे अपनी ज़ात को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का मौका मिल जाएगा, आपको और मुझे अपने आप को बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिल जाएगा, हम बेहतर अंदाज में ख़ुद को तरतीब दे पाएंगे और ऐन मुमकिन है आप और मैं शायद इन चीज़ों से बेहतर अंदाज से लड़ सकें और ख़ुद को बेहतर इंसान बना सकें। वो मुझे याद आती है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के गुफ्तगू कि ज़िंदगी तो एक बेहतर इंसान बनने का अमल है, तो जाबिर बिन हयान से उन्होंने कहा तो आपने और मैंने तो बेहतरी का सफ़र गुजारना है, कैसे बनना है यही चीज़ें हैं। ट्रस्ट में बाहर की जो चीज़ें हैं ना, टेंजिबल जो होती हैं, मूवेबल एसेट्स जो होते हैं, गाड़ी है, बंगला है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स, ये मैटर ही नहीं करती। व्हाट मैटर्स जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर के एहसासात हैं, मेरे अंदर के एहसासात, आपके अंदर के एहसासात, ये हमेशा से मैटर करते थे, यही मैटर करते हैं। पैसा आ जाने से, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत मिल जाने से आप अच्छे इंसान के तौर पे याद किए जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान बन जाएं, आपको या मुझे अपने जज्बात और एहसासात को काबू करके अपनी ज़बान का बेहतर इस्तेमाल आ जाए, तो ये गैर मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है कि आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे याद किया जाए, आपके ताल्लुकात हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका काम कारोबार हो, हर जगह आप कामयाब हो सकते हैं। और एक इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसके ताल्लुकात और उसके रिश्ते बेहतर हों। अस्मा है, बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, थैंक यू वेरी मच अस्मा, हमेशा खुश रहें, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। सनाउल्लाह फ्रॉम भेरा, मेहनत कर हसद न कर, ये तो ट्रक की तहरीर सुना दी आपने। अच्छा जी, आबगीन, दो लोगों के दरमियान तीसरा आएगा तो कंपटीशन होता है, उसको आने दें, बर्दाश्त भी करना चाहिए। भाई मेरी अगर जाती राय पूछे दो में तीसरा आए तो भाई मैं तीसरा अगर आ जाए तो मैं वहाँ से निकल जाना पसंद करूँगा, मैं चाहूँगा दो ही रहें, तीसरा एग्जिस्ट ना करे, वो नहीं, वो आ गया तो मेरा जाना बनता है, मेरी जाती राय ये है। अली हैदर फ्रॉम मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसद आप तब करते हैं जब वो काम आप कर ना सकते हो, और मुकाबला आप तब करते हैं जब वो काम आप कर सकते हो। आसम हाउस, आपके बात अच्छी बात है, अच्छी बात की है। शकील अहमद लाहौर से, डियर डॉग सलाम, वालेकुम अस्सलाम, और सबको सलाम दिया। आफ्टर 7 वीक्स लिसनिंग योर शो, हाउ आर यू सर, मैं भी इतने ही अरसे बाद आया हूँ। ट्रैक कहते हैं, यू प्ले द ट्रैक, इंतजार, प्लीज टेल द नेम ऑफ सिंगर, या आप सर्च करेंगे मैक्स सॉन्ग स्टूडियो, वहाँ की ये है आपको पब्लिकेशन, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। वहाँ पे महाजबीन ने ज्वाइन किया, आयशा सुल्तान ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। ना गने ठीक कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
1: सर जी, शाह फैसल अस्सलाम वालेकुम।
0: आइए शाह फैसल साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर जी?
0: मैं भी अच्छा हूँ।
1: अच्छा, अभी तो कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूँ,
0: बस मैं बयान बदल गया।
1: जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है।
0: शाह जी, कॉफी है? कॉफी मिलेगी, आधा कप? हाँ जी जी जी सर फरमाइएगा।
1: हाँ बस
0: मौसम
1: हसद कैसे? और मुकाबले की बात हो रही है।
0: हाँ जी हसद और मुकाबला,
1: अगर सोच दोनों एक ही चीज है, अगर सोच मजबूत हो तो मुकाबला हो, अगर सोच मनफी हो जाए तो हसद बन जाता
0: है। ये भी अच्छी लाइन है, खूबसूरत। और इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजह क्या है?
1: वजह है कि ये बस अल्लाह के काम में अगर हम दखल अंदाजी करें तो उसको हसद कहता है, हसद कहलाता है।
0: अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करें तो हसद कहलाता।
1: इसको ये क्यों दिया है?
0: ओके
1: क्यों क्यों की बात आ जाती है कि इसको ये क्यों दिया है?
0: ठीक है
1: हाँ, तो बाकी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ अपने बंदे से।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: मगर जब असद से मना फरमाया गया तो आखिरत के लिए भी उसमें बेहतरी है और दुनिया के लिए तो बेहतरी बेहतरी है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: हम जो आजकल जो हमारी जितनी भी बीमारियां बन चुकी हैं, ये ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां ज्यादा हो गई है, ये सारा जितना भी क्या दर है बुगज असद की वजह से।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
1: तो वो जो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो 100% ठीक फरमाता है,
0: बिल्कुल बजा फरमाया।
1: कोई गुंजाइश नहीं है उसने गलत।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया सर आपने, थैंक यू वेरी मच आपने कॉल की,
1: बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा आबाद।
0: सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम। शाह फैसल थे मालाकंड से, इन्होंने कॉल की। 11:26 हो गए। क्वेश्चन ये है, हसद और मुकाबला में फर्क क्या है और इसकी वजूहात क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम।
2: बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक
0: जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी।
2: तो माशाल्लाह पहचान लिया होगा जी आपका गुलाम।
0: नहीं मैंने नहीं पहचाना, तारुफ करवाइए।
2: अच्छा जी, मोहब्बत का गुलाम मोहम्मद शहजाद।
0: मोहब्बत कौन है?
2: मोहब्बत आप है, मैं गुलाम हूँ।
0: मैं मोहब्बत नहीं हूँ, मैं आज डॉक्स हूँ। आपने कहीं गलत कॉल किया।
2: अच्छा साहब भी आप
0: नहीं है, मैं मोहब्बत तो नहीं हूँ।
2: नहीं तो आपने काफी मंगा ली है, तो मेरे वास्ते चाय नहीं थी मंगानी। क्या बात है उस दिन की, मैं चाय नहीं भूल रहा।
0: क्या बात है सर, सुनाए कैसे हैं आप? खैरियत से, मिजाज अच्छे हैं?
2: हाँ आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। आप
0: घर बार सब खैरियत है? मुझे बताएं, कभी जिंदगी में किसी से हसद किया?
2: जी देखे, जो जिंदगी से हसद करता है ना वो कामयाब नहीं होता।
0: जिंदगी से हसद नहीं करता, जिंदगी में कभी किसी से हसद किया आपने?
2: जी किया था एक दफा।
0: किससे?
2: बस वो भी ये कहा था, उसे असर किया था मैंने।
0: वो क्या वजह थी? दोनों एक ही किसी खातून को पसंद तो नहीं करते थे?
2: नहीं एक का ये नहीं है बात, जो हमारे दोस्त भी होते हैं ना।
0: अच्छा,
2: वो भी मोहब्बत के काबिल होते हैं ना।
0: अच्छा,
2: तो उससे बहुत मोहब्बत करता था वो। आपने जब बात की ना, तीसरा आ जाता है तो फिर बहुत जलन होती है जी, सीने में भी जलन होती है, खाना भी हजम नहीं होता।
0: उस वक्त बर्नॉल वगैरह या कोई इस तरह की कोई नहीं थी मेडिसिन अप्लाई करने के लिए, जलन के थोड़े तासुरात इफेक्ट रुक जाते?
2: वो स्टेप्सूल खाते तो फिर जलन सही होता।
0: वो तो गले खराश दूर होती है।
2: माशाल्लाह जी, अच्छा माशाल्लाह शो। देखे जी ये जलन जो है ना, ये किसी के नहीं करना चाहिए, और जो आप पे मुश्किल आ जाए ना, जो हालात आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया सर।
2: मुकाबले से ही आगे बढ़ता है, जो असर करता है ना वो आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे ही रह जाता है।
0: जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
2: मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए।
0: हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग यार, इफ यू कुड हिट द पॉइंट, इफ यू कुड रीच द डेप्थ। अभी यहाँ पे मेरे पास मैसेज था, आयशा सुल्तान हमारे पास इंटर्नशिप कर रही है, लेट मी रीड हर मैसेज। क्या फरमाती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हसद और मुकाबला में फर्क यह है कि दूसरों को देख कर जलन का एहसास होना कि दूसरे के पास ये चीज क्यों है, और ये हसरत करना कि उससे ये चीज छिन जाए। मुकाबला ये होता है कि दूसरे के प्लस पॉइंट देखकर खुद को बेहतर करने की कोशिश करना, उनसे आगे बढ़ने की सोच रखना। बाकी अगर दो अफराद के माबैन तीसरा शख्स आ जाए तो बस जेलसी का ही एहसास होता है। इसमें इंसान फितरी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयशा आपको नहीं लगता ये सिचुएशनल होता है? अगर तो इकरार हो चुका हो तब जेलसी है, अगर इकरार ना हुआ हो तब कंपटीशन है, क्या ख्याल है आपका? और फिर कहते हैं सर बिल्कुल दुरुस्त, इंटर्नशिप में हम सब में कहीं ना कहीं दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन हम सब से एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग द इंटर्नशिप, मैनेजमेंट पुटिंग इट्स बेस्ट एफर्ट। वाजिबीन ने सलाम किया, वालेकुम सलाम सर, कहाँ गायब रहते हैं, मैं यहीं पे हूँ, बस थोड़ी सी मसरूफियत थी और मुहर्रम के अय्याम थे ज़रा इस वजह से। आज डॉक्स वाइब्स ने लिखा कि सोचूं मेरी कॉल क्यों नहीं मिल रही, ब्लॉक करके बैठे थे। और फिज़ा ने पूछा 101 वाइब्स शो कब से स्टार्ट होगा, आप देखें ये कब से रहमान साहब भी गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। कॉल ले रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
3: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसे हैं डॉक साहब?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
3: अल्लाह का शुक्र, इतने दिनों बाद आपके शो में कॉल मिली है।
0: कौन है हमारे साथ?
3: फरा कराची।
0: हाँ जी फरा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं
3: जी? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कहना चाहें?
3: टॉपिक पे बात करनी थी
0: जी। टॉपिक
3: अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंपटीशन और जेलेसी, कंपटीशन जो है ना वो एक हेल्दी वर्ड है, और जेलेसी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव, उस नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, लेकिन कनेक्टेड हैं दोनों एक दूसरे से। कभी कभी हम जेलेसी में कंपटीशन करते हैं और कभी कभी कंपटीशन के अंदर जेलेसी आ जाती है।
0: कभी कभी जेलेसी में कंपटीशन होता
3: जी? होता है।
0: वो कंपटीशन कौन सा होता है?
3: वो जो जेलेसी में कंपटीशन हो रहा होता है ना, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास कुछ है, आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उस तरफ चले जाते हैं कि आप ट्राई करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव जो माइंड अप्रोच हो जाती है ना, वो ये हो जाती है कि मुझे नहीं मिल रहा ना तो इसे भी नहीं मिले, ठीक है। और अगर जो है ना फिर आप उसमें क्या करते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रिक्स टेक्निक्स लगाते हैं, ये जो है यूजुअली ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा होता है, कोई किसी को स्पेस नहीं देता आगे बढ़ने के लिए।
0: क्या
3: अगर आप देख रहे हैं कि आपसे ज्यादा एलिजिबल इंसान मौजूद है फॉर द सेम टास्क, तो आप हम्बली खुद उसको ऑफर कर सकते हैं, ओके इफ यू आर अवेलेबल फॉर दिस टास्क एंड यू आर बेटर देन मी, तो आप इसको करके देख लीजिए।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: और समटाइम्स क्या होता है कि आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्पेशली पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स
0: जी,
3: या टीचर्स में भी इंपैक्ट होता है, स्टाफ रूम पॉलिटिक्स भी होती है कि कोई टीचर जो है किसी प्रिंसिपल की नज़र में ना आ जाए, या अपर हायरार्की नोट ना कर ले कि शी इज़ बेटर देन दिस एंड दैट, तो वो जो है ना यहाँ पे आके ना वो कॉम्पिटिशन जो होता है ना जेलिसी के अंदर वाला जो होता है वो चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। और वो जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है वो ये होता है कि आप कहते हैं ओके ये चीज़ ये बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो मैं भी कोशिश करके देख लूँ। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप एक चीज़ पर यकीन कर लें कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपके नसीब में लिखी है तो मिल जाएगी, नहीं लिखी तो आप वो चीज़ ढूँढें जो आपकी है, ठीक है। आप फिर रॉन्ग ट्रैक पर मत जाएं, आप फिर अपना ट्रैक जल्दी जो है ना उसको समझ लें तो बेहतर है, वरना टाइम।
0: बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच फरा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जेलसी में कंपटीशन भी होता है। बड़ी अच्छी आपने लॉजिकल बात की, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।
3: ओके और
0: आपकी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग थैंक यू वेरी मच
3: अल्लाह
0: सुलेमान चांडिया बलोच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम योर टॉपिक इज डिफरेंट यस माय टॉपिक इज डिफरेंट और इसको थोड़ा सा ये कंपटीशन और जेलसी पे जो बात कर रहा हूँ मैं इसके रीजन पूछना चाह रहा हूँ देखे नफ्सियात की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना नफ्सियात पता क्या कहती है व्हेन यू लुक द आउटर वर्ल्ड अब बाहर की दुनिया में निगाह दौड़ाते हैं और ख़ास तौर पे अपने हल्का अहबाब में जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको जब आप देखना शुरू करते हैं किसी को खुश देखते हैं किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तरक्की करता हुआ देखते हैं और उस सूरत हाल में जो आपके अंदर थॉट प्रोसेस जो आपके ख्यालात आपके वो जो उलझना शुरू होते हैं उस उलझन से आपके अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती है वो बेचैनी की कैफियत आपके पूरे निज़ाम को कुछ लम्हात के लिए रोक देती है यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स आप सोचना शुरू कर देते हैं चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ एंगल से और अपनी ज़ात को और उसकी ज़ात को सोचना शुरू करते हैं और मुकाबला अपनी ज़ात का उसकी ज़ात से करना शुरू करते हैं वहाँ पर जब इस तरह का कंपटिशन आपका चलना शुरू होता है और उसमें फिर वो बेचैनी आपके अंदर इस चीज़ को जन्म देती है जहाँ पे आप उसकी कामयाबी की वजूहात और उसकी एफर्ट्स को इग्नोर करते हुए उसके अंदर ये ढूंढना शुरू करते हैं कि ये इसमें खामियां मौजूद हैं आप खामियों पर निगाह डालते हैं तो तब वो नफ्सियात कहती है ये हसद आपके अंदर उजागर होना शुरू हो जाता है और कंपटीशन जो है इसके बारे में तो नफ्सियात कहती है ये एक जज्बा है ये जज्बा जब आपके अंदर जागता है तो आप किसी की खामियां तलाश नहीं करते आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसने ये फला काम अगर किया तो कैसे किया सो बेचैनी की कैफियत और एक जज्बे का जाग जाना इससे बन जाती है यही दो फीलिंग्स एक कहलाती है कंपटीशन और एक कहलाती है जेलसी अब एक सिचुएशन में आपको देता हूं एक शख्स है दुनिया में आप अपने आप को देखें भूल जाए इर्द गिर्द की दुनिया को भूल जाए किसी और को जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि इफ यू वर ऑल अलोन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ अगर आप अकेले महज सिर्फ यहां पर आप हो मेरे सामने इस वक्त सुलेमान चांडियो बलोच साहब है इनका मैसेज है या जो जो सुन रहा है आप सोच रहे दुनिया में कोई भी नहीं है सिर्फ आप हैं तब आपके अंदर क्या जेलसी या कंपटीशन इस तरह का कोई जज्बा पाया जाएगा कौन सा जज्बा पाया जाएगा ये आप मुझे बताएं वक्त हो चुका है 11:37 8 जुलाई 2026 का सर ने FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्स अब मैंने सवाल को उस जानिब ले आया जहाँ पे लाना चाहता था मैं सजाद अली लाडला का मैसेज आया थैंक यू वेरी मच भूल जाए सबको क्योंकि जब आपके अंदर की दुनिया जागती है ना या मेरे अंदर की दुनिया जागती है उसमें सिर्फ मैं होता हूँ उसमें सिर्फ आप होते हैं आपके अंदर की दुनिया में आपकी हुकूमत है मेरे अंदर की दुनिया में मेरी हुकूमत है जिस सिचुएशन को जिस सूरत हाल को मैं जिस तरह से चाहता हूं उस तरह से मोड़ लेता हूं इसीलिए तो मेरे अंदर ये अगर मगर लेकिन क्यों के सवालात आते हैं और फिर मैं उस तरह की सूरत हाल तश्कील देता हूं अपनी तखय्युलाती दुनिया में अगर उसने ये कहा होता अगर ऐसे हुआ होता अगर वो ये ना करता अगर मैं ये करता ये अगर मगर आपके अंदर होता है और आप फिर सिचुएशन को तश्कील देते हैं तश्कील देने के बाद जिस तरह से आप चाहते हैं मामलात को बना लेते हैं तो आप फिर सोचें कि बाहर की दुनिया में भी आप एक और अकेले हैं तो आपके अंदर कौन सा जज्बा पाया जाता जेलसी का कंपटीशन का कौन सा मदीना बिलाल ने मैसेज किया FM 101 लाहौर वाली पोस्ट पे सलाम किया वालेकुम अस्सलाम अकबर खान साहब कराची से सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मेरा बड़े अच्छे से लिसनर हैं बड़ा अच्छे खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले लेकिन उनसे पता नहीं एक अरसा हुआ गुफ्तगू नहीं हुई कॉल पे खारिया से सुन रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साद पाशा गुजराती थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अकबर खान साहब ने वसीम साहब को, जया अंजम साहब को, जैनब को और जूनिया, जूनिया कौन है हमारे पास, वायरल होगी कहीं, नायाब शीबा सबको सलाम दिया। शमसी रेडियो लिसनर क्लब की तरफ से आप सुन रहे हैं और सब माशाल्लाह इतना बड़ा आपका लिसनर क्लब हो गया, सबके नाम लिखे हैं, जितने बड़े बड़े कॉलर्स आते हैं पुराने, थैंक यू वेरी मच। आज की बात कहते हैं, बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो सारे चेहरे वाजे कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक देता है। गोना टेक अनदर कॉल, और जो सुन रहे हैं मैं चाहूंगा, अगर आपने मौजू पे बात नहीं करनी यार, मिट्टी पाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जो दिल में आता बात करें, कोई मैसेज करना चाहता है, कोई किस्सा, कोई कहानी, जैसे मुझे एक मैसेज आया कि ऑन एयर नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, इस तरह के और भी मैसेज आते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछनी हो आई विल डेफिनेटली आंसर, और शेयरिंग केयरिंग करके कुछ भी। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर, और इसके अलावा FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, ये दोनों जगह पे मेरी पोस्ट होगी, एंड RJ Space DOX लिखेंगे, मेरी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग योर कॉल 0422111001 0421111001। ओके कॉल लेते हैं, हेलो, वालेकुम अस्सलाम,
4: अफजल जावेद खान इस्लामाबाद जी,
0: कौन साहब बोल रहे हैं दोबारा बताइएगा,
4: अफजल जावेद,
0: अब्दुल जावेद साहब कैसे हैं सर, आप कैसे हैं,
4: आपके मौजूद के ऊपर बात
0: सर, बिल्कुल कीजिए
4: सर, कहने का मतलब ये है कि दो के दरमियान तीसरे की आमद
0: जी,
4: ये तो इब्तिदा हुई थी अबलीस से,
0: अच्छी बात किया,
4: अबलीस तीसरा दाखिल हुआ, हसद किया, जलन हुई, उसके तकदीर वाला और भी क्या कुछ समझते हुए इनकार किया, तो हसद पहली मरतबा रब करीम ने हसद को इंतहाई नापसंद किया,
0: बिल्कुल ऐसी ही थी,
4: मुकाबला वो है कि हैदर करार ने खैबर के मैदान में किया,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जहां पे आके ललकारा गया और कहा कि मुझसे भेजो कोई मेरा मुकाबला कर सके, और आने वाले ने समझा कि वो सबसे बेहतर है, पर उसका मुकाबला बेहतरीन ने आके
4: उन्होंने हरा दिया, बेहतर सबसे वही थे,
0: हाँ बिल्कुल ऐसी,
4: आज तक वो आवाज गूंजती है हर जगह से,
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी,
4: हजर करार के नाम के ऊपर से निशानी हाजिर मिलता है,
0: बिल्कुल ऐसी है, एनीथिंग
4: मुकाबला करना सर
0: जी, जी बताइए, जी जी आ रही है,
4: आप भी फरमा रहे थे,
0: जी जी मैं सुन रहा हूँ,
4: बस मैंने मुकाबले की
0: सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके बड़ी अच्छी मिसाल दी आप, एक प्ले करते हैं गाना, इफ यू मिस समवन, अगर दो में तीसरा है,
5: हिजरत
0: तेरे बगैर, विदाउट यू इरफान सादिक,

यार कमाल ही है भाई, मुझे बड़ा मजा आया, ये तो बड़ी मजेदार है, बहुत खूबसूरत है। आबेश थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, ये मुझे अलहदा से भी आप भेज दीजिए। परामल रुक एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आंखों पर, मुझे मुझ पत्थर की औकात है क्या। और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है। अल्लाह।

0: कमाल
1: हिजर में दिल बहुत बिखरा तेरे बगैर। तेरे मेरे बीच जमाना पड़ता है, दिल को कितनी बार बताना पड़ता है। ठहर गई है बात मुकद्दर पर आकर, खुद को ये अक्सर समझाना पड़ता है। सोचों को कब कैद कोई कर पाया है, लेकिन खुद को तो समझाना पड़ता है। रास्ता हो दुश्वार या राही अनजाने, इस जीवन के साथ निभाना पड़ता है। खामोशी के डसने का डर हो जश्नम, ऐसे में खुद शोर मचाना पड़ता है। मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी यादें हैं, यादों से दिल को बहलाना पड़ता है। तेरे मेरे बीच जमाना पड़ता है। कमाल, बहुत आला, वाह जी वाह, दोनों आज बहुत आला। हसन अली, वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच हसन, आप खैरियत से हो, ठीक हो? एंड हु एल्स इज हियर? रहमान भाई प्रोग्राम करेंगे, आई हैव नो आइडिया, इज नॉट हियर, गोना टेक कॉल। हसद और कंपटीशन पे बात हो रही है, जहाँ पे मैंने एक सिचुएशन दी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
1: बिस्मा, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। आपका शो एंड हो गया? बस
1: नहीं नहीं ऑन एयर हैं आप।
2: अच्छा, मतलब अभी शो में कॉल मिली है मेरी?
1: जी जी, शो
2: टाइम हो गया 12। अच्छा,
1: अभी नहीं हुए 12, जिन्होंने आना है मेरे बाद शो करने वो भी तशरीफ नहीं लाए वो आएंगे दोपहर।
2: अच्छा, वो तो आते ही नहीं है, बीमार रहती हैं, उनका कोई इलाज नहीं है आपके पास? नाइट थेरेपी करते हैं आप तो वैसे?
1: अच्छा, मैं नाइंसाफी करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है नाइंसाफी।
2: तो उनकी भी करें जो आपके बाद आते हैं, वो तो आती ही नहीं, बहुत छुट्टियां करते हैं वो।
1: अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपके चाहने वाले मुंतजर रहते हैं।
2: नहीं, वैसे मैं इतनी देर नहीं जाती, मैं सिर्फ 12 बजे तक ही जाती हूँ।
1: अच्छा,
2: तो एक दफा ऐसे हुआ था, मैं कॉल आपको
1: नहीं, रहमान बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, रहमान भी अच्छा शो करता है, कभी सुने?
2: हाँ, तो हम सारी जाती रही, वाह, सुबह हम उठना होते है, हमारी रूटीन और है, सुबह की टाइम उठना होता है हमने।
1: ओके जी, गलती हो गई, माफी चाहूंगा मैं।
2: और कैसी जा रही है इंटर्नशिप? और
1: बहुत अच्छी।
2: अच्छा,
1: बहुत अच्छी।
2: अच्छा ठीक है, उस दिन वे मेरे मैसेज किया और मेरे मैसेज पर रिप्लाई किया वो आयशा सुल्तान ने, तो बस मैंने कहा कि बस हो गई, अब मैंने नहीं इनसे बात करनी, परमिशन ख़त्म। वो मैंने भूखा दाल का वो प्रोग्राम शुरू किया हुआ था हम, तो मेरी तो बस होगी। दूसरे दिन मैंने कहा है मैं तो ऐसी मर जाऊँगी, ये तो कुछ भी, इनको तो कुछ भी फील नहीं हो रहा या कोई असर ही नहीं हो रहा। तो फिर रात को जब आधी रात हुई, सब सो गए, तो मैंने कहा चलो उठो
1: कुछ खा
2: लो, तुम सुबह तक मर जाओगे। मुझे नहीं मरना, अभी मर के सीधा जहन्नुम में जाऊंगी, अस्तगफार करना है, बहुत कुछ करने में तो डर रही थी कि है मर गई तो सीधा, मतलब मैं, मेरे जैसे लोग तो सीधा जहन्नुम में आ चुके हैं, ये कैसी इंटर्नशिप हो रही है यहाँ पर?
1: वाह, नई इंटर्नशिप करने पहुंच जाना आप।
2: और यहाँ वहाँ पे पता क्या मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं 29 जून को मेरा पेपर था फर्स्ट, ठीक है,
1: okay.
2: तो फोर्थ ईयर का मेरा पहला पेपर था और मेरा मिस हो गया, मेरा सारा फोकस इधर था, कम्बख्त ये इंटर्नशिप की तरफ। तो वो मेल आई थी वो इंटरव्यू वाली, तो बस उसमें मैं, वो कहते हैं आखिरी दम तक हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा मैं आखिरी सेकेंड तक कोशिश करूँगी, 9 बजे तक मैं कहती रही पापा कुछ नहीं होता ये वो, पापा कहते वहाँ पे ज़्यादा बॉयज होंगे, वहाँ पे मैथ कम्युनिकेशन के वो जो होते हैं मैथ कॉम के स्टूडेंट्स होंगे, बेटा आपका क्या काम ये वो।
1: यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, मैं बड़ा इस चीज़ पे खुश हूँ देखकर, यहाँ पे बाकायदा एक दो मैंने देखा है लड़कियों को, वो बाकायदा नकाब करके आती हैं पूरा कवर्ड एंड स्टिल देयर हेयर।
2: वीडियो देखी, मैंने कहा अपने पापा को दिखाऊंगी, जो ये कह रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब थोड़ा सा अपने अंदर का माहौल भी ठीक होना चाहिए ना, कि मतलब आप लोग कहते हो हम ठीक हैं, तो पता नहीं वो भी ऐसी ऐसी मसाले देते हैं इन लोगों से, हम नहीं जीत सकते, ये मैंने हिसाब लगा लिया है, हार जाने बेहतर है। इनको कोई भी बात को ना हर बात का जवाब होता है इनके पास, बंदा उनसे बात करे जिनके पास कुछ जवाब नहीं है, इनके पास हर चीज का जवाब होता है। इनको मैंने ऐसे बोला हाँ आप देखो, मैं बता नहीं वाली कैसी कैसी मसाले और ये वो, मैंने कहा
1: अभी ये सारा देख के मुझे ये बताओ, आपके अंदर जेलसी आती है, कंपटीशन की फील आती है, आपके अंदर ये थॉट आता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, या फाइन अब दोबारा जब मौका मिलेगा मैं भी करूँगी?
2: हाँ मेरे अंदर कंपटीशन का आता है, जैसे कि अभी मैं कॉल कर रही थी, सबसे पहले तो मुझे जेलसी होती है, सबसे पहले मैं जेलस होती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मुझे जेलसी होती कि यार हम देखो कॉल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये कौन लोग है, कैसे कर लेते हैं, हर शो में आ जाते हैं आपकी कॉल करके ये वो, तो मुझे पहले जेलसी होती है, उसके बाद मैं कहती हूँ नहीं मुझे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरा मैं क्यों नहीं मतलब कामयाब होती, वो इस वजह से कि मैं थक जाती थी, इतना सांस लेती इतना लंबा, मैं तो हाँ थक गई हूँ मिला मिला के कॉल, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, तो फिर जब मैं कंपटीशन के मूड में आती तो मेरी मिल ही जाती है। देखो मैं लगी हुई थी, मैं पता क्या करी थी, कैसे मैंने मिलाई है कि जब वो लड़की बोलती है कि बिजी है तो मैं उसको फटाफट उसको कट करके फौरन फिर मिला देती हूँ, फिर ऐसे करके कब से कर रही थी तो आप जाकर मिली है, तो मैं थक गई हूँ, साथ में कुछ लॉन्ग मैं इस वजह से बात करती हूँ कि एक बंदा इतना थक हार के आता है, जब अपनी मंजिल तक पहुँचता है सांस तो लेता है, थोड़ी थकावट दूर हो जाए फिर मैं कहती हूँ अभी आराम से जाऊँगी, तो ये सीन है। तो बस और कंपटीशन वाला है कि नहीं, अब मुझे मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम चलो कोई बात नहीं।
1: चलो जबरदस्त है, जबरदस्त है, दिल
2: छोटा नहीं करते आप
1: जी,
2: मतलब आप सोते कब हैं, आप सारी रात जागती हैं क्या?
1: बस ऐसे ही है, जागता सोता रहता हूँ।
2: और ये आप कॉफी पीते हैं तो क्या मतलब, ये कॉफी आपको साइड इफेक्ट नहीं करती?
1: बहुत साइड इफेक्ट, कॉफी
2: पीते हैं
1: बहुत
2: अच्छा?
1: बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, मेरा खून पतला कर देती है, मेरा दिमाग तेज कर देती है, मेरे अंदर की सोचें जाग जाती हैं, तख़य्युलाती ताकत मेरी जाग जाती है, ख्यालात आपस में शदीद तरह से टकराते हैं, और इस तरह से टकराते हैं अंदर बहुत सारे तख़य्युलात बिजली की तरह से चमकते हैं, कुछ बिजलियाँ मेरे दिल पर आके गिरती हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें आके उभर आती हैं, फिर बादल बरसने लगते हैं, मजीद ख्यालात ऊपर से नज़ूल की शक्ल में आने लगते हैं।
2: अच्छा, मतलब आप बड़ी फहर से बता रहे हैं सब कुछ, मीन के आपको मजा आता है
1: बहुत,
2: सब कुछ होता है आपके साथ
1: बहुत बहुत मजा आता है।
2: अभी तो मजे के आदि हो गए, क्या बात है।
1: थैंक यू वेरी मच बिस्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
2: अच्छा अगर मैं वैसे ही मिलने के लिए, वो तो हम आ सकते हैं ना?
1: जी जी आप आ सकते हैं,
2: नहीं कहेंगे कि आप क्या लेने आ गए?
1: नहीं नहीं बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं।
2: ठीक है, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे दो दिन आप क्लासेस कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल ऐसे ही,
2: और दोनों दिन स्टूडेंट्स आते हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 100 हो गए हैं क्या?
1: नहीं हमने रखी 50-60 तक।
2: अच्छा मैंने कहा मुझे, मैं जब मेरी कॉल नहीं, उस दिन मैंने मैसेज किया था आपको, शायद ट्रांसमिशन खराब थी, मैसेज मैंने किया था तभी तो आयशा ने मुझे बोला था, जब आयशा ने मुझे रिप्लाई किया मेरे मैसेज पे तब फिर से मेरी उम्मीदें जाग उठी, मैंने कहा नहीं यार मुझे जाना है।
1: आयशा बहुत हमारी एक्टिव इंटर्न है, बहुत अच्छी यहाँ पे इंटर्न है और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हर चीज में।
2: अच्छा वो मुझे कह रही थी कि आप भी आओ ये वो, फिर मैंने कहा नहीं, वो कहती हमें बहुत मजा आया, मेरे को यार मुझे ऐसी बातें ना करो, मैं बहुत वो एक देखो मैं अच्छी हासी मेरी जान छूटनी थी, आखिरी साल का मेरा पेपर मिस हो गया, नेक्स्ट ईयर मैं सप्लीमेंट्री के पेपर में बैठूंगी, कौन करता है ये भाई, कौन होता है, कौन ऐसा होता है, तो देखो।
1: थैंक यू वेरी मच बिस्मा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।
2: थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, शाल असदी ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, और मेरा ख्याल है रहमान अनवर नहीं आए, तो चले वेट करते हैं। शाह जी रहमान अनवर साहब तशरीफ लाएंगे या नहीं लाएंगे ये ज़रा मुझे बताना है आप, तो उसके अकॉर्डिंगली चले। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा तो सिचुएशन ये थी कि एक शख्स अकेला है, यानी आप अकेले हैं, अब आप में सेंस ऑफ कंपटीशन आएगी या सेंस ऑफ जेलसी आपके अंदर ट्रिगर होगी, इस एक मुद्दे को समझना है। आपकी और मेरी ज़िंदगी का इन्हसार इसी एक चीज़ पर करता है, और समाजी फ़लसफ़ा जो है ना, जो सोशल फिलॉसफी जो है, वो इसके बारे में जब बात करती है हसद और कंपटीशन के बारे में बात करते हुए, सिर्फ इसे कंक्लूड इस तरह से करती है कि जहां आप अपना मुआजना दूसरों से करना शुरू करते हैं, यानी तराजू में एक तरफ खुद को रखते हैं और एक तरफ किसी और को रखते हैं, और वहां पर आप अपनी ही कीमत कम लगाना शुरू कर देते हैं, वो चाहे किसी तरह से भी। अगर आप महसूस करें हाँ बाकी सारे जिस जगह जिस सेटिंग में आप बैठे हैं वहां पे आपको लगे सारे आपसे पीछे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो भी आपने अपनी कीमत कम लगाई। और अगर आपने किसी को खुद से आगे जाना तो भी आपने अपनी कीमत कम लगाई। आप तसव्वुफ में अगर देखें ना, सूफी थॉट की तरफ अगर जाएं, सूफीज़म की अगर बात करें, सूफीज़म की इंटायरली डिफरेंट डेफिनेशन। सूफीज़म एक अलग ही दुनिया और एक अलग ही कैफियत है। कंपटीशन है ही नहीं, ये जो है यहाँ पे पाया जाता है ये वाला कंपटीशन है ही नहीं, और जेलसी का तो नामो निशान ही कोई नहीं है। वहां तो अपनी जात से अगर कोई शख्स बाहर निकले तो किसी और की तरफ देखे, और अपनी जात में भी वो उसको तलाश करता है जो उसकी जात का खालिक है। अपने अंदर के ना जाने कई जज्बात के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ना पड़ता है, और वहां पे वो जहां पे हजूम में भी बैठा शख्स होता है उसके बावजूद उसकी जलवत जो होती है हालत खिलवत होती है, लोगों में बैठकर भी वो किसी और दुनिया में पाया जाता है। तो अभी तक ये सिचुएशन जो है जो मैंने आपको दी है इस पे मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है मैडम? आप खैरियत से हैं? ठीक है,
0: मैं ठीक हूँ। मैं बलविनाश से बोल रही हूँ कराची से।
1: कैसी हैं?
0: मेरी किस्मत में ना एक्स्ट्रा टाइम है, अब आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ना, तो देखिए मेरी कॉल मिल गई।
1: क्या बात,
0: मुझे डायलिसिस सिर्फ इसी बात से होती है जब मेरी कॉल नहीं मिलती, बाकी मैं इन दोनों जज्बों से बहुत दूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख।
1: अच्छा चले,
0: मुझे बड़ा गुस्सा आता है, सबकी मिल जाती है मेरी क्यों नहीं मिलती, लेकिन आज रमशा की नहीं मिली, मुझे हैरत है, वरना उनकी तो जरूर आ जाती है। खैर बहरहाल आपका टॉपिक बहुत अच्छा है डॉक्टर, लेकिन मुझे, मैं आपको बाखुदा बता रही हूँ कि मुझे ना कभी किसी से जेलसी होती है, ना मैंने कभी किसी से हसद की। अगर पीछे से मुझे पता चलता है कि ये गए थे कहीं तो पीछे से ये कहा उसने होगा, मैंने कहा कहने दीजिए ना, मेरे क्या असर पड़ता है, खुद ही अपना दिल जला रहे हैं कहने वाले, मुझे तो कोई जलन नहीं है किसी से ना हसद है, मैं क्यों अपने आप को जलाऊँ। एक बात आपने बड़ी प्यारी की, वो तीसरे शख्स की या शख्स हो या खातून जो भी हो, जब वो बीच में आती है ना, बस चुपके से अपनी जगह से खिसक जाना चाहिए, बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी बात।
1: नहीं, खिसक जाना बेहतर है, अपनी इज्जत अपने हाथ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी बात कही थी। और ये कभी आपने जो अपना तारुफ पेश किया है पूरा रात भर का, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो चले अल्लाह ताला करे कि आप भरपूर नींद सोए और इसी तरह मेहनत करते रहे, दिख रहा है आपकी मेहनत से जो जो हो रही है सब नजर आता रहता
1: कोशिश,
0: है,
1: कोशिश है, कोशिश है, हम चाहते हैं
0: आप कामयाब हो,
1: कि हम सिखाएं यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा। जो हमने सीखा है वो पहुँचा के जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, और यही तो आपकी बातें हैं जो लोगों को मजबूर करती हैं, कोई आपसे बात कर ले, कोई मिलने आ जाए, कोई देख ले। अभी तो बड़ी तारीफें हो रही थी, वो तो मैं नहीं दोहराती चले, लेकिन आप हैं तारीफ के काबिल, बिल्कुल हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: थैंक यू मैडम, बड़ा अच्छा लगता है जब आप फोन करती हैं।
0: जी आपको अच्छा लगता है मुझसे पूछे कोई कि मैं कितनी मुश्किलों से या मेरी कॉल मिल जाती है, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में।
1: कॉल तो मिली ना,
0: अच्छी लगता है। अल्लाह का शुक्र है, कल जाने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन नहीं मिली थी कॉल, नहीं मिली
1: ज्यादा, तो फिर टॉप ऑफ द टॉप आ जाए।
0: हाँ वाकई इसमें शक नहीं है आपके साथ, मुझे तीनों आप लोग बैठे ना, रहमान और आप हैं और जिया।
1: रहमान फ्रॉडी है, रहमान आ तो गया है, इसकी वजह से हमारा वो नहीं चलता थी प्रोग्राम, और ये एक दिन भी नहीं आया, इसने मुझे कहा था जी हाँ वो इंटर्नशिप है मैं आऊंगा, एक दिन ये बंदा नहीं आया।
0: लेकिन बहरहाल वो जो छोटा सा क्लिप है मैं बार बार उसको देखती हूँ, बहुत हंसी थी, मुझे आप गुदगुदी करना चाह रहे
1: रहमान इनवर साहब आए, इनमें एनर्जी की कमी है, ग्लूको बिस्किट खा रहे हैं, ग्लूको बिस्किट बच्चों के लिए होते हैं, इनकी अभी बढ़ोतरी का अमल जारी है, अभी ये बढ़ोतरी के अमल से परवान चढ़ेंगे, और कितना परवान चढ़ोगे तुम, जिन बन गए हो। सवाल जो है, अब आए हो लेट तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। रहमान अनवर साहब तशरीफ लाए।
3: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आप सबके?
1: अच्छे मिजाज हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं।
3: मैं भी,
1: मैं ना अभी टेम्पो में नहीं आ पा रहा, गैप आया ना इतना। सवाल ये है, एक दुनिया है जहाँ पे आप और मैं उसके बादशाह होते हैं।
3: बिल्कुल।
1: वो है हमारे ख्यालों की दुनिया। उस दुनिया में हमारे पास ताकत बेशुमार है, हम चाहें तख्त का तख्ता कर दें,
3: बिल्कुल ऐसे ही,
1: हम चाहें बादशाह को गदागर बना दें, हम चाहें वो जो छिन गया हमसे उसे अपने पास ले आए, हम चाहें तो माजी का पहिया घुमाकर खुद को फिर अपने बचपन की उन्हीं गलियों में उन्हीं साहतों में वापस ले जाए। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम बाइख्तियार हैं, हम अपने ख्यालों के नाखुदा हैं।
3: वाह,
1: है ना? तो वो भी एक जज्बा कैफियत है ना जी, क्योंकि बजुज इसके और कुछ भी नहीं कि मैं एक ख्याल से अपनी दुनिया को तश्कील देता, जहां तू मेरे साथ होता है।
3: वाह वाह,
1: मगर फिर भी तू मेरे साथ नहीं। तो सवाल ये है, आप दुनिया में अकेले हैं, सिर्फ ख्यालों की नहीं जाहिर की, तो आपके अंदर कौन सा जज्बा जागेगा, जेलसी का या कंपटीशन का?
3: और दुनिया में अकेले भी हैं?
1: अकेले हैं, ये सवाल है मेरा। अब इस पे आप भी बताएंगे, हम कॉलर भी ले लेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपका वक्त खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
4: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
4: सर, क्या हाल चाल है?
1: अच्छा हाल है
4: जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन।
1: जनाबे अली
4: सर, लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
1: नवीद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से?
4: जी दम दम खुश थे, हर दम खुश।
1: क्या बात है आप?
4: मैंने तो इसलिए कॉल किया, मैंने कहा रहमान भाई आ गए हैं।
1: अच्छा, पाया गल करना। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप?
4: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर क्या हाल है?
3: अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है।
4: और सुनाए तबीयत सर ठीक है?
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
4: मैंने कहा इस वक्त रात के 12:15 बजे सर बिस्किट खा रहे हैं, क्या देर में आ रहा था भाई?
3: बस ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो चीजें नहीं करनी होती वही करता हूँ।
1: जो गम खौरी नहीं करते वो बिस्किट खौरी करते हैं।
4: होना भी ऐसे ही।
3: या फिर ये कह लें जो गम कैरी नहीं करते। और नवीद भाई
4: शुक्र अल्लाह वाकिदार का सर, बड़ा एहसान है मेरे मालिक की जात का। मेरा वैसे दिल किया, मैंने कहा काफी दिन हो गए बात नहीं की, मैंने कहा चलो भाई से बात कर लें।
3: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, सलामत रहें।
4: आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और आपकी पूरी मैनेजमेंट को मेरे दोनों हाथों से सलूट है सर।
1: वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी,
3: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: अमरीन लाला ने मैसेज किया, या अल्लाह जिंदगी है तो हिम्मत भी दे कि दुनिया में अच्छे तरीके से गुजारूं, मेरे शर से दूसरों को, दूसरों के शर से मुझे महफूज रख। बड़ी अच्छी बात की अमरीन लाला, बहुत खूबसूरत दुआ है। हामिद चांद है, वेलकम किया, थैंक यू। अमरीन कहती है मुकाबले में इंसान दूसरे के काम को पसंद करता है और जायज़ तरीके से मेहनत करके उसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि हसद करना एक गलत रद्द अमल है जिसमें इंसान दूसरे से उसकी कामयाबी जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपनाता है कि अगर मेरे पास नहीं तो इसके पास भी मत रहे। मुकाबले की नस्बत काबिलियत से है और हसद की नस्बत हमाकतों से है। वाह कितनी खूबसूरत बात कर दी लड़की जी। जी आप अपना रहमान भाई क्या कहेंगे, अब आप बताइए।
3: सवाल बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन इसके पहलुओं को जानने का दिल चाह रहा है पहले, कि क्या इस दुनिया में अकेले शुरू से ही अकेले हैं या फिर?
1: अच्छा यार, मान ले डिजास्टर हो गया आपका।
3: हाँ डिजास्टर हो गया। हाँ
1: आप हैं बस अकेले।
3: ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है ये दोनों जज्बे जेलसी और कंपटीशन नहीं पैदा हो सकते।
1: क्यों?
3: क्योंकि आपके मद्दे मुकाबल आपके सिवा कोई भी नहीं है।
1: कोई भी नहीं।
3: مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈیزاسٹر ہوا ہے تو تنہائی کا جذبہ پھیلے گا بلکہ بہت زیادہ پروان چڑھے گا. اور اگر آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی ہے, اگر آپ جس طرح سے پہلے اتنی خوبصورت بات کی کہ اپنے خیالوں کے اندر آپ اگر اپنی پوری دنیا بسا سکتے ہیں تو آپ بہت ساری نئی چیزیں اس پہ سوچ سکتے ہیں, اور خودکشی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے آپ اگر آپ کے اندر خیالوں کو پروان چڑھانے کا جذبہ.
1: اچھا, عمر کے حصے میں سارے خودکشی کرتے ہیں خیالوں میں, آپ کو پتا ہے؟
3: ہاں کرتے ہیں,
1: سب کرتے ہیں, آپ نے بھی کی.
3: ہاں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایسا سوچا ہوگا ضرور.
1: سارے کرتے ہیں. اور سچویشن پتہ کیا,
3: اگر اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھل سکتی کوئی چیز تو پھر
1: اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد لوگ کیا کریں گے, کس کا کیا ری ایکشن ہوگا, کون کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا, اچھا فلاں روئے گا, فلاں ہنسے گا, یار وہ کتنا روئے گی, یار وہ کتنا روئے گا, نہیں یار اچھا میری روح تو اسے جفیاں بھی نہیں ڈال سکے گی. اس طرح کے تھاٹ ساروں کو آتے ہیں بتائیں.
3: اچھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسے تھاٹس نہیں آتے.
1: آپ کو کیسے آتے ہیں
3: ایسی صورت حال میں جب
1: کوئی میرے لیے خودکشی کرے؟
3: نہیں نہیں, جان ایلیا کا بھی یہی مسئلہ تھا اور میرا بھی. Oh my God.
1: خطرناک آدمی.
3: تنہائی کا جذبہ جو ہے وہ پھیلے گا, اور تنہائی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر کے بعد, کیونکہ آپ نے ایک عمر لوگوں کے درمیان گزاری ہے اور اچانک سے صرف آپ اکیلے ہیں.
1: سر اٹ از اے تھاٹ پروسیس. اب میں نے اس کی بات کی ہے وجوہات کیوں ہیں, میں نے ایک وجہ سامنے رکھی. آپ تشریف رکھیے نا کرسی پہ بیٹھ
3: جائیں. جی جی جی.
1: جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کسی طرح سے آگے بڑھتے خوشی ہوتے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اب میں نے اس کی بات کی ہے وجوہات کیوں ہیں, میں نے ایک وجہ سامنے رکھی. آپ تشریف رکھیے نا کرسی پہ بیٹھ جائیں.
3: جی جی جی.
1: جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں

0: उलझाता है कि उसके पास ये कैसे आई।
1: हाँ,
0: वहां से फिर हसद जन्म ले लेता
1: जी। हाँ,
0: और मुकाबला जो है ये एक जज्बे की शक्ल में जागता है। जज्बा क्या होता है? जो आपको लेकर चलता है
1: जी। हाँ,
0: जो जमूद का शिकार नहीं करता। बेचैनी और इस तरह आपकी कैफियत आपके अंदर हालत जमूद को जन्म देती है, यानी स्टिलनेस पैदा करती है। रुकते हैं, सोचते हैं और उलझ जाते हैं। और जबकि जो मुकाबला है वो जज्बा है जो पुश करता है, धकेलता है आगे की जानब, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे की जानब। ये दो चीजें हैं जिन्हें मैंने जांचा और पहचाना आज गुफ्तगू करते हुए। फिर उसके बाद एक और चीज मैंने समझी कि जो कंपटीशन है, मुकाबला है, वो है आपकी निगाह और आपकी तमाम तर तवज्जोहात का मरकज आपकी अपनी जात होती है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: और जेलसी और हसद, इसका तमाम तर मरकज और तवज्जोहात आपकी बाहर के लोगों पर होती है,
1: बाहर के लोगों पर होती है, जो सामने नजर आते हैं,
0: अपनी जात पर नहीं होती। और जो आपने जवाब दिया सिचुएशन का, यही है, जब कोई नहीं होगा तो कंपटीशन का जज्बा तो होगा।
1: अच्छा,
0: जेलसी का जज्बा तो होगा, लेकिन किससे? कोई नहीं होगा जैसे कंपीट करना है। उस हालत में आप अपनी जात के साथ कंपीट करने लगते हैं।
1: हाँ, अपनी जात के अलावा तो कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती।
0: अकेले बैठ के पत्थरों से कभी खेला?
1: हाँ, मैंने
0: गुच्छे ऐसे ही बैठे हमारे, एक पत्थर आपके स्पॉट को लग गया,
1: वाह,
0: दूसरा पत्थर नहीं लगा।
1: ये कंचे खेलते हुए अक्सर ऐसा होता था।
0: होता है ना।
1: हाँ,
0: अकेले कभी बैठे हैं, एक पत्थर लगा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा भी नहीं लगा, फिर अंदर से गुस्सा आता है, क्यों नहीं लगता? पहले लग गया था, अब क्यों नहीं लगा? आप अपनी जात के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। सो कंपटीशन हो या जेलसी हो, इट स्टार्ट्स विद इन, ये आपके अंदर से शुरू होती है। बाहर की दुनिया का असर बाद में आता है। तो यहाँ पे बात मैंने सूफीज्म की तसव्वुफ में ये दोनों चीजों की नफी की जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: इसलिए नफी की जाती है कि ये वो जज्बे हैं जो एक्चुअली आपको तफक्कुर से दूर ले जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और इन दोनों जज्बों का ताल्लुक जो है आम तौर पर मादी दुनिया से होता है।
1: मादी दुनिया से, बिल्कुल ऐसे ही है।
0: मैं फलसफा इसमें ये कहता है कि बहता हुआ जो धारा है वक्त का, उसमें अगर आपकी निगाह किसी दूसरे की मंजिल पर है तो आप हासिद हैं।
1: हाँ,
0: और आपकी अगर निगाह अपने रास्ते और अपनी मंजिल पर है तो आप कंपिटेटर हैं। और इन्हीं लफ्जों के साथ यहाँ पे मैं माइक हैंड ओवर करूँगा रहमान भाई के। शाज़ेब शाज़ू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप खुद खूबसूरत है, बिन्त सदीक ने ज्वाइन किया, थैंक यू। मेहर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, आप भी कुछ इस तरह का बोलें तो फिर मैं भी बोलूँगा और कुछ उसके रिप्लाई में अच्छा सा। शकील अहमद लाहौर से, सर जब हम किसी को कंपटीटर समझ लेते हैं, कंपटीशन नहीं कर पाते, बाय नेचर हसद करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात की, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे मैं गाना लगाता हूँ और फिर आप लोगों से जा देता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाय, उनके अंदाज़े गरम। बड़े दिन हो गए थे, मैंने सुना ही नहीं था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। यस, कल बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है। कल मेरे साथ आएंगे, हमारे पास इंटर्न है, बड़ा अच्छा सिंगर है, सच ए लवली बॉय, सच ए गुड सिंगर, अब्दुल रहमान। इंशाल्लाह कल आपके साथ यहाँ शो में आएंगे, और कल हमारा वही शो होगा, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पर बात करेंगे और साथ उससे गाने सुनेंगे और फिर कार्ड्स भी होंगे। दिल के दो हिस्से जो कर डाले थे, हुस्न और इश्क ने एक सहरा बन गया और एक गुलशन हो गया। कल्बे मोमिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।

अब्दुर्रहमान है, कल आप सुनेंगे, मजा आएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो रोज आपकी और मेरी गुफ्तगू में जज्बात और बातें आती हैं, बेमानी नहीं होती। इतनी रूटीन में हम डिस्कशन उन पे करते हैं कि हम उन्हें बस फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी, मेरी आपकी ज़िंदगी को चलाने वाले वही जज्बे हैं। वो खौफ है, वो हसद है, वो मुकाबला है। इससे कामयाबी और नाकामी तय होती है। सिर्फ पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, ताल्लुकात और रिश्ते भी हैं। उनके अंदाज़ करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

0: گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے ڈھل جائیں یہ تزلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یک لخت بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادہ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلے چین کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے، یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر گیت، بنتا رہوں بناتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں، مونس و غم خوار سہی، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی زی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا
1: ہائے ہائے ایک شام لکھوں سرے عام لکھوں ایک شام لکھوں
0: سرے عام لکھوں
1: کیا کیا میں تیرے نام لکھوں
0: اچھا ہے،
1: ایک شام لکھوں سرے عام لکھوں کیا کیا میں تیرے نام لکھوں، تجھے رات لکھوں یا چاند لکھوں،
0: تجھے رات لکھوں یا چاند لکھوں،
1: کیا کیا تیرے نام لکھوں،
0: واہ واہ واہ،
1: چرا کر اپنے آنکھ سے ہر خوشی،
0: ہائے
1: چرا کر اپنے آنکھ سے ہر خوشی تیرے نام لکھوں،
0: تیرے نام لکھوں،
1: دل لکھوں یا جان لکھوں کیا کیا میں تیرے نام لکھوں،
0: واہ واہ،
1: ایک شام لکھوں اور سرے عام لکھوں
0: تیرے نام لکھوں،
1: تیرے نام، آپ کا بی جی ایم سن کے نا دل کرتا ہے،
0: دل کرتا ہے نا،
1: دل کرتا ہے کہ پھر سے بہک جائیں ہم، ساتھ لوٹ آئیں،
0: واہ واہ واہ،
1: تیری خوشبوؤں کو سمیٹ لوں میں اپنے سانسوں میں، کبھی لفظ بھول جاؤں کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں،
0: اوف کبھی بات بھول جاؤں، او مائی گاڈ،
1: اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں،
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے،
1: کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں،
0: کیسے کہوں تمہیں
1: کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں،
0: اچھا واہ واہ واہ، خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاگس کیسے مزاج ہیں آپ کے،
1: اچھے ہیں،
0: بہت لمبے عرصے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ یہ والی جو بیٹھک ہے اس سمے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کیونکہ آپ یہاں پہ پہلے آتے ہی آپ نے مجھے ویسے سنا بہت زیادہ دیر، میں کلیئر کر دوں کہ
1: میرے بھائی ہے،
0: جو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، چپیڑے بھی مار سکتے ہیں، دیکھیں وہ والی چپیڑے نہیں مارنی، او مائی گاڈ، اچھا سارا دن یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ رات کے اس پہر تک رکنا کسی انسان میں जज्बात का जब अंबार होता है मुझे लगता है तब ही इंसान पूरी दिल जमी के साथ पूरी अपनी ख्वाहिश के साथ वो ये तमाम काम कर सकता है, वरना यकीन करें जो कुछ देर के लिए होते हैं वो कुछ देर के बाद उड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो दिल से पूरी चाहत से ईमानदारी से जिम्मेदारी से उस चीज को महसूस करता है कि ये मेरी जगह है, ये मेरे लिए है, वो ये तमाम चीजें बहुत आसानी से कर सकता है।
1: कोशिश ख्वाहिश तमन्ना और एक लगन है, एक जज्बा है जो ये चाहता है और उसमें फिर आपको खुशी महसूस होने लगती है।
0: यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई काम हमारी खुशी के ऐन मुताबिक हो या हमारी खुशी की वजह हो
1: जी,
0: और अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता जिसको सबसे ज्यादा खुशी उस चीज को करने में मिलती
1: है। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह कि जब आप आते हैं यहाँ पे बैठते हैं
0: बिल्कुल
1: गुफ्तगू करते हैं रात के इस पहर में गुफ्तगू करना जहाँ पे मैं भी जब 12 बजे के बाद आपके साथ बैठता हूँ तो
0: बिल्कुल आप चेंज हो जाते हैं,
1: मेरा अंदाज
0: स्विच होता है
1: बदल जाता है,
0: नहीं स्विच हो जाता है,
1: है ना।
0: क्या ये ऐसा है कि इस BGM की वजह से है या
1: आप कैफियत,
0: ये जो कैफियत बनाता हूं मैं,
1: आप कैफियत बनाते हैं, आप BGM चलाते हैं, आप अशार से तार छेड़ते हैं और उसके बाद फिर बदल जाती है और फिर मजा आने लगता है। जो काम आप या मैं या कोई और दिल जमी से खुशी से खुद महजूज होकर करता है
0: बिल्कुल,
1: उसमें उसकी जो है ना इनपुट, उसकी दखल अंदाजी वो बेहतर से बेहतरीन होती है,
0: बेहतर से बेहतरीन होती चली
1: और खुशी उस वक्त उसकी बढ़ जाती है जब उसकी कोशिशें उसकी काविशें उसकी जोहद के नतीजे उसके सामने आना शुरू होते
0: हैं। हाँ, हाँ।
1: तो वो फिर आपको थकाता नहीं, आपको और चलने में ताकत देता है, मदद देता है
0: या दोबारा से तरोताजा कर देता है, ये भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही तरोताजा कर देता है या आपको ताजा रखता है।
0: हाँ, ताजा रखता है,
1: ताजा रखता है। तो आज या कल या आने वाले याम में अगर आप या मैं अपनी गुफ्तगू को बतौर एक RJ अगर हम अपनी गुफ्तगू से अपने अल्फाज से अपने अंदाज से महजूज नहीं होते, हम खुद से अपनी गुफ्तगू का मजा नहीं लेते तो हम किसी को भी कायल नहीं कर पाते, ना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, ना किसी के जज्बात को छेड़ सकते हैं।
0: जब तक कि आप उस जगह से उस जज्बे से ना गुजरे हो, मुझे लगता है कि वो सवाल वो प्रोग्राम का टॉपिक वो आपके अंदर से तासीर बनकर नहीं निकलता,
1: नहीं निकलता।
0: क्योंकि अगर वो तासीर बनकर नहीं निकलेगा तो फिर जो सुनने वाली समातें हैं
1: जी,
0: वो उसको कबूल नहीं कर पाएंगी, वो दिल तक उतर नहीं पाएगा और वो उनके ख्यालों में फिल्म की सूरत चल नहीं पाएगा।
1: ऐसे ही है। आज मैंने एक बात की
0: जी
1: सेशन में, मैंने कहा कि आपके या मेरे अल्फाज कोई नहीं सुनता, ना कोई सुनना चाहता।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह।
1: आप कुछ भी कोशिश कर लें, आपके मेरे अल्फाज ना सुने जाते हैं, ना कोई सुनता है और ना ही कोई सुनेगा,
0: ना कोई सुनेगा।
1: आपके और मेरे जज्बात सुने जाते हैं
0: जिस जज्बे से वो गुजरे हैं
1: हम,
0: और अमूमन इंसान एक ही तरह के जज्बों से मुख्तलिफ तरीके से
1: गुजरता है। जब आप जज्बात बोलते हैं तो उसका असर होता है।
0: हाँ,
1: अगर अल्फाज बोलते हैं वो खबर तो हो सकती है,
0: हाँ,
1: वो
0: एक दिन के बाद बौसीदा हो जाती है,
1: पूर असर गुफ्तगू नहीं हो सकती,
0: पूर असर गुफ्तगू नहीं हो सकती। यस।
1: और RJ का तो काम है कनेक्ट करना,
0: कनेक्ट कर,
1: जुड़ जाना,
0: जुड़ जाना और जोड़ लेना,
1: जोड़ लेना।
0: यस।
1: सुनने वाले को महसूस हो कि ये मेरी बात है।
0: यस।
1: और सिर्फ महसूस नहीं, मतलब आपकी मेरी हम सबकी ख्वाहिशें होती है
0: बिल्कुल,
1: हम वो बात करें जो एक्चुअली सुनने वाले की ही बात है।
0: हाँ,
1: फ़र्क ये है कि आज ये चार सेशन हो गए हमारे, जिसमें मैंने महसूस किया और मैंने फिर बर्मला इसका इजहार किया, आपके अंदर बातें हैं,
0: हाँ,
1: अल्फाज नहीं,
0: जज्बे हैं आपके अंदर,
1: अल्फाज नहीं मिलते उनको बाहर आने के लिए, और हमने वो कोशिश करनी है आपको अल्फाज दें।
0: हाँ, वो तरीका, वो जज्बात को अल्फाज की शक्ल देने का, वो सिखाएं।
1: हाँ, वो सिखाएं।
0: कभी ऐसा महसूस हुआ है डॉक्स के, ये सवाल वैसे मेरा आज का अचानक सामने, मैंने अभी एक शेर अपलोड किया हुआ है,
1: मौजू गुफ्तगू,
0: यस मौजू गुफ्तगू है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर पहुंच कर भी ये महसूस हुआ हो कि अभी घर जाना है?
1: हाँ, सही आ गया।
0: सच सच कहें, कभी ऐसा महसूस हुआ है? मैंने आपसे पहले ये बात कही कि यकीन करें, मैं प्रोग्राम में वो टॉपिक कभी शामिल नहीं करता जिस जज्बे से मैं गुजरा ना हूं। मैं जिस एहसास से गुजरा ना हूं, मैं वो एहसास एक बनावटी तौर पर कुछ लम्हे के लिए टॉपिक को चार चांद लगाने के लिए या लोगों को ये बताने के लिए कि मेरा इस पे कितना उबूर है, मेरा कितना वसी इल्म है, मैंने कभी नहीं रखा।
1: कहां से लाते हैं मौजू आप?
0: ये मेरे अंदर से मुख्तलिफ जज्बात होते हैं जिन कैफियात से मैं गुजरता हूं, और मुझे पता है कि आप भी जिन कैफियात से गुजरते हैं, तभी तो आपकी जबान को अल्लाह ताला ने खोल रखा है, और आपके अल्फाज, वो हर यहाँ पे सुनने वाला इस बात से इत्तफाक करेगा कि जब आप कोई लफ्ज बोलते हैं, वो चाहे एक लफ्ज खुशबू बोलें, तो वो महसूस होती है, वो उनको लगता है कि ये खुशबू है, आ जाती है, नहीं यकीन करें।
1: आप बड़ा अच्छा मौजू रखा आपने। अच्छा, मेरे पास दो तरह के नजरियात हैं हर चीज में, कम से कम दो नजरियात
0: होने चाहिए
1: हर चीज में, कम से कम दो है दुनिया में। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम दो होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: फिर आगे किसी को पकड़ेंगे उसमें फिर दो आएंगे। तो पहला तो है उम्र के एक खास हिस्से में इस तरह के ख्यालात का आना, और वो होता है बागीपन, जहां पे आपके अंदर बगावत जागती है, और उसका ताल्लुक बड़ा वाजे और कतई तौर पर आपके हवास खमसा के जरिए हासिल किए गए इल्म से है।
0: सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। वो जो मुशाहिदात हैं,
1: मुशाहिदात हैं,
0: वो जो वक्त गुजरा है, उम्र गुजरी है,
1: आप जो तजर्बात हासिल करते हैं उसके साथ होता है,
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा जो है, दूसरे का बड़ा ही, अब फिर मैं वो कदी कदी लोकी मैनू कहते ने आप ऐसे लफ्ज़ क्यों बोलते हैं, आप सीधी सीधी उर्दू बोला करें, ये कतई तौर पे ये है वो है, लेकिन मज़ा आता है ना यार बात करते हैं कैसे। दूसरा जज्बा भी जो है, दूसरी कैफियत, वो तब जागती है जब आपके अंदर आपके जज्बात और एहसासात एक खास किस्म की सिचुएशन से दो चार होते हैं।
0: ओह माय गॉड।
1: और उस सिचुएशन में आपके अंदर एक जंग चलती है, और उस जंग के साथ फतह हासिल ना होने की सूरत में आपको लगता है मैं मकान में पहुंचा हूं, घर में नहीं आया
0: है, है।
1: और आपको लगता है मैं महज मकान और मकाम बदलता आ रहा हूं, क्योंकि हासिल और हसूल जंग का नहीं हो पाया। वो जो अंदर जंग चलती रहती है कि जिसमें सबसे पहला सवाल जो उम्र के हिस्से में कभी भी आपको आके दोबारा दबोच लेता है, खास तौर पे जब शऊर से आप आशना हो जाएं उस वक्त कि मैं आखिर कौन हूं,
0: हर जी शऊर को ये सवाल जरूर जकड़ता है,
1: जरूर जकड़ता है। और जब ये दोबारा आके जकड़ता है ना,
0: शऊर
1: आ जाने के बाद मैं क्यों हूं,
0: क्यों
1: मैं क्या हूं, हाँ। और मैं यहां क्या कर रहा,
0: यहां क्या कर रहा हूं,
1: और मैं ये क्यों कर रहा हूं, दोबारा जब आके जकड़ता है तब भी आपको मकान का एहसास तो होता है, घर का एहसास नहीं होता।
0: इसका मतलब है कि हमने कुछ इस जमाने से, हवास खमसा से, अपनी गुज़िश्ता मालूमात से, मुशाहिदात से घर का कोई नक्शा बनाया होता है।
1: घर का बिल्कुल नक्शा होता है। मैं आपका बिल्कुल मौकफ मुमकिन है मेरे से मुख्तलिफ हो, और यकीनन आपका मेरा मौकफ मुख्तलिफ ही होता है अक्सर औकात। वो अलग बात है आप दीद और लिहाज में या मुरव्वत में कभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बाद में आप कह देते हैं पाए ताड़ी वह तो मैं चुप कर गया लेकिन मैं देला करता पे ऐसी कहण दा।
0: अब ये सबके सामने तो ना कहें ना। लेकिन ऐसा ऐसा मुझे पहली मर्तबा ये महसूस हुआ है। मैंने डॉक्स यकीन करें कंबाइंड प्रोग्राम्स बहुत कम किए हैं, और अगर मैंने कभी किसी के साथ किए हैं और आप और ज़िया के साथ ही सिर्फ किए हैं। इसके अलावा मेरी फ्रीक्वेंसी किसी के साथ, मेरी वाइब किसी के साथ यकीन करें मैच ही नहीं होती। और अगर मैं कभी खामोश हो जाता हूं तो ये यकीन करें मुझे लगता है कि कोई बात आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी बड़ी बात है कि मेरा वहां पे वो कहते हैं कि कम अकल को खामोश रहना चाहिए,
1: ऐसी गल भी नहीं होती,
0: कम जर्फ को खामोश, कम जर्फी का इजहार नहीं करना चाहिए, लड़कर आपको मान लेना चाहिए अगर कोई बात वाकई पे आपके दिल, आपके दिमाग और आपके तमाम वो हिस्सियात जिन पर आप ये सोचते हैं कि मैंने इस जगह से गुजार कर इसको फिल्टर करना है, इस बात को कि सही है या गलत है, अगर वो वहां से गुजर जाए और अगर आप मान लें तो उसमें कोई मतलब मुझे लगता है कि मजायका नहीं है।
1: वो तो मजायका नहीं है, लेकिन ये आपका बड़ा पन है।
0: नहीं, आप बड़े भी हैं और बहुत संजीदा और बहुत गहरी बात करते हैं, और मैंने ये महसूस किया आपके अंदर, यकीन करें अगर मैं ये महसूस ना कर सकता कि एक आर्टिस्ट को जब माहौल मिले, आपने जैसे अभी शुरुआत में बात की माहौल मिले तो वो जब रंग जाए ना वो दरअसल आर्टिस्ट होता है
1: ना, बड़ा मजा
0: वो रंग जाता है, वो उसमें झूमने लगता है, वो उसमें एक बिल्कुल उस महलूल की तरह जज्ब हो जाता है जैसे पानी और चीनी को एक वक्त में मिला मिलाकर वो एक हो जाता है ना। बिल्कुल इस तरह से महसूस,
1: सिचुएशन माहौल आपको मुयस्सर आए तो फिर आपके अंदर से बातें निकलती हैं, जो बातें मैं आपके साथ बैठ के करता हूँ या ज़िया के साथ या कंबाइन शोज में,
0: ये और कहीं नहीं हो पाती, हो नहीं पाती। यस,
1: अब जैसे आपने बात की ना तो एक जो मेरा लॉजिकल माइंड है ना वो चलता है लेफ्ट साइड वाला, कभी राइट साइड वाला चलना शुरू हो जाता है।
0: यस,
1: तो जो आपका सवाल है ना उसे फौरन मेरे अंदर एक जोहत पैदा की कि ये एक मकाम जहां पे आके मैंने सोचा कि मेरा मकान तो है घर नहीं,
0: घर
1: है,
0: नहीं है।
1: इसकी दो वजूहात हैं। एक बगावत, वो पहली मर्तबा जो मैंने दुनिया से की तब मैंने कहा नहीं
0: नहीं,
1: और एक वो बगावत जो मैंने अब अपने आप से कर ली और अब भी मैंने कहा नहीं, ये मकान तो है, मकाम तो है, मगर घर नहीं,
0: मगर घर नहीं है, घर वो नहीं। जो मैंने सोचा है वो जो मुझे लगता है कि घर ऐसा होता है, इस तरह के एहसासात उसमें होते हैं, इस तरह के जज्बात उसमें होते हैं, ये ऐसा ऐसा कुछ होता है घर, वो जब मुझे मुयस्सर नहीं आया, वो जब मुझे मिला नहीं, बिल्कुल उस तरह कि अगर एक आर्टिस्ट को माहौल ना मिले तो वो गड़बड़ा जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो अपने आप को उसमें तहलील नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल ऐसे
0: इंसान कोशिश तो करता है उस मकान में रहने की, इंसान कोशिश तो करता है किसी तरीके से मामलात को कंप्रोमाइज लफ्ज की सूरत में बर्दाश्त करने की, लेकिन एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा मुकाम होता है जब उसको ये महसूस होता है कि अब मैं इस मकान में भी नहीं रह सकता हूं।
1: और ये सिर्फ आपके मेरे साथ नहीं है, ये सुनने वालों के साथ ही कैफियत जरूर गुजरती है, सारों के साथ।
0: यस,
1: और ये खास तौर पर तब जागती है जब आपके अंदर फिक्र का प्रोसेस यानी फिक्र का अमल शुरू हो जाए।
0: जी हाँ,
1: अदरवाइज इसके अलावा क्या होता है, आप मसरूफ़ दुनिया इस कदर होते हैं कि आपके अंदर फिक्र का अमल जमूत का शिकार रहता है। रुका रहता है। और जैसे ही आप दुनिया से नजर हटाकर अपने अंदर डालते हैं तो एक खास मकाम पर पहुंचती है आपकी सोच, जहां पर आकर आप अपने पास मुयस्सर हर चीज पर सवालिया निशान लगाते हैं। वो आपकी अपनी जात भी होती है, और फिर जात पे जब आपने लगा दिया तो उसके बाद रह फिर क्या गया, हर वो चीज जो आपकी जात से जुड़ी है,
0: हर वो इंसान, हर वो जगह, हर वो मुकाम, वो सब आ गया बीच,
1: सब पे सवालिया निशान लग गया।
0: यस,
1: सो इट हैपेंस। और ये फिकर है, और ये अच्छी चीज है, इसमें होता है इंसान के अंदर, ये होते हैं, ये ख्यालात आते हैं, फिर उसके बाद आप उनके जवाब की तलाश करते हैं।
0: यस, आप निकल पड़ते हैं सफर पे,
1: सफर पड़ते हैं, और ये वो सफर है जहां जिस्म तो वहीं रहता है।
0: यस, आपके ख्याल ट्रेवल करते हैं,
1: आपके ख्याल की ताकत आपको न जाने कहां कहां लिए फिरती है,
0: और कैसे कैसे खूबसूरत जवाब आपके सामने लाकर खड़ी करती है।
1: हाँ।
0: और कभी कभी बहुत दिल बर्दाश्ता जवाब भी होते हैं, जिनको आप पहले मानना नहीं चाह रहे होते, आप दरअसल किसी शायद एक की गवाही सुनना चाह रहे होते हैं कि क्या ये सच भी है या नहीं। बहरहाल उस तरफ भी आएंगे। 12:52 इस प्रोग्राम में वक्त के गुजरने का एहसास बिल्कुल नहीं होता, जैसे पिछले प्रोग्राम नाइट थेरेपी भी आपको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ होगा कैसे 2 घंटे बीत गए 10 से लेकर 12 बजे तक।
1: डेढ़ घंटा
0: अच्छा, मैं समझ गया 10:30 पे दरवाजे से अंदर दाखिल लेकिन अच्छा है, लोग इंतजार करते हैं, आ जाते हैं आप, फिर भी इंतजार पे कभी प्रोग्राम करेंगे, यकीन करें बड़ा मजा आएगा। बहरहाल 12:53 हैं, आपको मैं बताऊं वो तरीके कार जिनके जरिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, सवाल का जवाब लिखेंगे तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर पहुंचकर भी आपको लगता है कि अभी घर जाना है, अभी कहीं पहुंचना है, ये मुकाम तो है, ये मोड़ तो है, ये एक कुछ देर के लिए किसी शजर, वो जो धूप में चलते चलते कोई एक शजर आता है रास्ते में और आप कुछ देर के लिए वहां पे रुकते हैं, सांस लेते हैं, ठंडी हवा का मजा लेते हैं और फिर दोबारा सफर पे निकल खड़े होते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको, आप बता सकते हैं। और दूसरा तरीकेकार सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, आप फेसबुक सर्च बार में जाकर सिर्फ इतना टाइप कीजिए fm101 लाहौर, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, फेसबुक पेज। 20K फॉलोअर्स हैं और जल्दी से जल्दी इसको बढ़ाएं यार, इसको लाख तक लेके जाएं, मजा आए कुछ इस पे और ज्यादा आपके इंट्रैक्शन हो, आप इसमें रिएक्शंस अपने दें, अपने कमेंट्स के जरिए से अपने होने का एहसास दिलाएं, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ लाइव कॉल्स पे आप हमारा साथ निभाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का ये सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि इससे आकर आपकी आवाज हमारी आवाज में मिलती है और आप अपने जज्बात का इजहार पूरी दुनिया के सामने करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में सुना जाता है। बाय द वे डॉक्स, यहां पे एक ट्रैक मैं लगाना चाह रहा हूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: हाँ बिल्कुल लगाएं, गिरे हुए सूखे पत्ते भी इकरार करते हैं।
0: हाय हाय, ये वाला ट्रैक लगाओ,
1: गिरे हुए
0: सूखे पत्ते भी
1: इकरार करते हैं, जिन्हें कल तक मोहब्बत थी वो अब इनकार करते हैं।
0: अच्छा, ओह माय गॉड,
1: अजब दस्तूर दुनिया का यहां मंतक निराली है,
0: अजब दस्तूर दुनिया का यहां मंतक निराली है,
1: रसाई जिनकी मुश्किल हो उन्हीं से प्यार करते हैं।
0: अच्छा, रसाई
1: जिन तक मुश्किल हो,
0: ओह माय गॉड, बड़ी सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है, यकीन करें
1: उन्हीं से प्यार करते हैं। कभी तो जिंदगी रुक जा, कोई है मुंतजर तेरा,
0: कभी तो जिंदगी रुक जा, कोई है मुंतजर तेरा,
1: तेरी खातर कजा से झगड़ा जो हर बार करते हैं,
0: उफ वाह वाह वाह,
1: जाने वाले चले जाते हैं मगर पीछे जो रह जाते हैं,
0: हाय हाय,
1: इन्हीं को याद कर करके वो दिन शुमार करते हैं, खिजा की रुत में जाते हैं पलट कर फिर नहीं आते,
0: खिजा की रुत में जाते हैं फिर पलट कर नहीं आते,
1: परिंदे भी तो फूलों से अजब ही प्यार करते
0: हैं। अजब ही प्यार करते हैं, वाह वाह वाह।
1: सुनो अनम, अगर कोई मुसाफिर लौट आए तो,
0: अगर कोई मुसाफिर लौट आए तो
1: स्वागत उसके आने का हम ही हर बार करते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। यहाँ पे मुझे लगता है ये बनता है।
2: ओ साहिब तेरे नाम की,
0: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है।
2: मेरी आशिक अखियां उड़ाडी, तेरे हिजर ने आतिश लाई,
0: तेरे हिजर ने आतिश लाई। आपकी बातों का जवाब वापस आएंगे, कहीं जाना नहीं है आपने। आज का टॉपिक बहुत वसी है, आप किसी भी जगह इसको लेके जा सकते हैं, किसी एक लड़का और लड़की तक महदूद नहीं है। बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है,
1: महज आपकी जात भी हो सकती
0: है, महज आपकी जात भी हो सकती है।

0: और बाद में भी नहीं हो सकता, लेकिन जितने पहलुओं का उसको पता होता है वो सारे के सामने उसके सामने रख देता है,
1: वो आप
0: खोल के उसके सामने दिखा देता है अपना आप सब कुछ, और फिर एक वक्त के बाद ना वो बोरियत पैदा कर देता है।
1: सर आपको लगता है आपने सब कुछ रख दिया सामने?
0: हाँ,
1: आपके अंदर या मेरे अंदर या सुनने वाले के अंदर जिस दिन ये एहसास जागता है कि मुझे इस वक्त नफी का सामना करना पड़ रहा है,
0: वाह,
1: मेरी
0: मुझे इस वक्त नफी का सामना करना पड़ रहा है,
1: जहां पे मैं कभी
0: इनकार
1: इकरार की लज्जतों के मजे लेता रहा हूं, वहां मुझे नफी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में फिर इंसान के अंदर ये सलाहियत, फिर मैं ये कहूंगा कि मौजूद होती है कि वो क्या चाहता है। ये अब आपकी अपनी चाहत पर मुनहसर है। फर्ज करें अगर ये कैफियत मेरे साथ आती है और मैं किसी जगह से इकरार की लज्जतों के बाद इनकार की उलझनों में फंसाया जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कमी मेरे में है। इल्जाम मैं दूसरे पे देता रहूं तो ये तब तक तो अच्छा है जब तक कि मेरे पास फरार का रास्ता है। इसको मैं अपनी नजर में ये कहता हूं कि बेहतरीन रास्ता है फरार का, और ये आम लोग यही करते हैं। अब अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे, थोड़ा सा अपने अंदर वो कैफियत को जगाएं जो आप सारे जानते हैं, जिनके बारे में आप पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन करने से घबराते हैं। खौफ अनदेखे का खौफ कि अगर मैं ऐसे करूं कहीं ये ना हो वो ज्यादा तकलीफ में आ जाए। ऐसे नहीं होता,
0: ये हमें लग रहा होता, ये हमारा ख्याल होता,
1: क्योंकि आपका और मेरा वजूद बेमानी है बगैर इन जज्बात के।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: ये दुनिया, ये काम कारोबार, ये मोहब्बतें, लज्जतें, इनकार, ये हर चीज सिर्फ और सिर्फ जज्बात पे चलती है। और जहां पर आपको लगे कि अब आपके जज्बात मजरूह हो रहे हैं किसी के इनकार से, तो अपने उस शख्स को बदलना शुरू कर दें।
0: शख्सियत को या उस शख्स को ही?
1: अपने अंदर से उस शख्स को बदलना शुरू कर दें,
0: अपने आप को, यानी आप ये
1: अपने आप।
0: ओह माय गॉड,
1: बहुत होता ये है कि मैं ये समझता हूं या आप समझते हैं जो मैंने इसको बता दिया इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं,
0: बहुत कुछ है।
1: क्योंकि जो आपने किया वो आपने बेहतर समझकर बेहतरीन बनकर खुद को किसी के आगे रख दिया उसकी बेहतरी के लिए, कि वो खुश हो, वो ये चाहता
0: उसकी खुशी,
1: उसको इस तरह से खुशी मिल रही है।
0: हाँ,
1: अब फर्ज ये है कि उसके ऐन उल्ट करना शुरू कर दें।
0: यानी पहले जब आप उसकी तमाम की तमाम ख्वाहिशों को समझकर उसके ऐन मुताबिक ढल जाते थे जैसा वो चाहता था, और अब जैसे आप अपनी वक्त खत्म कर बैठे हैं, तो अब बिल्कुल उससे उलट शुरू करें।
1: अब उसको वो शख्सियत की तलब है कि जो
0: इनकार करे
1: उसका हर दे।
0: हाँ, ये दरअसल थोड़ी सी क्लैप बनती थी।
1: क्योंकि ये जज्बात जितने होते हैं,
0: ओह माय गॉड,
1: इनका फिर मैं यही कहूंगा आपके अंदर से वो जो है ना जहद एक उठती है।
0: हाँ,
1: एक ही तरह की चीज देख देख के आपको आदत हो जाती है, जिस तरह आपका कमरा है। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहा करता था, जो आजकल मैं नहीं ये गुफ्तगू कर रहा, मेरे और मौजूद चल रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप एक कमरे में एक ही तरह से अपना बेड और चीजें रख के एक अरसा देखते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप की कोशिश और काविश उसको समझने की खत्म हो जाती है। वो एक अरसे के बाद आपके अंदर बैठ जाती हैं सारी चीजें। जिस दिन आप कमरे में एंटर हो, कोई चीज वहां से गायब हो, कोई छोटा सा डेकोर का पीस ताजीनो आराइश के लिए रखे हुए छोटे छोटे से, कोई भी आपने नमूने जो रखे होते हैं उनमें से
0: जो आपकी पसंद की, जो आपकी पसंद भी होते हैं,
1: कुछ भी
0: हाँ,
1: तो आप फौरन नोटिस करते हैं,
0: यस,
1: ये गायब है, और आप तलाश करते हैं।
0: हाँ,
1: यही फॉर्मूला आप पे आता है।
0: हाँ,
1: आप उस कमरे के अंदर रखे हुए बेड, कुर्सी, टेबल, ताजीनो और आयश के पीसेस की तरह से हैं, आप एक पीस अपने अंदर

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: یہ بھی ذہنی اذیت ہے مسافر کو اگر. ڈاکٹر رابعہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ شعر نیاز پڑھا تو یہ آپ کے لیے. یہ بھی ذہنی اذیت ہے مسافر کو اگر گھر پہنچ کر بھی یہ لگتا ہے کہ گھر جانا ہے.
1: وفا وفا وفا کیا بات ہے.
0: 11 منٹ باقی رہ گئے اور facebook.com/fm101 لاہور یہاں کی پیغامات سب سے پہلے پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اختتام کریں گے, پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے جلدی سے جلدی. مقابلہ سخت ہے اور وقت جو ہے وہ بہت کم ہے ہمیشہ کی طرح, ہمیشہ کی طرح. اچھا جی, مرینا بلال ہمارے ساتھ. السلام علیکم ارج رحمان, ویلکم مرینا فرام لاہور, تھینک یو ویری مچ. رحمان آج تو لائٹ ہی نہیں تھی. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. مہجبین ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکس آپ شاعری کو بہت خوبصورتی سے پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ یو آر ویری ٹیلنٹڈ.
1: آپ کو لگتا ہے؟
0: نہیں نہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں. حسن علی ہمارے ساتھ ہیں, دل بھیجا ہے. چھوٹی گڑیا ہمارے ساتھ ہیں, سپر آپ نے کہا ہے, بہت بہت شکریہ. جونو جونیئر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم سر کہہ رہے ہیں. طاہرہ مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم کہہ رہی ہیں. چھوٹی گڑیا ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. لاجواب شو بہت بہت شکریہ, یو آر بیسٹ بہت بہت شکریہ. بنت صدیق ہمارے ساتھ ہیں, دل بھیجا ہے آپ نے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چھوٹی گڑیا نائس کہہ رہی ہیں اور جگنو جونیئر اور چھوٹی گڑیا کے بہت سارے پیغامات مل رہے ہیں, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور جلدی سے جلدی میں وہ نام لے رہا ہوں جو پوسٹ کو لائک کیا ہے. فیصل عباس, چھوٹی گڑیا, بنت صدیق, جگنو جونیئر, امل حبیب. امل حبیب سے مجھے یاد آیا کہ امل گزشتہ جو ڈیٹ گزر گئی, اب تو 9 جولائی ہو گیا, لیکن 8 جولائی کو آپ کی سالگرہ تھی. سو سالگرہ جو گزر گئی ہے وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, مسکراتی رہیں, جیتی رہیں اور آپ کی زندگی خوشیوں بھری ہو اور آپ کا نصیب بہت اچھا ہو. اور ہمارے ساتھ حسن علی ہیں, مہجبین ہیں, آر جے زینب ارشد صاحبہ ہے, 101 کی بہت خوبصورت آواز, تھینک یو ویری مچ. مرینہ بلال, طاہرہ مسعود, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان انور, آئی ڈی کے اوپر آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں, وہ بھی پروگرام کا حصہ بناتا ہوں. اور سب سے پہلے میں جنہوں نے لائک کیا ان کا نام, بنت صدیق, مہجبین, مرینہ بلال, محمد ارشد گوندل ہمارے ساتھ ہیں, حمداللہ ملاخیل ہیں, ایمن شال بٹ بہت بہت شکریہ, طاہرہ مسعود, مریم محمد بہت بہت شکریہ, جمعہ گل ہمارے ساتھ ہیں, کرن عباسی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, وجاہت نواز تھینک یو ویری مچ. سیال کوٹ سے بہت خوبصورت آرجے ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے لائک کیا. عزیزہ قوم ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عبد النور ہاشمی رواز گارڈن سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈیئر رحمان ڈاکس آداب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, یہ کچھ آپ کے پیغامات تھے ڈاکس. اچھا,
1: ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں جو جی ہماری سیال کوٹ کی آر جے بھی ہیں.
0: ارے,
1: اور بڑی دیر سے آپ کے شو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی.
0: اچھا,
1: ان کی کال ملی ہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام,
1: کیسی ہیں آپ؟
2: میں بالکل ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے؟
1: تھینک یو ویری مچ.
2: اچھا, سب سے پہلے تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے, کال چلے لگ ہی گئی. اچھا, میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی اور اکثر میں اساتذہ ڈاکس کے پروگرام میں کال کی ٹرائی کرتی ہوں لیکن کبھی بھی نہیں لگی. تو آپ کا پروگرام میں سن رہی تھی اور باتیں تو بہت گہری ہو گئی تھی, شاید وقت کا تقاضا ہے اس کی.
1: ہاں جی, ایسے ہی ہے, رحمان بٹھاتا ہی سازش کر کے مجھے.
2: نہیں, لیکن باتیں بہت اچھی ہو رہی تھی اور کیا ہی کہیں اب آپ کو.
1: آپ خود بہت اچھا بولتی ہیں, یہ بہت اچھی آرزیں ہیں, بہت اچھی شاعری پڑھتی ہیں.
0: کیا نام ہے ان کا؟ نام بتایا نہیں آپ نے.
2: میرا نام سگرا جعفری ہے.
0: سگرا جعفری, خوش آمدید کہتے ہیں. شاعری کی بات کی ہے تو جاتے جاتے آپ سے کچھ شاعری سن لیتے ہیں, سنائیے گا.
2: ہاں ضرور. मैं आपको अपनी गजल सुनाऊं?
1: जी सुनाइए, दिखाई तो जा नहीं सकती।
0: नहीं, हम देख लेंगे, आप सुना दें।
2: अच्छा जी। कहा उसने हवाओं का मैं रुख भी मोड़ सकती हूँ।
0: अच्छा।
2: दिए की लो बुझाने को मैं तारे तोड़ सकती हूँ। अब बात मत करना पुरानी ओढ़ने की तुम। जमी को मैं पहनकर आसमां को ओढ़ सकती हूँ। अना को छोड़कर अपना शिकस्ता दिल दिखाओ। मैं मोहब्बत हूँ दिले सज्जाग को मैं जोड़ सकती हूँ।
1: बहुत अच्छा।
2: ये मेरी बेबसी है कि तपिश को झेलती हूँ मैं। ये मेरी बेबसी है कि तपिश को झेलती हूँ मैं। वगर ना गिरेबा शम्स का झंझोर सकती हूँ।
0: गिरेबा शम्स का झंझोर सकती हूँ। अच्छा अच्छा।
2: की बसती हूँ मैं तो।
1: दोबारा बोलिए।
2: वफा से दूर हो लेकिन जफा की बसती हूँ मैं तो। तुम्हारे सर की इज्जत है मैं अपना फोड़ सकती हूँ।
1: वाह वाह, बहुत
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त छा गई हैं आप।
2: और सर सर सर आपको एक शेर में डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आपकी आवाज के लिए और ये मेरा शेर वैसे भी बहुत पसंदीदा है कि गैरों में बढ़ती रही तेरी गुफ्तगू की चाशनी।
0: हाय हाय हाय।
2: गैरों में बढ़ती रही तेरी गुफ्तगू की चाशनी। तेरी आवाज जिनका रिस्क थी वो फाकों से मर गए।
0: बहुत हाय हाय।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: क्या क्या
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप खुद इतना अच्छा बोलती हैं और इतना अच्छा आपका अंदाज और तलफ्फुज़ और शायरी। और फिर मैं हैरान होता हूँ जब इस तरह इतने बड़े बड़े खुद अच्छे क्रिएटिव लोग मुझे पसंद करें, तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ आखिर केड़ी गल है, इन्हों का दिमाग क्यों खराब है।
0: वाह वाह,
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहली दफा आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल चले लग ही गई।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड, वेरी काइंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा उन्होंने,
1: है ना,
0: शायरी गजल, गजल बहुत खूबसूरत थी। यस,
1: बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा
0: ख्याल, बड़ा मजबूत था, बड़ा अच्छा ख्याल था,
1: है ना।
0: यस,
1: बहुत अच्छा ख्याल है।
0: दूसरी तरफ शीशे के उस पार मुझे वसीम अहमद नजर आ रहे हैं, जो कि मेरे बाद प्रोग्राम गुंचाए शौक आपके लिए लेकर आएंगे। और बहुत
1: यार, एक ना मैं आपसे इजाजत चाह के नज़्म पढ़ता हूँ।
0: जी जी सुनाइएगा।
1: कोई गुंचा बाग बन जाएगा अगर उसके बाग बां तीन एक साथ हुए तो।
0: अच्छा, ये पैन में माइक बंद तो नहीं सी, अच्छा खुलिया पैन ऑन ही, ठीक है। नहीं अच्छा, ठीक है।
1: उम्मीद है कि गुंचे में थोड़ी सी हरियाली आ जाएगी।
0: नहीं, मुझे लगता है कि ये गुंचा
1: हरियाली
0: देना है। नहीं नहीं आने
1: नहीं आने, यहाँ पे अब खिदाए मुसलसल है।
0: नहीं, ये दरअसल प्रोग्राम ना अधूरी बातें हैं, हम 101 वाइब स्टार्ट करेंगे जल्दी।
1: नहीं, यहाँ पे खिजा मुसलसल है, खबरदार।
0: फिर हुआ कि खिजा ने आम घेरा था,
1: खबरदार इन बहारों से कह दो यहाँ का रुख ना करे, यहाँ पे खिजा मुसलसल रास है।
0: इतने लंबे पैरा हुआ मैं इधर, मैंने लेट के हंसना फिर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, आप नहीं ना सुन रहे, अच्छा कर रहे
1: सुने आप मत सुने,
0: वाह आगे सुनने के लिए आगे सुना था। All right, 1:59 और आप नहीं सुन रहे थे ना।
1: वालेकुम अस्सलाम हजूर, कैसे हैं?
0: कैसे हैं?
1: सलाम है की इधर
0: यकीन करें अच्छा था। ठीक ठाक है,
1: सलाम है अकीदत, सलाम है अकीदत कबूल करे।
0: अच्छा सलाम है अकीदत, लफ्ज आपने चेंज किया है ना।
1: सलाम है अकीदत कबूल कीजिए, जिसमें शर्म का पहलू कदरे पिन्हा है।
0: लिबास ही अच्छा, दो बज चुके हैं, टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है।
1: अभी गुंचाई शौक में बाग सी बहार है। खिजा की तलब में बढ़े जाते हैं हम।
0: इधर ही है,
1: इधर ही है, मेरे पीछे बैठे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओह माय गॉड। अच्छा
1: अच्छा संजीदा का मेरे ख्याल है हुन नहीं होना।
0: जानते हो जेड़ा जा रहे है।
1: जानते हो
0: ठीक है,
1: कोई ऐसा जादू तू ना कर।
0: हाँ अच्छा दोनों ने हम दोनों ने एक ही बात की है।
1: कोई ऐसा जादू तू ना कर,
0: हाँ
1: खुदा में बाहर आ जाए।
0: फूल फूल और गुंचे खिले हैं ग्रा। नहीं यार ऐसा ना करें। अच्छा टाइम इजाजत लेने का आन पहुंचा
1: सर, आपकी इजाजत से एक नज़म आपकी नजर करना चाहूंगा सर।
3: जरूर
0: अच्छा नहीं नजर ही करना चाहूंगा। कर दे कर दे कर दे।
1: कोई ऐसा जादू तू ना कर,
0: हाँ
1: मेरे इश्क में वो दीवाना हो। आज मेरे प्रोग्राम में आई, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ने का ना। तखय्युल है और तसव्वुर है। कोई ऐसा जादू तू ना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो। यूं उलट पलट के गर्दिश की,
0: हाँ
1: मैं शम्मा वो परवाना,
0: वो परवाना हो। वाह वाह,
1: जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा,
0: कलंदर सा। वाह,
1: कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा।
0: वाह वाह,
1: कुछ चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे जो मुझ पर, वो मुझ पर आशिक हो जाए,
0: वो मुझ पर आशिक हो जाए।
1: कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक कर दे ऐसा, वो पिए तो मेरे ख्वाब आए,
0: मेरे ख्वाब आए।
1: कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन।
0: वाह वाह,
1: वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया ना जाए तेरे बिन।
0: वाह वाह, मुबारक जल्दी आ।
1: कोई ऐसा काला जादू कर, बड़ा फजूल आदमी।
0: नहीं यार मेरे अल्लाह की कसम, मेरे यार मैं
1: मैं नहीं पा रहा।
0: नहीं नहीं
1: नहीं पढ़
0: रहा, नहीं
1: मैं जा रही हूँ
0: ये कसम से मैं कहूँ मुबारक जल्दी आ।
1: वो कहे मुबारक
0: वो कहे मुबारक जल्दी आ, मैं
1: जिया न जाए। इसको पढ़ते हुए अक्सर मुझे घुमा पता। वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब हया ना आए तेरे बिन।
0: हाय
1: मैं इजाजत लेता हूँ यार।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर द डे।
0: हया ना आए तेरे। इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा, मजा आया।
1: अब समझ तुम्हें, हया ना आए तेरे बिन।
0: मेरा दिल कर रहा है। अच्छा कल कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। मैं जमीन से एक दिन आसमान को आऊंगा
1: मुका प्रोग्राम
0: मैं जमीन से एक दिन
1: आसमान को आऊंगा तुम कभी इंतजार न करना।
0: ये लगी मतलब आया नहीं ये नहीं है शेर मैं
1: ये जमीन से आसमान को जाने की ख्वाहिश है इनकी
0: ना कबूल ना करिए हाँ मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा यार यार ये बदला लेने वाला आपके अंदर एक सिफ्त कहां से जाग गई है
1: नहीं थी बहुत मजेदार है मैं कह रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से मुझे वाकया याद आ गया जो रात इंदूरी साहब ने सुनाया राज इंदूरी साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान आया और काश्मीर साहब थे प्रोग्राम में और नहीं फैज अहमद फैज साहब थे बैठे हुए कहते मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया एक लफ्ज बोलूं एक बंदा कहे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते मैंने एक लाइन बोली वो कर वाह वाह अल्लाह मुकर्रर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ मैं सोचने लगा क्या करूं फिर मैंने पढ़ी फिर उसने यही किया तो वहां से फैज साहब बोले मियां जितनी शिद्दत से तुम अल्लाह को याद कर रहे हो अगर अल्लाह ने तो जिस तरह तुम्हारी तलब है ना आसमां को जाने की
0: यार मेरा एक शेर है यार
1: हाँ देख बिस्मिल्लाह हाँ वो कर रहा है
0: मैं
1: एक दिन आसमां को
0: जमी से एक दिन जमी मैं तो दस रही क्या पता है मेरे इतो आ रही मैं नहीं फुल सीरियस हो गया ना
1: करो
0: मैं जमी से एक दिन आसमां को आऊंगा
1: क्योंकि यहाँ घर नहीं है मेरे पास
0: तुम पहले कह दिया अल्लाह हमी नासिर अल्लाह हमी नासिर थैंक यू वेरी मच डॉक्स बहुत मजा आया ऊंचाई शौक में खुश आमदीद कहते हैं वसीम साहब को इसके बाद आपने कहीं जाना नहीं है सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर रहमान अनवर इज साइनिंग आउट मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना माइक बंद कर दिया उनका अल्लाह हाफिज कर रहा हूं अल्लाह हाफिज

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: स्माइल एंड डायल 111 FM।
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: You're listening to FM 101. Abale bale or shower shower.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

आवाज के हमरा सरापा भी तो देखूं, आवाज के हमरा सरापा भी तो देखूं, ऐ जाने सुखन मैं तेरा चेहरा भी तो देखूं, आवाज के हमरा सरापा भी तो देखूं, ऐ जाने सुखन मैं तेरा चेहरा भी तो देखूं। दस्तक तो कुछ ऐसी है कि दिल छूने लगी है, दस्तक तो कुछ ऐसी है कि दिल छूने लगी है, इस हब्स में बारिश का ये झोंका भी तो देखूं, दस्तक तो कुछ ऐसी है कि दिल छूने लगी है, इस हब्स में बारिश का ये झोंका भी तो देखूं, सहरा की तरह रहते हुए थक गई आंखें, सहरा की तरह रहते हुए थक गई आंखें, दुख कहता है मैं अब कोई दरिया भी तो देखूं, सहरा की तरह रहते हुए थक गई आंखें, दिल दुख कहता है मैं अब कोई दरिया भी तो देखूं, ये क्या कि वो जब चाहे मुझे छीन ले मुझसे, ये क्या कि वो जब चाहे मुझे छीन ले मुझसे, अपने लिए वो शख्स तड़पता भी तो देखूं, अब तक तो मेरे शेर हवाला रहे तेरा, अब तक तो मेरे शेर हवाला रहे तेरा, अब मैं तेरी रुसवाई का चर्चा भी तो देखूं, अब तक जो शराब आए थे अनजाने में आए, अब तक जो शराब आए थे अनजाने में आए, पहचाने हुए रस्तों का धोखा भी तो देखूं, आवाज के हमरा सरापा भी तो देखूं, अनजाने सुखन मैं तेरा चेहरा भी तो देखूं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ है आपके अपने मेज़बान वसीम।

दावत की। तमाम खूबसूरत तस्वीरों को रात के इस आखिरी पहर में मेरा मोहब्बत भरा, खुलूस भरा सलाम कबूल हो। क्योंकि ये रात का समा जो होता है, ये गहरी नींद का समा होता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और अगर बंदा सोया हो तो उसको उठना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। मगर कुछ हमारे लिस्टनर्स ऐसे हैं, हमारे सुनने वाले ऐसे हैं, हमारे सामईन ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए जाग रहे होते हैं, और कुछ हमारे जैसे जो रातों को जागने वाले लोग हैं वो भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं। तो आप सब लोगों को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। रात का ये खूबसूरत पहर, इसको हम मिलजुल के खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे सुबह के 4 बजे तक। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंचा शौक, और आप भी अपने शौक के हाथों मजबूर हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और हम भी अपने शौक के हाथों मजबूर आपके पास मौजूद हैं। बल्कि हम मजबूर नहीं कहेंगे, बल्कि हम अपनी खुशी के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, रेडियो के साथ अपनी मोहब्बत के साथ, अपने लिसनर्स की मोहब्बत के साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं और उसमें अपने कमेंट्स सेंड करते हैं, अपने कॉल्स करते हैं, ऑफ एयर कॉल्स करते हैं, लाइव कॉल्स करते हैं, और अपनी खूबसूरत पोइट्री हम तक भिजवाते हैं। आपको पता है कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल सामीन के लिए है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, और हुकअप पे जा रहा है, मतलब रेडियो पाकिस्तान के 101 के जो स्टेशंस हैं उन तकरीबन 19 सभी स्टेशंस के ऊपर आप मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो तमाम जो स्टेशंस हैं 101 FM के लाहौर के अलावा जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को उठाए हुए हैं, उन इंजीनियर्स को सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सलाम। उनकी मेहनत से ही, उनकी तवज्जो से ही ये आवाज़ आपकी समातों तक पहुंच रही है। प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जिसका पता है www.facebook.com/FM101Lahore। और इसके साथ साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान है, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, यानी इस वक्त क्योंकि नेटवर्क पे है तो आप सिर्फ 101 लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, शेयर लिखिए, उसे भेज दीजिए 4471 पे, यानी 4471 पे। और जैसे ही आपके पैगाम आते हैं तो यकीन मानिए दिल जो है वो खुशी से फूला नहीं समाता। तो आप अपने SMS हम तक भिजवा सकते हैं, आप अपने कमेंट्स फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रोग्राम को 101 FM को लाइक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमें ऑफ एयर कॉल्स भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे तो आप लाइव कॉल भी करेंगे, जिसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0421100001, यानी 0420111001। पाकिस्तान से बाहर से अगर आप कॉल करना चाहें तो 0092 उसके बाद 42 उसके बाद 1100001। मैं हूं आपका अपना RJ वसीम अहमद। रात का ये खूबसूरत पहर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम करता हूं। एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई, बस इसी बात पे उकताया हुआ फिरता हूं, बस इसी बात पे उकताया हुआ फिरता हूं। तुम हो मसरूफ, मुझे काम नहीं है कोई, खत्म हो जाए जरा चाय तो फिर चलते हैं, खत्म हो जाए जरा चाय तो फिर चलते हैं, इस मुलाकात का अंजाम नहीं है कोई। एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। मोहतरम सामईन, कभी कभी हम अपने आप को पुकारते हैं, अपने आप से बात करते हैं, जो कि कभी कभी करते हैं। आप बताइए, आपने कभी अपने आप से बात की? कभी टाइम मिला? हमें वक्त ही नहीं मिलता
कि हम अपने आप से बात कर सके, अपने आप से कुछ कह सके, अपने आप से कुछ पूछ सके। और ज़िंदगी के दिन गुजरते चले जाते हैं, हम तन्हा, कभी दोस्तों के साथ, कभी तन्हा, कभी अपनी तन्हाई के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं। मगर उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि हम बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के काम भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल को तोड़ते भी नहीं हैं, दिल को जोड़ के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, पी जाते हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करके ही दुख मिले। क्या ये ज़रूरी है कि कुछ आप गलत करें तभी आपको दुख मिले? कभी कभी ज्यादा अच्छापन, ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि इतना मीठा भी ना हो कि दूसरा शख्स आपको बिल्कुल खा जाए, पी जाए, और इतने कड़वे भी ना बने कि वो आपको निगल भी ना सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहरबानी करते हैं लोगों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, जिनसे भी हमारे ताल्लुकात होते हैं, मगर ये होता है कि उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम इसके बावजूद कि हम सबके दिल को नहीं तोड़ते, सबको तकलीफ, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, फिर भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करते, हमारी बातों को वो वैल्यू नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए। मगर हम तो बेलॉस हैं, हम तो कभी भी उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी बातों को वो वैल्यू देंगे, वो भी हमें आगे से मोहब्बत देंगे। हम तो प्यार निछावर करने वाले लोग हैं, मगर उसके बावजूद कुछ लोग प्यार के बदले में भी कांटे देते हैं, फूलों के बदले में भी कांटे पाँव में, पाँव के आगे रास्तों में बिखेर देते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल बंदे को ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसा मैंने कहा, क्या लोगों को अपने दुख दिखाने से हम तमाशा बनते हैं? क्या हम तमाशा बन जाते हैं? तमाशा बनने के बराबर है कि हम अपने दुख लोगों को दिखाएं? आप क्या कहते हैं? अपने दुखों को अपने तक ही महदूद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत हौसला चाहिए, और दूसरों में खुशियां बांटने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए। मगर क्या अपने दुखों को अपने तक ही रखना चाहिए? क्या दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को दिखाना चाहिए कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ़ है? और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम उनसे हमदर्दी की तवक्को कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो ऊपर से आपको लगते हैं कि वो आपके अपने हैं, मगर अंदर से वो ऐसे नहीं हैं। कुछ मोहब्बतें भी ऐसी होती हैं, ऊपर से हमें नजर आती हैं कि बहुत मोहब्बत है, मगर अंदर से बिल्कुल कुछ और होता है। शायद यही मुनाफ़कत होती है, इसी से बचने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो बात है, वो यही है कि क्या लोगों को अपने दुख बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए? ऐसा तो नहीं कि हम दुख बता के, अपनी परेशानियां उनसे शेयर करके हम उल्टा तमाशा बन जाते हैं उनकी नजरों में। कुछ लोग महसूस होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा ही हो, मगर वो हमारे सामने बहुत मीठे, बहुत ही अपने, बहुत ही हमदर्द बन के मौजूद रहते हैं। कैसे पता चल सकता है कि कोई हमसे कितनी मोहब्बत करता है, या अंदर, दिल के अंदर, उसके दिल में हमारे खिलाफ कितनी जहर है, कितना जहरीला है वो हमारे लिए, कितना बुरा सोचता है हमारे लिए, कितनी बुरी चीजें करता है वो हमारे लिए? आप क्या कहते हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? फिल्म के शुरू में ही मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया, बातें हमने काफी सारी कर ली हैं।
आपको पता है कि ये प्रोग्राम शायरी के ऊपर बेस करता है, ज़्यादातर हम इसमें पोइट्री शामिल करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोग मेरी उम्मीद पे पूरा भी उतरते हैं, और उम्मीद ये होती है कि आप भी शायरी लेके आएंगे, आप भी पोइट्री लेके आएंगे और खूबसूरत अशआर लिख के हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। कोई अगर एक शेर भी लेके आए, एक मिसरा भी लेके आए, तो यकीन मानिए कि हमारे लिए वो भी बहुत है। जॉन एलिया का कलाम प्रोग्राम में शामिल करता हूं, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हसरत हो। ऐसी कैसी बात है कि जो शख्स जिसको हम मोहब्बत करते हो, चाहते हो दिल की गहराइयों से, रूह की गहराइयों से, वो हमें हकीकत में नहीं मिला बल्कि हमारी हसरत बन गया। तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो, तुम हो खुशबू की ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू की ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरब्बत हो। तुम हो खुशबू की ख्वाब की खुशबू और उतनी ही बेमुरव्वत हो, तुम हो पहलू में परकरार नहीं, तुम हो पहलू में परकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो, तुम हो गड़ाई रंग रंगो निखत की, तुम हो गड़ाई रंगो निखत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस लिए देखते हो आईना, किस लिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आपके मैसेजेस, आपके पैगाम का मुझे इंतज़ार, और कोशिश किया कीजिए कि आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, जाग रहे हैं और इस रात को एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, वरुण एफएम के साथ मिलके, तो अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजिए। www.facebook.com/fm101 लाहौर, इस पर आप अपने कमेंट्स भिजवा सकते हैं, और इसी तरह से आप SMS भी कर सकते हैं, 101L लिखिए या खाली 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, भेज दीजिए 4471 पे, यानी 4471 पे। सबसे पहले अनीला जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, उन्होंने हमें कहा कि जी वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया अनीला जी, आप हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं, और यकीन मानिए कि आपके जो पैगामात हैं, आपका जो भी मैसेज आता है, जो भी कॉल आती है, वो प्रोग्राम को खूबसूरत बना देती है, और मेरा नहीं बल्कि जिन प्रोग्राम्स में आपकी कॉल जाती हैं वो सब लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने प्रोग्राम की खूबसूरती समझते हैं, और सुनने वाले भी आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को सुनते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। आपके कुछ पैगामात हैं आप लिस्टर्स के, जिसमें सबसे पहले रोज़ी रिजवाना साहिबा हैं, इन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया है, जुगनू जूनियर ने प्रोग्राम को लाइक किया है, और RJ मुश्तबा सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में पहुंचे, और हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में पहुंचे हैं, माजवी साहिबा हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, बिनते सदीक ने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है, आपके कमेंट्स भी मुझ तक पहुंचे हैं, उन्हें मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं, और इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। रोज़ी रिजवाना साहिबा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, माजबी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आरजे वसीम वालेकुम अस्सलाम, हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा, एक नज़्म पेशे खिदमत है जी, ज़रूर
نظم ہے آدھا سچ، کچھ ماں نے کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے، کچھ ماں نے کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے، اور جب میں بڑا ہوا تو حالات نے یہ بتایا مجھے، وہ آدھا سچ تھا لیکن جب پورا سچ ہاتھ لگا تو پتا چلا کہ اس آدھے سچ کے پیچھے وہ بھید کیا تھا۔ وہ آدھا سچ تھا لیکن جب پورا سچ ہاتھ لگا تو پتا چلا کہ اس آدھے سچ کے پیچھے وہ بھید کیا تھا، دل میں چھپا وہ چھید کیا تھا، جس کو میں اب تک سود سمیت لوٹا رہا ہوں۔ بیوٹیفل، بہت اچھا۔ حمید گل صاحب آپ جب آتے ہیں نا تو کمال کر دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جونو جونیئر کہتے ہیں کہ السلام علیکم، امید نہیں بلکہ یقین ہے خیریت سے، خوش باش، دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے، پریشانیوں کو کبھی بھی آپ کا پتہ نہ چلے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا جگنو جونیئر، رات کے اس پہر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، ڈھیر ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، جیتے رہیں اور پروگرام کو سنتے رہیں۔ آپ کے میسیجز کا، آپ کی باتوں کا، آپ کی شاعری کا مجھے بھرپور طریقے سے انتظار رہتا ہے، اور جگنو جونیئر نے بہت سارے میسیجز مجھے کیے ہیں جس میں چائے بھی ہے، پھول بھی ہیں اور گلاب کی پتیاں بھی ہیں اور بے شمار ان کی چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ جگنو جونیئر جیتے رہیے، آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں میسج کریں گے، کومنٹ کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، تو آپ کے کومنٹس کا مجھے انتظار۔ مہجبی کہتی ہے کہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، کچھ تعلق عذاب ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، کچھ تعلق عذاب ہوتے ہیں، کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے انتظار ہے کیا ہم جسے دستیاب ہوتے ہیں۔ بیوٹیفل، بہت اچھے۔ وہ بتاتا ہے انتظار ہے کیا ہم جسے دستیاب ہوتے ہیں، ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات، ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں، زیست کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، خرچ ہم بے حساب ہوتے ہیں، تم حقیقت سمجھ کے ملتے ہو، لوگ ابرک سراب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ مہاجمی۔ جگنو جونیئر آپ کے اور مزید میسیجز مجھ تک پہنچے ہیں، کمنٹس آپ کے پہنچے ہیں، آپ کی تعریف کرنے کا، آپ کے ڈھیر سارے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آپ کس طرح پروگرام میں شامل ہوں گے کہ ہماری فیس بک پہ آپ آ کے اپنے کمنٹس ہمیں پوسٹ کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آپ کے آنے سے آپ کے پروگرام میں جو میسیجز ہیں، جو کمنٹ آپ کرتے ہیں، ان کے شامل ہونے سے پروگرام اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم نبیلہ، آپ کیسے ہیں آپ؟ اچھا، یہ ایس ایم ایس مجھے ملا ہے۔ السلام علیکم نبیلہ نے ہمیں یہ میسج کیا ہے 2:26 پہ، اور 2:39 ابھی ہوئے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا شو میں ویری وارم ویلکم کرتے ہیں، آج کا شو بہت پیارا اور پیار اور بھی کمال کا لگا ہے، آج کا شو بہت زبردست کر رہے ہیں، آپ ہر شو بہت پیارا اور اچھا کرتے ہیں، میں نے کافی ٹائم بعد سنا، بہت اچھا لگا، سکون ملا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر مشکل سے دور رکھیں، ہمیشہ خوش اور صحت سلامتی کی زندگی عطا کرے، آپ سب کی سب ہی سننے والوں کو سلام، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ نبیلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام میں اتنا لمبا ایس ایم ایس ٹائپ کیا، اسے سینڈ کیا، آپ کا بہت شکریہ، اور یقین مانیے مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، آپ کے لیے سیم ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، اور اتنے دنوں بعد آپ نے کیوں سنا، جلدی سنا کیجئے تاکہ آپ کے پیغام مجھ تک جلدی جلدی پہنچیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا شعر ہوتا یا اگر ہے اور اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجئے، ہم اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبیلہ اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جگہ نہیں لکھی ورنہ میں آپ کی جہاں سے آپ نے میسج کیا میں اس کو بھی پروگرام میں ضرور شامل کرتا۔
अगला एसएमएस है लियाकत खान का, वो लगता है जब कोई काम होता है, वो मुंह लगता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है, किसी और का होकर ना आना मेरे तरफ के मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, शेर भेजने के लिए, दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहता हूँ। ये एसएमएस भी हम तक पहुँचा है लियाकत खान का, इन्होंने भी जगह नहीं लिखी, अपनी जगह ज़रूर लिखा कीजिए, जहाँ से आप मैसेज करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि किस इलाके में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है और कौन कौन लोग इसको सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में आपके जो कॉमेंट्स फेसबुक पर पहुँचते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे जनाब एक और खूबसूरत पोइट्री, और उसके बाद आपके लिए खूबसूरत सा गीत भी मेरे पास मौजूद है, उसे प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। इस शायरी के बाद कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये काम बहुत मुश्किल है, ये मोहब्बत बहुत मुश्किल है, किसी को अपने प्यार का एतबार दिलाना बहुत मुश्किल है, किसी के प्यार का एतबार करना बहुत मुश्किल है, बहुत देर लगती है, किसी की बात को समझने में बहुत देर लगती है, किसी को बात समझाने में बहुत देर लगती है, मगर यकीन मानिए कितनी देर लगती है। जब हम वो काम कर लेते तब हमें पता चलता है कि कितनी देर लगती है। कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है, बर्फ के पिघलने में देर कितनी लगती है। उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी, उसने हंस के देखा तो मुस्कुरा दिए हम भी। जात से निकलने में देर कितनी लगती है, हिजर की तमाज़ से वसल के अलाव तक, हिजर की तमाज़ से वसल के अलाव तक, लड़कियों के जलने में देर कितनी लगती है। बात जैसी बेमानी बात और क्या होगी, बात के मुकरने में देर कितनी लगती है। ज़ोम कितना करते हो एक चिराग पर अपने, ज़ोम कितना करते हो एक चिराग पर अपने, और हवा के चलने में देर कितनी लगती है। ज़ोम कितना करते हो एक चिराग पर अपने, और हवा के चलने में देर कितनी लगती है। जब यकीन की बाहों पर शक के पांव पड़ जाएं, जब यकीन की बाहों पर शक के पांव पड़ जाएं, चूड़ियां बिखरने में देर कितनी लगती है। कुछ भी कर गुजरने में देर कितनी लगती है, बर्फ के पिघलने में देर कितनी लगती है। और जनाब हमारे प्रोग्राम में शामिल है कैसरा, तमाम सुनने वालों को सलाम, आपका आना बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। फेसबुक पे आपके कुछ और पैगाम हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, और अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं और आप इस वक्त जाग रही हैं तो प्रोग्राम में आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आसमान पे जिस तरह सितारे चमकते हैं उसी तरह आपके जो मैसेजेस हैं वो प्रोग्राम को चमका देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। इसी तरह आपके मैसेजेस हम तक पहुँचते रहेंगे और हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, मैसेज करने के लिए आप क्या करेंगे, फेसबुक पे आएंगे www.facebook.com/FM101Lahore। इब्ने अनशा का कलाम प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ, और कभी कभी दिल में बहुत ख्वाहिशें बहुत हसरतें होती हैं कि हमें कोई एक बार कहे, एक बार कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो, एक बार कहो कि तुम मुझे प्यार करते हो, एक बार कहो कि तुम मेरे हो, मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकते, मेरी सांसों में, मेरे दिल की धड़कन में, मेरी रूह की गहराइयों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जिगर में,
मेरी रूह में सिर्फ तुम हो, सिर्फ एक बार कहो। और कभी कभी कोई एक बार कह भी देता है और कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है कोई ये बात नहीं कहता। हम घूम चुके बस्ती बन में, हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हो, जब फागन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, दिल का दामन फैला है, हाँ दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में, हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में, कब दीद से दिल को सहरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काश नहीं बन जा रहेगा। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बतेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, ये जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो।

0: और जनाब आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं खूबसूरत पोइट्री और आपकी खूबसूरत कॉल्स। मोहसिन नकवी का एक कलाम है कि ऐसा टूटा है तमन्नाओं का पंदार कि बस, ऐसा टूटा है तमन्नाओं का पंदार कि बस, दिल ने झीले हैं मोहब्बत में वो आजार के बस, एक लम्हे में जमाने मेरे हाथों से गए, एक लम्हे में जमाने मेरे हाथों से गए, इस कदर तेज हुई वक्त की रफ्तार के बस। तू कभी रख के हमें देख तो बाजार के बीच, तू कभी रख के हमें देख तो बाजार के बीच, इस तरह टूट के आएंगे खरीदार के बस। कल भी सदियों की मुसाफत पे खड़े थे दोनों, दरमियां आज भी पड़ती है वो दीवार के बस। ये तो एक जिद है मोहसिन, मैं शिकायत ना करूं, ये तो एक जिद है कि मोहसिन मैं शिकायत ना करूं, वरना शिकवे तो हैं इतने मेरे यार के बस। ऐसा टूटा है तमन्नाओं का पंदार के बस, दिल ने झीले हैं मोहब्बत में वो आजार के बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल नूर हाशमी साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी क्या सुना है? जी जी जी,
1: तो टॉपिक आपका ये था कि अपना दुख किसी को बताना चाहिए या अगर नहीं।
0: जी जी जी जी,
1: तो आलिम लोहार ने कहा था इसके गाने में, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी ने सुनाएगा, अपनी सोचा से आप ही मर जाएगा। तो दुनिया तो मेरे ख्याल में तमाशा देखती है, और कोई आपका मुखलिस दोस्त हो तो उसको बता देना चाहिए।
0: बता देना चाहिए। लोग ये कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप किसी के साथ अपनी बात को, अपने दुख को शेयर करें, आपका दिल हल्का हो जाएगा।
1: नहीं, कोई अपना हो ना करीबी हो, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फसाद डाल देते हैं, आपकी आपके दुखड़े को आगे बयान कर देते हैं, इससे ना फिर फसाद पैदा होता है। तो अपना राज किसी अपने करीबी को बताना चाहिए। खलील जिब्रान ने कहा था, जब तुमने अपना राज हवाओं पर जहर कर दिया, अब हवाओं इसे पत्तों पर जहर कर दे तो तुम हवा को बुरा मत कहो।
0: सही बात है।
1: तो आज मैं चाहता हूँ अब्बास साबिश को शामिल करूँ
0: जी,
1: क्योंकि आपके शो की बेस जो है ना शायरी है, पोएट्री है, आज उसके ही ये गजल शामिल करूंगा
0: जी।
1: पकड़ा है कोई हाथ न धरती में गड़े हैं
0: जी,
1: ये तेरी अनायत है कि पैरों पे खड़े हैं, यूं थूक ना मुझ पर मेरे हारे हुए दुश्मन, ये मेरी कमा है, ये मेरे तीर पड़े हैं, हमेशा दरिया में गुले जाते हैं पल पल, ये खाक निहादे हैं कि मिट्टी के घड़े हैं।
0: वाह।
1: पहले तो कभी होंठ का तख्ता नहीं टूटा, अब तूने बुलाया तो हम बोल पड़े हैं,
0: बस्ती
1: में गिरा तो मैं, बस्ती में गिरा मैं तो ये ख्याल आया या मुझको, शाखों से नहीं फूल बुलंदी से जड़े हैं। और आखिरी शेर है, तू है कि अभी घर से भी बाहर नहीं निकला, हम हैं कि शजर बनकर तेरी राह में खड़े हैं, पकड़ा है कोई हाथ न धरती में गड़े हैं, ये तेरी इनायत है कि पैरों पे खड़े हैं।
0: गांव
1: में याद रखे हैं, गांव में याद रखे हैं। दीवान अल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अब्दुल नूर हाशमी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। किसको बाती रही रात भर चांदनी, किसको बाती रही रात भर चांदनी, जी जलाती रही रात भर चांदनी, टिमटिमाते रहे हसरतों के दिए, मुस्कुराती रही रात भर चांदनी, एक हसीन जिस्म की तेरे आगोश में कसमसाती रही रात भर चांदनी, अश्क पीते रहे हम किसी और के, मैं पिलाती रही रात भर चांदनी, एक शबनम के कतरे की तकदीर को आजमाती रही रात भर चांदनी। सुबह देखा शगुफे थे टूटे हुए, गुल खिलाती रही रात भर चांदनी, उनकी जुल्फों के साए बहकते रहे, लड़खड़ाती रही रात भर चांदनी, गम के सागर छलकते छलकते रहे, जगमगाती रही रात भर चांदनी, किसको भाती रही रात भर चांदनी, जी जलाती रही रात भर चांदनी। टिमटिमाते रहे हसरतों के दिए, मुस्कुराती रही रात भर चांदनी, एक हसी जिस्म की तरह आगोश में कसमसाती रही रात भर चांदनी।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से गीत मैं तलाश करके लाता हूँ। अभी आपने सलीम रजा की आवाज़ सुनी और यकीनन आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे सामने ने तो बहुत दिनों बाद इस गीत को सुना होगा, और कुछ हमारे नए सुनने वाले हैं उनके लिए ये गीत बिल्कुल नया होगा। तो ज़रूर बताया कीजिए कि आपको गाने कैसे लगते हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, जो म्यूज़िक प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। ओके जी, आपके कुछ कमेंट्स हैं उन्हें प्रोग्राम में हम शामिल कर लें अगर आप इजाज़त दें तो। ये हमारे पास से कुछ कमेंट्स हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। अभी जो माफ़ कीजिएगा, अभी जो कमेंट मुझ तक पहुँचा है वो है आतिफ अली का, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, लिस्टिंग फ्रॉम अबू धाबी UAE। बहुत शुक्रिया आतिफ अली, इतनी दूर से UAE से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए अबू धाबी से, तो दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहता हूँ। यकीनन आपको उर्दू से शगफ होगा, तभी आप उर्दू के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यानी शायरी के प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, तभी आपने हमें अपना मैसेज भेजा, अपना कमेंट किया, हम तक पहुंचा है। यकीन मानिए दिल की गहराइयों से हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब हमारे लिस्टनर्स हमारे प्रोग्राम में अपने कमेंट भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें अपना आप बहुत बढ़िया लगता है, अपना प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई पोइट्री है और आप उसे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आप उसे भी भिजवाइए ताकि हम उसे प्रोग्राम में शामिल करें। जुगनू जूनियर, अमित गुल, माजबी और बिनते सदीक, उनके साथ रोज़ी रिजवाना और आरजे मुज्तमा ने प्रोग्राम को लाइक किया है। आप सब लोगों के अगर कमेंट्स भी हम तक पहुँचें तो यकीन मानिए प्रोग्राम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। SMS करने के लिए आप 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, पैगाम, शेर लिखिए, अपनी बात लिखिए, उसे भेज दीजिए 4471 पे, यानी 4471 पे। मैं दोबारा से बताता हूँ तरीका, 101 लिखिए यानी 101 टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, भेज दीजिए 4471 पे यानी 4471 पे। अब्दुल नूर हाशमी साहब का हमें SMS मिला रिवाज गार्डन लाहौर से, अभी उनकी कॉल भी आई थी और उन्होंने कहा कि जी वसीम जी आदाब, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अगला अब्दुल नूर हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में SMS भी करने का। एहसान वड़ाइश सरगोदा से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, वेरी नाइस शो, प्लीज़ डोंट माइंड, आप आवाज़ लबो लहजे में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह दर्द पैदा करें। अच्छा, आए ये दर्द पैदा कर दिया और अंदाज़े बयां में दर्द। अच्छा, मैं खुशी वाले पोइट्री में दर्द कैसे भर दूँ। ओके जी, आगे इन्होंने कह के बनाएं अपनी पोइट्री की तरह, और कमेंट्स खुद आएंगे, दुख दिल में ही रहने तो अच्छा होता है। बहुत अच्छे, और एहसान आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और ख़ूबसूरत बातें आपने कही, आपने सजेशन दी, मैं उसको ज़रूर उसके ऊपर अमल करूँगा। मैं आपकी बातों को बिल्कुल सार आँखों पे और कोशिश करूँगा कि उनके मुताबिक प्रोग्राम करूँ। और आपने कहा कि जी दुख जो होता है ना, दिल में ही रहें तो अच्छा होता है। ठीक हो गया, इनका मतलब है कि शेयर नहीं करने चाहिए आगे, दूसरे लोग जो हैं वो कभी कभी हमारे दुखों पे खुश होते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जी हमीद गुल साहब आए, बहुत अच्छा लगा आपका आना।
1: सर आप आए, बहुत अच्छा लगा,
0: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
1: सलामत रहें, शादो आबाद रहें,
0: बहुत शुक्रिया।
1: शेख नजीर साहब का एक कतर सुना के आपको गजल सुनाते हैं, ताहिर फराज साहब की।
0: जी जरूर।
1: मैं देखे क्योंकि जो उर्दू का प्रोग्राम है, 1960 की दहाई में शेख नजीर ने कहा था कि बस गए पंजाब में, रूई को रू कहने लगे, बस गए पंजाब में
0: जी,
1: रूई को रू कहने लगे, दिलबरा ने लखनऊ कोई को ऊ कहने लगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: दिलबरा ने लखनऊ ऊई को ऊ कहने लगे, और आजकल रंगे बयां कुछ और है, शोखिए हुस्नो जुबां कुछ और है।
0: शोखिए हुस्नो जुबां कुछ और है, वाह बहुत अच्छे।
1: आपको तुम, तुमको तू, दिलबरा ने लखनऊ ऊई को ऊ कहने लगे, और आजकल रंगे बयां कुछ और है, शोखिए हुस्नो जुबां कुछ और है।

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ, एक्सेंट का होना बड़ा जरूरी है आपका।
0: सही बात है।
1: हाँ,
0: तभी उर्दू का मजा आता है।
1: हाँ,
0: अगर आपका तलफ्फुज़ सही नहीं है, अगर आप उसको बयान सही नहीं कर रहे, तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है।
1: बल्कि मेरा अपने एक शेर है कि आपकी नजर कर रहा हूँ, आप उर्दू का प्रोग्राम कर रहे हैं, कि लफ्जों से आने वाली खुशबू बता रही है।
0: वाह,
1: लफ्जों से आने वाली खुशबू बता रही है, वो आदमी है अच्छा उर्दू बता रही है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, वो आदमी है अच्छा उर्दू बता रही है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा।
1: देखिए, मैंने लफ्ज आदमी इस्तेमाल किया है, मोनस भी और मुजक्कर भी है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
1: मैं आपको ताहिर फराज साहब की गजल सुनाता हूँ।
0: इसके
1: आप काफी पे गौर कीजिए क्या, बल्कि मतलब मैं आपकी नजर कर रहा हूँ कि नजर ना आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे।
0: नजर ना आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे। वाह,
1: हम उचक उचक के देख रहे होते हैं।
0: हाँ।
1: वसीम साहब पता नहीं प्रोग्राम में आ जाएंगे नहीं, पिछले हफ्ते नहीं आए,
0: और मैं उचक उचक के देख रहा हूँ कि अभी तक आप क्यों नहीं आए, आपके पैगाम क्यों नहीं आए।
1: चलिए, दूसरा मिसरा बात को मुकम्मल कर देगा कि नजर ना आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे, और सामने तो वो देखें झिझक झिझक के मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है। आपने मेरे बचपन की मुझे एक बात याद करवा दी है। तो वो छोटे थे, मतलब छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के स्टूडेंट थे। तो हम भी उचक उचक के देखते थे, और उसके बाद परेशान हो जाते जब कोई सामने आ जाता था। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनका भी अपना एक अफेयर होता है, एक लव चल रहा होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत।
1: जी, नजर ना आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे, और सामने तो वो देखें झिझक झिझक के मुझे, और शेर मुलायजा की जगह कि मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता।
0: वाह,
1: मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता, तेरे ख्याल ने खींचा लपक लपक के मुझे।
0: हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: और खुशी खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं, खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं, मगर वो मांगता है दुआ में सिसक सिसक के।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, मगर वो मांगता है दुआ में सिसक सिसक के मुझे।
1: और ये चाहती है कि मैं रक्स इसके साथ करूं। ये चाहती है कि मैं रक्स इसके साथ करूं, लुभाती रहती है दुनिया ढुमक ढुमक के मुझे।
0: लुभाती रहती है दुनिया ढुमक ढुमक के मुझे,
1: और चमक सकता हूं मैं एक पल को किसी भी वक्त। चमक सकता हूं मैं एक पल को किसी भी वक्त, कहीं गवा ना देना पलक झपक के मुझे।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हमीद गुल साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात,
1: बड़ी मेहरबानी। और इस गजल का आखिरी शेर था कि ये हिचकियां जो मुझे आ रही हैं रुक रुक कर।
0: हाँ, ये हिचकियां जो मुझे आ रही हैं रुक रुक कर,
1: रुक रुक कर, करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे।
0: करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे, करे है जो इसमें इस्तेमाल हो गया ना, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
1: जुबान की बात है, मैंने तमहीद के तौर पे वो शेख नजीर का कथा सुनाया आपको।
0: सही बात है।
1: देखें आप, ये जो हिचकियों पे मैंने भी एक शेर कहा, मैंने कहा था कि ये जो हिचकियां मुझको आ रही है कहीं तो मेरा जिक्र हो रहा है।
0: वाह,
1: कहीं तो मेरा जिक्र चल रहा है। बहरहाल ये है सर,
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये उर्दू का प्रोग्राम है, और कोशिश करें कि अपने तलफ्फुज़ को इतना नीट एंड क्लीन करें। मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे अक्सर फेसबुक पे मैसेज आ जाते हैं मैसेंजर पे, अब वो शायरी के प्रोग्रामों का मजा नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ कि अब शायद वो लोग नहीं रहे, वरना उर्दू का इस टाइम को जो प्रोग्राम, आपकी बड़ी हिम्मत है, बड़ी कोशिश है उर्दू की इस प्रोग्राम।
0: हम तो जी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मतलब बात जो है ना, वो बिल्कुल सही मानों में आप तक पहुंचे, सही तरह से पहुंचे, सही तलफ्फुज़ में पहुंचे।
1: इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, दो शेर हैं लियाकत जाफरी के। ये मुस्लिम हूँ पर खुद पर काबू रहता है। मुस्लिम हूँ पर खुद पर काबू रहता है।

0: रहता है, मेरे अंदर भी एक हिंदू रहता है। और छेद मुलायजा कीजिए कि कोई जादूगर के हाथ काट भी दे, क्या मुहावरा इस्तेमाल किया है, कोई जादूगर के बाजू काट भी दे, हाथ नहीं छोड़ी बाजू सके, कोई जादूगर के बाजू काट भी दे उसके हाथ में फिर भी जादू रहता है,
1: उसके हाथ में फिर भी जादू रहता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
0: कोई दुआओं में याद रखिएगा, लफ्जों का जादू अपनी जगह पे है।
1: वो जादू हम चला रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते नहीं है भाई, सुनते हैं। अफजल डोगर और फर्रुख जेब फ्रॉम लाहौर मोची गेट से इन्होंने हमें मैसेज किया है, एसएमएस किया है, और बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपने कहा है कि जी बहुत शौक़ से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। अफजल डोगर आपका बहुत शुक्रिया, और फर्रुख जेब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमें अपने पैगाम भिजवाते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली बिलाल कहते हैं, इन्होंने भी जगह नहीं लिखी मगर इन्होंने लिखा कि नाइस प्रोग्राम। अली बिलाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक हुसैन शाह फ्रॉम रावलपिंडी, सर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, दिल की बात किसी एक से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इश्तियाक हुसैन आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप रावलपिंडी में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आपने एसएमएस भी हमें किया है, और आपने हमारे टॉपिक के ऊपर भी बात की है कि दिल की बात शेयर करनी चाहिए। हम दिल की बात चलें, बात हम ये कह रहे थे कि अपना दुख जो है वो किसी को बताना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही, हमारे दोस्त भी होते हैं, आप भी देख लीजिए आपके भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग, आपके जानने वाले कुछ ऐसे सो कॉल्ड दोस्त भी ऐसे होंगे जो कि आपके साथ बड़े हमदर्द, बहुत मोहब्बत, बड़ी वो बातें करते हैं, बड़ा प्यार जताते हैं, मगर जब कभी आप उनको अपना कोई दुख, कोई परेशानी बताते हैं तो आपको पूरा यकीन होता है कि अंदर से तो ये बंदा खुशी हो रहा होगा, ऐसा कई दफ़ा फील होता है। और हम चूंकि उस वक्त बड़े टूटे होते हैं, दिल दुखा होता है, तो हम चाहते हैं कि कोई कंधा मिले जिसके ऊपर अपना सर रख के उससे बात की जाए, अपना दुखड़ा रोया जाए, मगर हर कंधा ऐसा नहीं होता। मेरा तो ख्याल है कि किसी को भी अपना दुख नहीं बताना चाहिए, अपने आप से बात कर लेनी चाहिए, अपने आप को वक्त दे देना चाहिए, अपने आप से सवालों जवाब कर लेने चाहिए। शब्बीर खटक ने मियांवाली से हमें एसएमएस किया, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपको स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम, साबिर खटक मियांवाली से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हम तमाम मियांवाली के लोगों को अपना सलाम पेश करते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त जाग रहे हैं, 3:25 हो चुके हैं और आप हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, और प्रोग्राम में आपने मैसेज भी किया है, यकीन मानिए दिल खुशी से भर गया है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे खुशी से फूल उठा है, भर तो दर से जाता है, तो खुशी से जो है ना वो फूला नहीं समा रहा, आपके एसएमएस वगैरह को, आपके यानी कमेंट्स वगैरह को, एसएमएस को देख के, तो दिल की गहराइयों से आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। आइंदा भी, आज ही नहीं बल्कि आइंदा भी आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर मैसेज किया कीजिएगा, और कॉल अगर कर सके तो कॉल भी ज़रूर कीजिएगा। और आतिफ अली हमारे प्रोग्राम में अबू धाबी से शामिल हुए, और इसी तरह से फौजिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हुमैरा प्रोग्राम में शामिल हैं, उनकी सिस्टर हुमा भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम
2: जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है जी आप?
1: मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्लाह का, ठीक
2: है, शुक्रिया आपका जी, जो हम आपते हैं तो हमारा दिल खुशी से खुश हो जाता है।
1: चले, बड़ी मेहरबानी आपकी,
2: तो आपकी नजर एक शेर है जी,
1: जी
2: वो आगे जिनका हमें इंतजार था, वो आगे जिनका हमें इंतजार था, जिनके सुनने के लिए ये दिल बेकरार,
1: आए हाय हाय क्या बात,
2: तुझे दिल से निकालूं के दिमाग से, जी, तुझे दिल से निकालूं के दिमाग से, तू तो रग रग में बसा है मेरी जान में।
1: हाय हाय
2: तो मैं भी शायर हो रहा हूँ भाई।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया।
2: तो आपका जो मौजू है ना, वो उस पर क्या बोलता हूँ, दिखाए दिल जो किसी का तो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है।
1: बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।
2: और सबको मेरा सलाम, नीला भी आएगी उनको भी सलाम, सबको मेरा प्यार भरा सलाम।
1: अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, सभी कुछ है तेरा दिया हुआ, सभी राहतें सभी कल्फतें, सभी कुछ है तेरा दिया हुआ, सभी राहतें सभी कल्फतें, कभी सोहबतें कभी फुरकतें, कभी दूरियां कभी कुर्बतें, ये सुखन जो हमने रकम किए हैं सब वर्क तेरी याद के, ये सुखन जो हमने रकम किए हैं, ये सुखन जो हमने रकम किए, ये हैं सब वर्क तेरी याद के, कोई लम्हा सुबह वसाल का, कोई शाम हिजर की मुद्दतें, जो तुम्हारी मान ले नासिहा तो रहेगा दामने दिल में क्या, जो तुम्हारी मान ले नासिहा तो रहेगा दामने दिल में क्या, ना किसी अदू की अदावतें, ना किसी सनम की मरवतें, चलो आओ तुमको दिखाएं हम जो बचा है मक्तल शहर में, ये मजार अहले सफा के हैं, ये हैं अहले सिद्दक की तुर्बतें, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रही हो मुसर्रतें, किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रही हो मुसर्रतें। और वन एफ एम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, और आपकी कॉल हम तक पहुंच रही हैं 0421100001001 पे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
1: जी कौन हमारे साथ?
3: तनवीर अकबर, वाकर टाउन डी टू लाहौर।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने?
3: तनवीर अकबर।
1: जी तनवीर अकबर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं ना?
3: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत है, ठीक ठाक हैं?
1: जी शुक्र अल्लाह का। क्या कहेंगे?
3: माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, और हमें गुल साहब है बहुत अच्छा लगा।
1: जी
3: शराब साहब है बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और मेरे भाई असलम सुन रहे हैं, बड़े भाई हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं टॉपिक के वाले से कहूंगा कि दुख भी जादूगर हुंदे ने, लगदे नहीं है पर हुंदे ने, बंदा तोड़ के रख देंदे ने, एने ताकतवर हुंदे ने, बाहरों एवें लभना तू अपने अंदर सर हुंदे ने, दुख भी जादूगर हुंदे ने, लगदे नहीं
1: पर हुंदे ने। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे। दुख भी जादूगर हुंदे ने, दुनिया का कुछ बुरा भी तमाशा नहीं रहा, दिल चाहता था जिस तरह वैसा नहीं रहा, दुनिया का कुछ बुरा भी तमाशा नहीं रहा, दिल चाहता था जिस तरह वैसा नहीं रहा, तुमसे मिले भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, तुमसे मिले भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, किश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा, तुमसे मिले भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, किश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा, कहते थे एक पल ना जिएंगे तेरे बगैर, हम दोनों रह गए हैं वो वादा नहीं रहा, काटे हैं इस तरह से तेरे बगैर रोजो शब, काटे हैं इस तरह से तेरे बगैर रोजो शब, मैं सांस ले रहा था पर जिंदा नहीं रहा, आंखें भी देख देख के ख्वाब आ गई हैं तंग, आंखें भी देख देख के ख्वाब आ गई हैं तंग, दिल में भी अब वो शौक वो लपका नहीं रहा, कैसे मिलाएं आंख किसी आईने से हम, अमजद हमारे पास तो चेहरा नहीं रहा, अमजद हमारे पास तो चेहरा नहीं रहा। और जनाब हुमा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और शायरी आपके लिए, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा गीत है मेरे पास, उसके बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लूँगा, हमारे साथ रहिएगा। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध, कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस माँ से चुप हूँ कि तमाशा ना बने, मैं तो इस बात पे चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ओके जी, अपना बना के दिल ला के नस जाए ना मेरे हानिया। मसूद राना की आवाज भी आपने सुनी। और सहर ने हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बहुत दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। पेपर्स थे सेकंड ईयर के, तो इसलिए मसरूफ थी, फिर तबीयत ख़राब हो गई थी बाद में पेपर्स को, तो रात दिन तक नहीं जागती थी। अब सुन रही हूँ तो एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने। वसीम भाई हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। और अनिला अपी जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनको उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी आवाज़ उन्हें बहुत पसंद है। और उन्हें कहें कि जब वो प्रोग्राम में आए तो मेरा नाम भी लिया करें, यानी शहर का नाम भी लिया करें। और आगे उन्होंने लिखा कि अनिला अपी आप कहें कि अब जब आप ओके जी, तमाम सुनने वालों को आपने सलाम भिजवाया है, बहुत शुक्रिया जहन आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
1: हेलो,
2: अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
2: रोजी बात कर रही
1: जी। रोजी जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ
2: माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम, हमेशा की तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है,
1: बहुत शुक्रिया।
2: और हम सुन रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सुने प्रोग्राम को।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आपके जागने का, आपके आप जो जाग के हमारे लिए प्रोग्राम को सुनते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, उसके लिए अगेन आपका बहुत शुक्रिया।
2: और आप भी अपनी नींद खराब करते हैं हमारे लिए, ईद का भी बहुत शुक्रिया, भले वो आपको थोड़ा बहुत चुका पे होता है बट फिर भी शुक्रिया ना।
1: जी।
2: वो कहते हैं ना कि रंग धनकने बिखर आए हैं, मौसम अच्छा है। रंग धनकने बिखर आए हैं, मौसम अच्छा है, आप चले आए हैं तो मौसम अच्छा है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे
2: जी। मैंने आपके आने के हवाले
1: बहुत शुक्रिया
2: जी। अच्छा मैं अब कुछ शामिल करूँ, थोड़ी पोएट्री शामिल करना
1: जी, जरूर सुनाइए।
2: अच्छा एक तो आपने वो बात कर रहे हैं ना, उसमें यही है कि दिल की बातें दिल में ही रहें तो अच्छी रहती हैं।
1: दिल की बातों की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने दुख की बात कर रहे हैं कि अगर कोई हमें कोई दुख हो तो उसको किसी के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
2: देखिए दिल दुख की बात भी तो दिल ही की बात होती है ना, तो उसको दिल में ही रखना चाहिए, उसको सिर्फ अल्लाह ही से
1: नहीं, अगर किसी को मोहब्बत हो गई तो उसको दिल की बात बता देनी चाहिए।
2: हाँ उसको बता देनी चाहिए, लेकिन दुख की बात
1: उसको बता देना चाहिए कि मुझे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मुझे आप अच्छे लगते हो, मुझे आपसे प्यार हो गया।
2: भाई दुख की बात जो है ना वो हर एक को या किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, हर एक को तो बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह से बताना सबसे बेस्ट है। क्योंकि हजरत अली का भी कॉल है ना कि कोई दुख हो तो उस पे चुप हो जाओ और फिर सबर करो, सबर करने से दुख तकलीफ कम हो जाती है।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो मैंने कहा ये मैं ये शामिल कर दूं बात साथ में, जो आपने टॉपिक पूछा हुआ। एक और शेर याद आ गया मुझे परवीन शाकिर का, क्या है वो, चली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, चली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा।
1: बहुत अच्छे,
2: हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा, ये हवा के साथ ही सफर हो रहा है और उसका ही मुकाबला है जो चल रहा है ऑन एयर भी।
1: बहुत अच्छे
2: जी। मैं अब जो सुनाना चाह रही थी
1: जी,
2: थोड़ी सी गजल
1: जी सुनाइए।
2: मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता, मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता, और पर के ताल्लुक की मैं वजाहत नहीं करता।
1: वाह।
2: मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, मैं अपनी वफाओं की तिजारत नहीं करता।
1: बहुत अच्छे।
2: खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती, खुशबू किसी तशहीर की मोहताज محتاج نہیں ہوتی, سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا.
1: بہت اچھے.
2: احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر, احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر, میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا.
1: بہت اچھے.
2: میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن, میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن, لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا.
1: بہت اچھا.
2: محسن نقوی کا شعر سے,
1: بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوب.
2: اور آپ ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے سانگ چلا رہے ہیں, مجھے تو سن کے اچھے اچھا بھی لگا. اچھا آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ جو انڈین آئیڈل چل رہا تھا, سوری پاکستانی آئیڈل جو چل رہا تھا, اس میں وہ کتنے اچھے انہوں نے پرانے سانگ نئے بچوں نے نئی جو ہیں جنہوں نے گائے, وہ کتنا اچھا لگا سننے. آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا
1: نہیں؟ میں نے نہیں سنا, مگر یہ کہ اتنے اچھے سانگز ہیں ہمارے, ہمارے پاس اتنی اچھی اتنی ورائٹی ہے آوازوں میں, مطلب دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت خوبصورت بہت زیادہ آوازیں تھیں, اب بھی ہیں.
2: میں بات نہیں کر رہی, میں پاکستانی آئیڈل کی بات.
1: جی جی, میں بھی پاکستانی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے پرانے گانوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے پرانے سنگرز کی بات کر رہا ہوں. جی جی, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کو نئے بچے بھی گا رہے ہیں, وہ اتنے اتنی محنت سے تیار کیے ہوئے گانے ہیں وہ سانگز, وہ
2: خوبصورت سٹائل میں, بلکہ اتنے جدت کے ساتھ انہوں نے گایا. جیسے ایک وہ تھا نا سن وہ بلوری اکھ والیا,
1: جی جی,
2: پھر ایک وہ حدیقہ کیانی کا تھا نا تجھے سپنوں میں سپنوں میں, وہ اتنا خوبصورت. یہ دونوں گانے ایک ہی بچی نے گائے, لڑکی نے گائے, اور بہت خوبصورت گائے. اور میں چاہوں گی کہ ان گانوں کو اگر آپ ہو سکے تو دوبارہ سے ضرور چلائیں. ماشاءاللہ جو چیزیں ٹی وی پہ چل رہی ہیں, اور ظاہر نئے بچوں نے بالکل دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, اور ان کی سینم جگہ بنی ہوگی ان کے دل دماغ
1: میں. جی جی,
2: ان چیزوں کو ضرور چلائیں.
1: جی ضرور.
2: ماشاء اللہ بہت اچھا بہترین پروگرام, اور سن کے بہت اچھا لگا. اسی طرح آپ آتے رہیں اور ہمیں بھی محسوس کرتے رہیں,
1: بہت شکریہ,
2: بہترین پروگرام کرتے رہیں.
1: دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے اوکے جی. ون ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن. ٹیلی فون نمبر آپ کو بتاتا چلوں, 0421100011001 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ابھی لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ کے جو پسندیدگی ہے وہ فیصل عباس نے ہمیں ہمارے پروگرام کو لائک کیا ہے, بہت شکریہ جی. اور آپ کا کومنٹ ابھی تک نہیں پہنچا, جب جیسے ہی آپ کا کومنٹ ہم تک پہنچے گا اسے بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. قتیل شفائی کا کلام ہے, تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں, تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں, ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں, کس کو خبر تھی سانولے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں, ساون آیا لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں, ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا مانی, گونج رہی ہے کیوں شہنائی جب کوئی بارات نہیں, غم کے اندھیارے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھو, غم کے اندھیارے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھوں, تو پھر تو ہے میرا تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں, مانا جیون میں عورت ایک بار محبت کرتی ہے لیکن مجھ کو یہ تو بتا دے کیا تو عورت ذات نہیں, ختم ہوا میرا افسانہ, ختم ہوا میرا فسانہ, اب یہ آنسو پونچھ بھی لو جس میں کوئی تارا چمکے, آج کی رات وہ رات نہیں, میرے غمگین ہونے پر احباب ہے یوں حیران. قتیل, میرے غمگین ہونے پر احباب ہے یوں حیران قتیل, جیسے میں پتھر ہوں, جیسے میں پتھر ہوں, میرے سینے میں جذبات نہیں, تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں, ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں, اور تو کوئی بات نہیں. ہلو ہلو ہلو
3: جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
3: جی, جناب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
1: جی شکر اللہ کا. کون؟
3: الحمدللہ, میں شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے.
1: जी शहजाद, लाहौर किस जगह से बोल रहे हैं?
3: जी मैं लाहौर वलंशिया टाउन में रहता हूँ।
1: जी
3: जी हाँ, तो सर एक दुख हम भी पाले हुए हैं 30 साल से अपने अंदर, तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी किसी से बात करें या किसी को बताएं। तो बस आज दिल कर रहा है कि वो छोटा सा एक वाकया है, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूँ।
1: टाइम बड़ा थोड़ा है, अगर आप मुख्तसर दो लाइनों में सुना सकते हैं तो बता दें।
3: जी हाँ, बस दो दो दो दो तीन बातें होंगी
1: जी,
3: तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप महजूज होंगे सुन के।
1: जी
3: तो 30 साल पहले स्कूल में पढ़ते थे
1: जी,
3: तो हमें अपनी टीचर से मोहब्बत हो गई। अपनी टीचर से मोहब्बत हो गई। वो वाकया भी कुछ इस तरह था कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है हमने
1: जी,
3: तो बड़ी उम्र हो गई कुरान पाक हिफ्ज करते हुए, तो देर से स्कूल में दाखिला मिला। तो हमारे एक टीचर थे फकीर हुसैन साहब उनका नाम था, तो उन्होंने मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था, तो तकरीबन 13-14-15 साल की उम्र थी, तो वो जो हमारे टीचर थे उन्होंने जनाब मुझे केजी वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ बैठा दिए पढ़ने के लिए
1: जी।
3: तो अब जो केजी क्लास की जो टीचर थी वो भी कोई 1-2 साल बड़ी होंगी मुझसे, यानी तकरीबन हम उम्र ही हम लगते थे। तो अब मैंने कुछ पूछना हो तो मुझे कुछ शर्म आए, अब उनको मुझे बताते हुए कुछ शर्म आए। तो जो हमारे जो फकीर हुसैन साहब जो टीचर थे, तो वो उन्होंने दूर बैठ के देखना, वो बड़ा महजूद होते थे। तो वो इस तरह ही मतलब के वक्त जरा गुजरता गया, फकीर हुसैन साहब ने अपने पास बैठा के मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो वो अब क्लास में उस वक्त रह रहे के अब वो मतलब टीचर के साथ कोई वाबस्तगी बन गई। तो अब कभी कोई जिंदगी में ये एक ही मोहब्बत है जो अपने अंदर पाली है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी शुदा हूँ, शादी हुई है, 3 बेटियां अल्लाह ने अता की हैं माशाल्लाह।
1: भाभी सो रही हैं, आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, आपकी कॉल
3: साथ बैठी हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं।
1: बड़े खुशकिस्मत है कि भाभी सुन रही है और आपको कुछ कह नहीं रही है।
3: ना ना ना, मेरे साथ बैठी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी काम छुपा के नहीं किया,
1: मगर आपकी वो जो मोहब्बत है जो आपके दिल में अभी तक बसी हुई है ना, ऐसे ही
3: अभी
1: है ना?
3: अभी तक वो जो बचपन का जो वो स्कूल की मोहब्बत है अभी तक दिल से वो गई नहीं।
1: अच्छा, बस भाभी तो, बस भाभी से हम कहेंगे कि जी इनकी वो दिल से मोहब्बत इनकी निकाल दे जरा कल अच्छी तरह।
3: वो हमारा बड़ा ख्याल करती है, बड़ा ख्याल करती है।
1: पता क्या इस तरह की छोटी छोटी बातें तकरीबन सभी लोगों के साथ होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी याद हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, आरायश ख्याल भी हो दिल कुशा भी हो, आरायश ख्याल भी हो दिल कुशा भी हो, वो दर्द अब कहां जिसे जी चाहता भी हो। ये क्या के रोज एक सा गम एक सी उम्मीद, इस रंज बेखुमार की अब इंतहा भी हो। ये क्या के एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, ये क्या के एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। टूटे कभी तो ख्वाब शुभ रोज का तिलिस्म, टूटे कभी तो ख्वाब शुभ रोज का तिलिस्म, इतने हजूम में कोई चेहरा नया भी हो। दीवानगी शौक को ये दहन है इन दिनों, गर्बी हो और बे दरो दीवार सभी हो। जिस दिल कोई मकान नहीं दहर में जहां, रहजन का खौफ भी न रहे दर खुला भी हो। आरायश ख्याल भी हो दिल कुशा भी हो, वो दर्द अब कहां जिसे जी चाहता भी हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको जी चाहता है, दिल चाहता है। वो कहते कि मैं अपने जख्मों को हरा रखता हूँ, वो इस तरह की, मैं इनको छीलता रहता हूँ, इनको याद करता रहता हूँ, उन चीज़ों को जिससे ये जख्म लगे थे। हेलो
4: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम शमीम जी, आपको दिल की गहराइयों से, आप माशाल्लाह से 3:51 पे भी मुस्कुरा रही हैं हमारे प्रोग्राम में, आपने कॉल की है, बहुत शुक्रिया।
4: बहुत अच्छा लग रहा है शो। मैं उठी तो मैंने एकदम घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा अभी कुछ टाइम है तो शामिल तो हो जाऊंगी।
1: बहुत शुक्रिया, यकीन मानिए आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपका खुलूस, सब बहन भाइयों का, सब दोस्तों का, क्या बात है।
4: हाँ जी, बस हमारी दुआएं तो आपके साथ साथ है ना।
1: बहुत शुक्रिया,
4: ठीक
1: है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, शमीम हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, हमारी बहुत सीनियर, बहुत पुरानी कॉलर है, एम तौसीफ बिलाल फ्रॉम जेठी के लिखे इन्होंने, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, हो सके तो गालिब के कुछ मिस्रे सुना दें। बहुत शुक्रिया आपका एम तौसीफ, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने प्रोग्राम को पसंद किया डेफिनेटली, तो आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और आपने जो रिक्वेस्ट की है, हम कोशिश करते हैं जनाब आपको कुछ अशार जो हैं वो मित गालिब के भी सुना दें और आप उनसे महजूज हो सकें। ओके जी, और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं इस वक्त जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी लियाकत जी, आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप इस वक्त जाग रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई है।
5: देखे दुख सुख ये किसी से ना ही करे तो देखे ये मसला तो हल होता नहीं है, क्योंकि ये तो सारा मसले मसाइल में जो इंसान हो वो खुद ही गिरा होता है अपने मसले में ना, आप समझ रहे बात को।
1: जी जी जी,
5: जिंदगी में सारे मसले इंसान की खुद की गलती से आते हैं, खुद ही करना चाहिए इंसान, अल्लाह की जात से भरोसा रखना चाहिए, वो सारे काम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख होता है मोहब्बत का, ये जो है दुख है ना ये नहीं जाता, सबसे खतरनाक मोहब्बत होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल ठीक हो गया।
5: मोहब्बत भी होनी चाहिए और करनी भी चाहिए और प्यार भी बांटना चाहिए, ये ही है जिंदगी।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लियाकत अली, थैंक यू वेरी मच,
5: बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अभी एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है मिर्ज़ा गालिब का, कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, वो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे, होता है शबरूस तमाशा मेरे आगे। और बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं मनाहल, तमाम सुनने वालों को सलाम, प्रोग्राम खूबसूरत, आखिरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अनिला जी, आपने कसम खाई है कि आपने बिल्कुल आखिरी आधे मिनट में कॉल करनी है।
6: मैं वही ना ज्या कल कह रहा था, कल मेरी जल्दी कॉल लगती, फिर तो सवेरे सवेरे आ गए हो। मैं सवेरे सवेरे कॉल मिला नहीं, शाम पे आ जाऊंगी मिलने मिलने। तो वही सीन है, मैं काफी देर से मिला रही हूँ, लेकिन बहरहाल चले खूबसूरत प्रोग्राम, अच्छी गुफ्तगू और टॉपिक भी जबरदस्त है, और जितने बहन भाई आ रहे हैं सबके लिए दुआएं। मैं ये कहूंगी कि शेयर आप कर लें, कहते हैं ना दुख कम होता है, बांट खुशियां जैसे बांटने से बढ़ती हैं, तो दुख भी थोड़ा जरा शेयर करने से थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना आपका दिल हल्का हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये कि हर किसी से ज्यादा कहना शेयर करते फिरे, एनू भी सुना तू भी सुना, मेरे नाल एंजॉय है, साढ़े नाल एंजॉय है, ये हो गया जी, वो हो गया, और नहीं ऐसे नहीं करना, कोई खास कोई एक जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सकते हूँ, और बाकी उससे बेहतर तो ये है कि अल्लाह ताला से तो शेयर करना ही।
1: जी जी।
6: जो चीजें जो बातें हम अल्लाह ताला के साथ कह कर सकते हैं वो हर किसी से नहीं कह सकते, स्पेशली अल्लाह ताला के बाद अगर कोई है तो माँ बाप ही होते हैं।
1: सही बात है, सही बात है।
6: और ये है कि खूबसूरत टॉपिक है, डीप है, इसको जितना जैसे जो चाहे इसको वो कर सकता है, शेयर कर सकता है, कम ज्यादा जो भी। तो बाकी है कि अच्छा प्रोग्राम है, जबरदस्त है, रौनक लगी हुई है। हमारे कितने कॉलर है जो आ नहीं रहे हैं, वो मेरी तरह टाय होके पे होने हैं।
1: और आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
6: बस गला ही तंग कर रहा है,
1: ये तो बस चलते ही रहते, गला आपका भी तंग करते हैं, मेरा भी तंग करते हैं। बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू वेरी मच।
6: मरीजे गला है।
1: मरीजे गला।
6: तो पोएट्री थोड़ी सी सुना दूं, एक के टाइम नहीं है,
1: 57 मिनट्स हो गए।
6: ओ फिर खैर, चले फिर सुनाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही कह लेते हैं।
1: जी।
6: मेरी आवाज को महसूस कर लो, मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरे बाद बहुत सन्नाटा होगा। सबके लिए बहुत सी दुआएं, जितने बहन भाई आते हैं जो मुझे याद रखते हैं। थैंक यू सहर, जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू वसीम भाई, जीते रहे, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए खूबसूरत पोइट्री और उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आपके एसएमएस जो आपने भेजे उनका भी बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आपने जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है उसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। और तोसी बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका एसएमएस हम तक पहुँचा। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में जनाब कुछ और पैगाम हैं, और ये हैं जनाब माजबी हैं, फैसल अब्बास वसीम भाई वेलकम टू द शो फ्रॉम लाहौर, और सहर आतिफ अली हमीद गुल साहब जुगनू जूनियर आपका बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा कि जनाब जो अपने दुख है ना वो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दिल तक रखे जाएं, अगर हम उन्हें बाहर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हमें बाद में पछतावा लगे क्यों हमने अपना दुख किसी के सामने बयान किया। मगर अगर कोई बहुत अपना है तो उससे शेयर करने से दुख का जो जोर है वो टूट जाता है। ओके जी, ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। यकीनन आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगर कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। एक बार भी आ जाए अगर आप बहुत हैं, एक बार भी आ जाए अगर आप बहुत हैं, हर दिन हो मुलाकात, कहाँ आप कहाँ रोज। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान वसीम अहमद को, दुआ में याद रखिएगा जाते जाते आपके लिए। हाँ, अभी हमें एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा था ये मिर्ज़ा ग़ालिब के शेर सुना दीजिए। बाजीचे इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शुभ रोज़ तमाशा मेरे आगे, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो लब दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो भी सागरो मीना मेरे आगे। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

يكفرون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده